हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 9वीं तिथि, तदनुसार 31 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 30 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

0: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं अगला प्रसारण विविध भारती से, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारण।
1: संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी तक करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने

0: सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

सबसे पहले सुनिए चिंतन। आज का चिंतन, जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को पवित्र रखता है उसके जीवन में शांति और आनंद स्वयं ही प्रस्फुटित हो उठते हैं। ये था आज का चिंतन। और अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भारत का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए, प्रस्तुत है झरोखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान का भाग 266। रामचरितमानस गान के अंतर्गत आप सुनेंगे किष्किंधा कांड। छः बजकर 45 मिनट पर और पुनः शाम को 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत आप सुन रहे हैं श्रृंखला ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा, कलाकार पंडित सी आर व्यास। इसका भाग 5 प्रसारित किया जाएगा, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। भूली बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर हम हेरा ही प्यार के। वंदे मातरम एक जय घोष, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:15 पर और पुनः दोपहर 2 बजे। लेखक मिलिंद सबनिस है, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का भाग 39 आज प्रसारित होगा। नए गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर और रात को 8:15 पर। आज सुबह 9:30 पर आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक मोहम्मद रफी पर, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा हेलो फरमाइश सुबह 10 बजे, संवादक यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता या राघवेंद्र नेगी। रंग तरंग, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11 बजे, 12:05 पर यादों की महफिल और दोपहर 1 बजे सुरीला सफर। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं दोपहर 2:30 पर। 3 बजे सुनिएगा हेलो सहेली, संवादक सोनाली पाठक, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा

तो भरी कहानी कहानी है मिस मैच, लेखिका डॉक्टर जया आनंद, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। शाम 5 बजे, छाया गीत 5:30 पर, कार्यक्रम तराने नए पुराने। संध्या रंजन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:35 पर। शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत किया जाएगा। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पाटेकर की बातचीत का भाग 5 आज प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा कहानी, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी बूढ़ी काकी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार हैं हरीश दीक्षित, प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर। आपके लिए ये कार्यक्रम रात्रि 9 बजे 9:30 पर, रात को आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री मुमताज पर, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। छाया गीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, आलेख एवं स्वर पूनम त्रिपाठी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात, और 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये था आज का झरोखा। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान किष्किंधा कांड का भाग 266।

बल तथा रूप के पुंज श्री राम और लक्ष्मण को तपस्वी वेश में वन में भटकते देख सुग्रीव को एक अव्यक्त भय हुआ। उन्होंने हनुमान को ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे मिलकर इस प्रकार वन में भटकने का कारण पूछने के लिए भेजा। श्री राम ने ब्राह्मण वेशधारी हनुमान को अपना परिचय देकर जानकी हरण की बात कही और फिर प्रश्नकर्ता का परिचय पूछा। प्रभु को पहचान कर हनुमान उनके चरणों पर गिर पड़े और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा। आज तक आप इस श्रृंखला की चार कड़ियां सुन चुके हैं। आज आप सुनेंगे पांचवी और अंतिम कड़ी। प्रस्तुत करता है जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सीआर व्यास।
1: नमस्कार। अब आज हम राग पूर्वी के बारे में बात करेंगे। एक पहेली में बंदिश पेश कर रहा हूं जिसमें पूर्वी ही पूर्वी है।

राग पूर्वी ये तो बहुत ही पुराना राग है और फादर राग है, थाट राग है, उसमें से बहुत सारे राग आते हैं, जैसे वसंत है, परज है, ये राग इसमें ये ताट से निकले हैं। तो पूर्वी और पुर्याधनाश्री एक

धनाश्री और पुरिया धनाश्री में जो धनाश्री अंग है, धनाश्री अंग में पंचम बहुत ही प्रोमिनेंट रहता है। इसके लिए बंदिश की शुरुआत पंचम से ही हुई है।

पुर्यादनाश्री पूर्वी में कैसा फर्क होता है, इसमें पंचम प्रधान है, उसमें गंधार निषाद प्रधान पूर्वी में, तो यही बात है कि राग के बारे में जो बंदिश के द्वारे जो हम राग प्रस्तुत करते हैं वही अच्छी बात है। बंदिश को बहुत ही संभालना चाहिए और जितने बंदिशें एक राग में आपको गा सकते हैं उतना ही वो राग अच्छे आप गाएंगे। यही मेरा आपको संदेश है कि हर एक राग में अनेक बंदिश आप सीखने का कोशिश कीजिए और ये इसको राग प्रस्तुत करने में आपको सुविधा होगी और अच्छे तरह से आप राग प्रस्तुत करेंगे। यही संगीत की जो खासियत है, बहुत सारे लोग कहते कि वही शास्त्रीय संगीत में हमको कोई रुचि नहीं है। रुचि नहीं है क्योंकि कलाकार लोगों ने ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो राग पेश कर रहे हैं वो ठीक तरह से पेश कर रहे हैं या नहीं, इसको सोचना चाहिए। और जहाँ तक आपको हर एक राग में बंदिशी याद नहीं है तो आप राग अच्छे तरह से पेश नहीं कर सकेंगे। ये मेरा आपको संदेश है। अब मैं पूर्वी के बारे में आपको बताया कि इसमें कई सारे राग आते हैं, जैसे परज है, बसंत है, ललित है, तो मैं आपको एक परज की बंदिश सुनाता हूँ। और ये क्यों है पूर्वी में, क्यों है पूर्वी में जो आरोह हो रहे, नीरे गा मदा नी सारे नी।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा इस श्रृंखला की पांचवी और अंतिम कड़ी अभी आपने सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास। आपके साथ हारमोनियम पर संगत की पुरुषोत्तम वालावलकर ने और तबले पर साथ दिया मुकुंद राजदेव ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस थोड़ी ही देर में।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि। आज हम स्मरण कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के अमर स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी को, जिनकी मधुर आवाज़ ने संगीत को अमरता प्रदान की। रफ़ी साहब ने प्रेम, भक्ति, देशभक्ति, गज़ल, कव्वाली और शास्त्रीय संगीत हर विधा में अपनी अनुपम गायकी से श्रोताओं के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। आए ना बालम, आइए, ये पहला गीत इस कार्यक्रम का आपको सुनवा रहे हैं शबाब फिल्म से। शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

ये गीत अभी आपने सुना शबाब फिल्म से। हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को। भारतीय सिनेमा के सबसे महान और लोकप्रिय पार्श्व गायकों में से एक थे मोहम्मद रफ़ी, जिन्होंने अपनी जादुई आवाज़, व्यापक गायकी और हर शैली में ढल जाने की अद्भुत कला से संगीत जगत पर राज किया।

0: बूट पॉलिश इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर। आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी को।
1: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
2: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सुं आयो विनायक, करो ये नसीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
1: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ओले, ओले, ओले, ओले, ओले,
0: ओले। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ऐसी आत्मीयता थी कि हर गीत एक जीवंत अनुभूति बन जाता था। उनकी असाधारण प्रतिभा के लिए उन्हें कई बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1948 में महात्मा गांधी पर गाए उनके देशभक्ति गीत के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें चांदी का पदक प्रदान करके सम्मानित किया था। फिलहाल आपको सुनवाते हैं यह अगला गीत। चित्रलेखा फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर के बोल हैं, रोशन का संगीत। साहिर लुधियानवी की रचना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि, उनकी याद का दिन। उन्हें सिनेमा जगत के सबसे लोकप्रिय फिल्म फेयर पुरस्कारों में 6 बार सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मिला। 14वीं का चांद हो, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बहारों फूल बरसाओ, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, क्या हुआ तेरा वादा। इन गीतों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए नामांकित किया गया था। आज हम नमन करते हैं सुरों के उस अमर साधक को, जिनकी आवाज़ समय की सीमाओं से परे आज भी हर दिल में गूंजती है। सुनवा रहे हैं आपको अगला गीत फागुन फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कमर जलालाबादी ने इस गीत को लिखा है, ओपी नैयर ने संगीत से सजाया है।

0: मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

किशन की बनाई धुन पर। श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी साहब का पहला रिकॉर्ड किया गया गाना पंजाबी फिल्म गुल बलोच का था, जो कि 1944 में रिलीज़ हुई थी, और ये एक युगल गीत था जिसे उन्होंने जीनत बेगम के साथ में रिकॉर्ड किया था। और हिंदी सिनेमा में पदार्पण उनका हुआ था फिल्म गांव की गोरी, इस फिल्म से 1945 में हिंदी पार्श्व गायन की शुरुआत उन्होंने की थी। अब अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, लाल रुख इस फिल्म का, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, कैफ़ी आज़मी की रचना है, खयाम का संगीत।

दो बीघा जमीन इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में। शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी का संगीत।

के हिसाब से और संगीत की शैलियों और अभिनेताओं के अनुसार अपनी आवाज बदलने में पूरी तरह से पारंगत थे, यही तो उनकी खासियत थी। 31 जुलाई उनकी पुण्यतिथि पर हम इस महान स्वर साधक को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं संपन्न करने की दीजिए आज्ञा।

अभी हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 7:30 हुए हैं। सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत इस सुविचार से। मुंशी प्रेमचंद का कथन है, दौलत से आदमी को जो इज्जत मिलती है वह उसकी नहीं उसकी दौलत की इज्जत होती है। श्रोताओं, आज सफर कर रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते रोहतास का अपने रेडियो दोस्त विनोद के साथ। कार्यक्रम को गति देते हुए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर।

ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 31 जुलाई वर्ष का 212वां और लीप वर्ष में यह 213वां दिन है। साल में अभी और 153 दिन शेष हैं। 31 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालें तो आज ही के दिन 2009 को आर्थिक सहयोग मंच बिम्सटेक का नाम बदलकर बंगत छेश किया गया था।

भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सुधीर पारिख को पॉल हैरिस अवार्ड प्रदान किया गया था और आज ही के दिन प्रोफेसर अशोक सेन को पहली यूरी मिलियन फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज, जिसे मौलिक भौतिकी पुरस्कार कहा जाता है, जिसमें से 9 विजेताओं में से एक विजेता को घोषित किया गया था, वो थे प्रोफेसर अशोक सेन। ये विजेता 2012 में आज ही के दिन घोषित हुए थे। अब नज़र डालते हैं उन व्यक्तियों पर जो आज के दिन इस दुनिया में पहला कदम रखा यानी जन्म लिया। इसमें पहला नाम आ रहा है 1880 को जन्मे मुंशी प्रेमचंद का, जो प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार थे। उनका जन्म आज ही के दिन 1880 को हुआ था और आज ही के दिन जन्म हुआ था 1998 को श्रीजा अकुला का, जो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उनका जन्म आज ही के दिन 1998 को हुआ था। और भारत के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मुमताज का भी जन्म आज ही के दिन 1947 को हुआ था। आज के दिन जन्म हुआ था दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी का, जो भारत के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उनका भी जन्म आज ही के दिन 1907 को हुआ था, जिनका नाम दामोदर धर्मानंद था। और आज के दिन जन्म हुआ था के शंकर पिल्लई का, जो कि शंकर के नाम से जाना जाता है, जो प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट थे। उनका भी जन्म आज ही के दिन 1902 को हुआ था, जिनका नाम था के शंकर पिल्लई। अब हम नजर डालते हैं आज निधन हुए व्यक्तियों पर। उन व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जो आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए यानी छोड़ चले गए। इसमें पहला नाम आ रहा है 1940 को निधन हुए अमर बलिदानी उधम सिंह का, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका निधन आज ही के दिन 1940 को हुआ था, अमर बलिदानी उधम सिंह। और आज ही के दिन निधन हुआ था जो भारतीय पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का, उनका भी निधन आज ही के दिन 1980 को हुआ था। और आज ही के दिन निधन हुआ था 1941 को आशुतोष दास का, जो स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवक रहे। आशुतोष दास का भी निधन आज ही के दिन 1941 को हुआ था। और निधन हुआ था आज ही के दिन 2021 के मान कौर का, जो भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थी। उनका भी निधन आज ही के दिन 2021 में हुआ था। श्रोताओं, अब इस इतिहास के बाद अब सुनते हैं खूबसूरत सा गाना अनुराधा पौडवाल और मनु के आवाज में। गौहर खानपुनी के लिखे इस गीत को अमर उत्पल ने संगीत दिया है और फिल्म है कसम तेरी कसम।

अभी आपने सुना कसम तेरी कसम फिल्म का ये गाना अनुराधा पौडवाल और मनु की आवाज़ में। श्रोताओं, अब हम नज़र डालेंगे स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उन्हें ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्युत अधीक्षक अभियंता इंजीनियर इंद्रदेव कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता सासाराम ब्रवीक और विद्युत कार्यपालक अभियंता डेहरी इंजीनियर संतोष कुमार बैंकर्स सहित सभी सहायक विद्युत अभियंता एवं कनीय विद्युत अभियंता उपस्थित रहे। वाराणसी औरंगाबाद NH2 टोलवे ने हाईवे कॉरिडोर पर एक सप्ताह तक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सड़क सुरक्षा नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। प्रखंड के तिवरा पंचायत स्थित पीपरडी हाई स्कूल, तिलोखर पंचायत के तिलोखर हाई स्कूल और यदुनाथपुर पंचायत के यदुनाथपुर हाई स्कूल में बुधवार को पुलिस दीदी टीम और अभय ब्रिगेड द्वारा ऑपरेशन विधि पालक युवा के तहत जागरूक कार्यक्रम चलाया गया। दावत प्रखंड के अंचल कार्यालय परिसर स्थित मनरेगा भवन में गुरुवार को अभियान बसेरा 2 के तहत क्षेत्र के 25 भूमिहीनों के बीच विधायक आलोक कुमार सिंह और SDM दिलीप कुमार ने किया। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में संचालित भूमि दान योजना के अंतर्गत भूमिहीन दलित एवं अत्यंत गरीब परिवार को भूमि दान का रसीद वितरण किया जा रहा है, जिसके तहत भूमि सुधार विभाग द्वारा सरकार द्वारा संचालित अभियान बसेरा 2 के तहत आयोजित बंदोबस्ती वासीगत पर्चा 25 लाभुकों के बीच वितरण किया गया। संझौली बाजार में आरा सासाराम मुख्य मार्ग के दोनों किनारों पर किए गए शेष अतिक्रमण को हटाने के लिए शुक्रवार से यानी आज से विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में विक्रमगंज के अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने आदेश जारी कर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है तथा अभियान को शांतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार अभियान शुक्रवार यानी आज से सुबह 8 बजे से

हेतु होगा। अभियान के दौरान सड़क, नाला, फुटपाथ और सार्वजनिक भूमि पर किए गए सभी अस्थायी अतिक्रमण को नियमानुसार हटाया जाएगा। डालमियानगर स्थानीय महिला कॉलेज में शुक्रवार को एक दिवसीय रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा। रोजगार उत्सव का आयोजन महिंद्रा कंपनी की नंदी फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि इस जॉब उत्सव में देश की प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक कैंपस ग्रुप, क्विज कोर्प, एडिस्को, ब्लाइंड किट, अमेजन टैबलेट्स जैसे कंपनियां आकर्षण वेतन एवं जॉब रोल के साथ उपलब्ध रहेंगी। महिला कॉलेज डालमियानगर डेहरियोन सोन के शैक्षणिक सत्र 2023-27 की छात्राएं जिन्हें इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा किया है उनके लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है। पवित्र श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं एवं यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल द्वारा सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। मेला अवधि 30 जुलाई से 28 अगस्त तक मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर यात्री सुविधा, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा एवं निर्बाध रेल परिचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आर्थिक अपराध इकाई की घटना से पहुंची टीम ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के 6 ठिकानों सहित डेहरी स्थित उनके आवास पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी किया गया। यह मामला करीब 1,20,00,000 से अधिक आय के संपत्ति अर्जित करने से जुड़ा है। बताया गया है कि बिहार में यह 6 छापेमारी कार्यपालक अभियंता के सासाराम स्थित कार्यालय सहित करीब 6 ठिकानों पर चली। विक्रमगंज रेलवे क्वार्टर से बुधवार को देर रात सीबीआई ने एक सहायक मंडल अभियंता भोला शंकर कुमार को रिश्वत मांगने के मामले में पूछताछ के लिए ले गई। विक्रमगंज रेलवे स्टेशन परिसर में पदस्थापित सहायक मंडल अभियंता को उनके कार्यालय के नजदीक आवास में जांचोपरांत अपने साथ ले गई है। बताया जाता है कि इंजीनियर को उनके आवास से कॉन्ट्रैक्टर द्वारा रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। रोहतास जिले के प्रसिद्ध गुप्ता धाम में सावन माह की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। सावन की पहली सोमवारी को लेकर गुरुवार से ही बाबा गुप्तेश्वर नाथ के दर्शन व जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालु धाम पहुंचने लगे। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। रोहतास के अलावा कैमूर, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद तथा अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु गुप्ता धाम पहुंच रहे हैं। इसी के साथ सुन लेते हैं एक और गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है मिलन।

अभी आपने सुना मिलन फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। श्रोताओं, अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंचते हुए नज़र डालेंगे समाचार पत्रों की सुर्खियों पर, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक संदेश।

0: जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नजर डालते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज लगभग सभी अखबारों ने एक दो खबरों को प्राथमिकता देते हुए अपने पहले पन्ने पर जगह दिया है और सचित्र छापा है। प्रभात खबर लिखता है, गया जी में लगेगा 6,000 करोड़ का स्टील प्लांट, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। बांकीपुर उपचुनाव में पड़े महज 34.30% वोट, 3 को रिजल्ट आएगी। इस खबर को प्राथमिकता दिया है प्रभात खबर ने। और प्रभात खबर के हवाले से यह भी खबर है कि इंजीनियर के पास मिले आधा किलो सोना, लग्जरी फ्लैट और महंगी घड़ियां। प्लेट गन के इस्तेमाल पर रोक से इनकार, सुप्रीम कोर्ट बोला पहले नियमों को दें चुनौती। प्रभात खबर के हवाले से ये खबर है कि दीपक प्रकाश व विधायक न एमएलसी फिर कैसे मंत्री बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार से सवाल करते हुए कहा है कि बिहार सरकार में पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है, फिर भी वह 6 महीने से ज्यादा समय से अपने पद पर कैसे बने हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ इस मामले की मंगलवार को भी सुनवाई करेगी। अगली खबर लेते हैं हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान भी लिखता है, गया जी में 6,000 करोड़ से इस्पात कारखाना लगेगा और उपचुनाव बांकीपुर में उदासीन रहे मतदाता, 34.30% वोटिंग। दैनिक जागरण के हवाले से खबर है कि बांकीपुर में मात्र 34.39% हुआ मतदान। चिन्हित गैर मजरुआ आम जमीन की बिक्री पर होगी रोक, ये खबर है दैनिक जागरण की। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है, आयुष्मान 1,000 करोड़ का भुगतान अटका, 1.5 लाख क्लेम पेंडिंग। मौजूदा नियम रहते पेलेट गन पर रोक नहीं लग सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बांकीपुर उपचुनाव पर 34.30% हुई वोटिंग, पिछले साल से 6.67% कम, 3 को आएगी रिजल्ट। श्रोताओं, अब इसी के साथ प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास से दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त विनोद को। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

अभी हमारे श्रोता प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, समाचार प्रभात सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से थोड़ी देर में।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
3: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डेटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
2: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
5: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
2: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल

0: होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर प्रदर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरों मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फलस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ है हमारी संवाददाता।
3: मौसम विभाग ने

0: आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी और वलसाड जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
2: The reality of life is that everything has a beginning.
3: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
1: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं, असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्य लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त

0: और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी हमारे श्रोता समाचार प्रभात सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8:15 हुए हैं। सुनते हैं एक देशभक्ति संगीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। कवि प्रदीप ने इस गीत को लिखा है और गुलाम हैदर ने संगीत दिया है। फिल्म है जागृति।

मोहम्मद रफी की आवाज में। श्रोताओं, सुबह के 8:20 होने वाले हैं। अब हम सुनते हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। आज इस अंक के साथ है आपका रेडियो दोस्त विनोद। तो आइए सफर करते हैं गीतों का, और कार्यक्रम का पहला गाना सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है अपनापन, सुनना चाहा है आप सबों ने। इसके लिए हमारे पास पत्र आया है जय हिंद तेंदुआ नवीनगर से, गिरेंद्र सिंह, अजीत सिंह, सुजीत और टुनटुन। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। थाना नोखा ग्राम कोन वार्ड नंबर 6 से आया है धनजी प्रसाद चौरसिया, गंगा सागर चौरसिया, सोनू बाबू, कन्हैया कुमार, पिंकू कुमार, आनंद कुमार, रंजीता देवी, जीजा भरत चौरसिया। ये श्रोता है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा, गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। छत्तीसगढ़ के आप हैं दंतरेगी से भागवत वर्मा, लवई से गुलाबदास मणिकपुरी, लछनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से आप हैं दुर्गा राम साहू। आप सबों ने सुनना चाहा है अपनापन फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब का, तो उन्हीं को करते हैं याद और सुनते हैं ये गाना ताजमहल फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, शाहिर के बोल हैं, रोशन का संगीत है, फिल्म है ताजमहल। सुनना चाहे आप सब उन्हें। छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। ये श्रोता हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, दादा ठाकुर, शारदा गुप्ता, रंका रानी, श्वेता रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से। ऐसबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से आप हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखोड़ी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यवंशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, तन्मय राज और गुनगुन। थाना मुड़गढ़नोखा रोहतास से आप हैं मुन्ना भाई मंसूरी, नजबुन निशा, सदमा मंसूरी, सदाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शहबाज। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। समीरपुर बक्सर से आप राज एस टी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। कनेर मोहल्ला पटियाला से आप है बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण जीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। ये आखिरी पथ है इस गाने के लिए। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, सदफ आरजू, साहिल अरमान, अफजर हामिद, मशकूर आलम और शमा परवीन। चलिए सुनिए ताजमहल फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ
3: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोताओं रुख करते हैं अपने कार्यक्रमों की तरफ और कर रहे हैं हम याद मोहम्मद रफी को। इन्हीं की याद में सुनते हैं एक और गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है इज्जत। सुनना चाहे आप सबों ने इस गाने के लिए पत्र आया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और गावेंद्र कुमार वर्मा। ब्रह्मपुरा मनीगाछी से आप हैं भाई अच्छेलाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत।

जहानाज शिक्षिका, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, शाहिया, शाहीन नाज, नाजिया, नूरी नाज, करेल बिहार से बेगम निकहत परवीन, सदफ आरजू। ये श्रोता है सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिक्की, रिंकी, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्र, ढोली सकरा से आप हैं जयंत कुमार बैरागी, गोकुल चौक गंगा जला सहरसा से आप हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्की वाली फलनाधा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, गजेंद्र कुमार निराला, तेलंगाना भोंगिर से आप हैं मोहम्मद ब्रहनुद्दीन, यूसुफुद्दीन, अब्दुल बाबा अंजाना। तो ये सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत फिल्म इज्जत से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

पहुंचते हैं कार्यक्रम के अगली पड़ाव में और सुनते हैं एक और गाना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है आन मिलो सजना। सुनना चाहा है आप सब उन्हें। आप हैं कर्नाटका स्टेट से चिन्ना, तिरुपति, विलेज, प्रकाश, श्यामला, अश्विनी, आनंद और मानवीत है। ये श्रोता हैं गढ़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, भरत सिंह चौहान, आर के सिंह चौहान। छर सिंहवा से आप हैं छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से आप हैं छनु लाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। ये श्रोता हैं जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से आप हैं वकील राही, फिरोज आलम, नाज परवीन और अर्श बाबू। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, लखविंदर सिंधु, महावीर सिंधु, गुरुचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत फिल्म आन मिलो सजना से।

कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं एक और गाना असली नकली फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म है असली नकली। सुनना चाहा है आप सबों ने। राजनगर मधुबनी से राजकुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रवि राज, गौरव कुमार, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता, एम के गुप्ता और उनके मित्रगण। छपरा दादलानी बाजार से आप हैं संजय कुमार गुप्ता, संजीत कुमार गुप्ता, सर्वजीत कुमार गुप्ता, सुधांशु कुमार गुप्ता। सीतामढ़ी महावीर स्थान से आप हैं प्रभात कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता, मंटू कुमार गुप्ता एवं निकी कुमार गुप्ता। फुलवारी शरीफ पटना से अविनाश चंद्र, ज्योति गुप्ता और जाह्नवी और पीहू। ये हैं क्वात से शेख जफर हसन और राकेश रोशन। ये श्रोता हैं इसी गाने की ख्वाहिशमंद। ग्राम महोना सासाराम से भरत सिंह, हृदयनाथ सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल सिंह, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, बिमला देवी, मास्टर अनिल सिंह, रविंद्र सिंह, डमरू कलाकार और मनोज गुप्ता। न्यू एरिया सासाराम से आप हैं मुन्ना, गुड्डन, आदर्श, ओम, अरुण, नंदिनी, विनय, सुजय कांत सिंह, वीना सिंह, अनुज, अंकित और उनके प्यारे दादा दादी। ये श्रोता हैं अस्मिता रेडियो रिपोर्ट गुरु भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, मुरली छत्री, श्रीमती कविता छत्रीय, मिथिलेश यदु, दशरथ साहू, कुमारी अंकिता जोशी, बेबी वैदेही जोशी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर जी।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम पसंद आपकी यहीं संपन्न हो जाएगा और इसके बाद हम पुनः चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन धारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

फिल्म असली नकली के इसी गाना के साथ ही दीजिए इजाजत कार्यक्रम पसंद आपकी से अपने रेडियो दोस्त विनोद को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। सुबह के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाश

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 34.31% मतदान, पिछले विधानसभा चुनाव से 7% कम हुई वोटिंग। गया जी में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से इस्पात कारखाना की होगी स्थापना। प्रतिवर्ष 1 से 1.5 मिलियन टन इस्पात का होगा उत्पादन। और मौसम विभाग ने आज अररिया, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, बांका, कैमूर और पश्चिम चंपारण जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी थी। लोकसभा से विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विद्यार्थियों के भविष्य के लिए लाया गया है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: विधेयक में 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की

0: संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि यह परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीक आधारित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह कानून परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कर विद्यार्थियों की मेहनत और भविष्य की रक्षा करेगा।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है।
2: राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 सिर्फ एक विधायी संशोधन नहीं है, यह भारत की आत्मा, सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 34.31% मतदान हुआ है। यह वर्ष 2010 में परिसीमन के बाद बने इस विधानसभा क्षेत्र में अब तक का सबसे कम मतदान प्रतिशत है। 2025 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में 41.1% मतदान हुआ था। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत दांव पर है। इनमें एनडीए से भाजपा के नीरज कुमार, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी और जन सुराज के प्रशांत किशोर प्रमुख हैं। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गया जी में एक निजी कंपनी लगभग 6000 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत इस्पात कारखाना स्थापित करेगी। इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में पटना में उद्योग विभाग और कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस्पात संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 1 से 1.5 मिलियन टन होगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह परियोजना राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को नई गति देगा। दरभंगा जिले के सकरी और मधुबनी के रैयाम चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना खेती के विस्तार को लेकर किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सकरी और रैयाम चीनी मिल क्षेत्र में 9000 से अधिक किसानों ने गन्ना खेती से जुड़ने और विभागीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया है। गन्ना उद्योग विभाग ने किसानों से कृषि विभाग की डीबीटी आईडी के आधार पर सीसीएस पोर्टल पर गन्ना आईडी के लिए आवेदन करने की अपील की है। विभाग ने बताया है कि गन्ना आईडी बनने के बाद ही किसान विभाग की विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का समयबद्ध लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा।
0: भारत ने पहली बार समुद्री मार्ग से बिहार का प्रसिद्ध मखाना कनाडा निर्यात किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि 7 टन मखाने की 2 कंटेनर खेप मुंद्रा बंदरगाह से कनाडा भेजी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम बिहार के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने और किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य

0: बने 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह पूरी तरह कानून से जुड़ा प्रश्न है और राज्य सरकार को इसका संवैधानिक आधार बताना होगा। न्यायालय ने राज्य सरकार को 4 अगस्त तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश दीपक प्रकाश के मंत्री पद को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश की सभी महिला थानों में जल्द ही 2 नई इकाइयों का गठन किया जाएगा। इनमें एक इकाई मानव तस्करी की रोकथाम और दूसरी महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों की निगरानी करेगी। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर पटना पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है और बिहार पुलिस इससे निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: ह्यूमन ट्रैफिकिंग का की जो समस्या है वो हमारी अन्य जो पुलिस की समस्याएं हैं उसे कहीं भी कमतर नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या को एक उचित स्थान पुलिस की कार्यप्रणाली में मिलना चाहिए।
0: राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अवैध ऑनलाइन सामग्री हटाने की प्रक्रिया के लिए पुलिस रेंज के आईजी और डीआईजी को भी कंटेंट हटाने का अधिकार दे दिया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार रेल आईजी और पुलिस मुख्यालय के आईजी कार्मिक को भी यह अधिकार प्रदान किया गया है। अब तक यह अधिकार केवल साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई के डीआईजी के पास था। राज्य के 7 जिलों में जल्दी 50-50 बेड के आयुष अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य आयुष समिति केंद्र सरकार के सहयोग से इन अस्पतालों के संचालन की तैयारी को अंतिम रूप दे रही है। बेगूसराय, सिवान, गया, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा और मोतिहारी में बनने वाले इन अस्पतालों में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति से उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं अररिया, बांका, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, कैमूर और पश्चिम चंपारण जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
3: दिनांक 31 जुलाई को राज्य के समस्त उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, भभुआ एवं पश्चिम चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: सारण जिले में बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग की प्रारंभिक लिखित परीक्षा में ब्लूटूथ उपकरण के माध्यम से नकल कराने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में मद्य निषेध विभाग के एक सिपाही, 2 होमगार्ड जवान और एक परीक्षार्थी सहित कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि इसी परीक्षा में नकल कराने के आरोप में पुलिस ने पटना से भी 10 लोगों की गिरफ्तारी की है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पुलिस रेडियो में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तकनीकी और होमगार्ड सेवा संवर्ग में अधिनायक अनुदेशक के पद पर नियुक्ति को लेकर 5 अगस्त को होने वाली लिखित परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा शीघ्र की जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय पटना की ओर से दरभंगा समाहरणालय परिसर में हर घर तिरंगा

0: विषय पर एक दिवसीय क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी कौशल कुमार, सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट राजेंद्र कुमार और पीआईबी पटना के उपनिदेशक लौकिक पारख ने संयुक्त रूप से किया। कार्यशाला में हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बेतिया के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच घटना के कुछ घंटों बाद वही बाघ जंगल में मृत पाया गया। वन विभाग मामले की जांच कर रहा है। बक्सर जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र के गोपाल टेरा के पास पुलिस ने 1 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इधर अररिया जिले के फुलकाहा से पुलिस और एसएसबी की टीम ने छापेमारी कर एक घर से गांजा और 10 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद किए। मौके से 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। नेपाल के तराई क्षेत्र में हिंसक घटनाओं के बीच सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुपौल और अररिया जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस और एसएसबी की टीम सघन गश्त और जांच अभियान चला रही है। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया थाना क्षेत्र स्थित तिफी गांव में अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक को गोली मारकर 4 लाख रुपए लूट लिए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बांकीपुर क्षेत्र में अब तक का सबसे कम मतदान, सिर्फ 34.31% वोटिंग। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, मतदाता उदासीन, प्रत्याशी बेचैन। प्रभात खबर ने लिखा है, सासाराम लघु सिंचाई के कार्यपालक अभियंता के पास मिले आधा किलो सोना, लग्जरी फ्लैट और महंगी घड़ियां। दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, मौजूदा नियम रहते पेलेट गन पर रोक नहीं लग सकती। आज अखबार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संसद में दिए बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, E20 पेट्रोल से कम होगा माइलेज। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 34.31% मतदान, पिछले विधानसभा चुनाव से 7% कम हुई वोटिंग। गया जी में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से इस्पात कारखाना की होगी स्थापना, प्रतिवर्ष 1 से 1.5 मिलियन टन इस्पात का होगा उत्पादन। और मौसम विभाग ने आज अररिया, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, बांका, कैमूर और पश्चिम चंपारण जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
1: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक या

0: 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

प्रिय श्रोता, आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 9:06 हुए हैं। नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले संक्षिप्त विवरण पर। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह के 9:10 पर हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका सुनेंगे और 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुन पाएंगे। सुबह के 10:00 हिंदी समाचार के तुरंत बाद आप सबों की सेवा में हाजिर होंगे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी के साथ 10:05 पर, और भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी सुन पाएंगे सुबह 10:30 पर, और भोजपुरी एल्बम संग्स कार्यक्रम रसधार सुनेंगे सुबह 10:45 पर। पूर्वाहन के 11:00 चलेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों की तरफ, जहां से सुनेंगे रंग तरंग यादों की महफिल, विविध भारती का गीतमाला, सदाबहार नगमे, फिल्मी गीत, हेलो सहेली, गीतों भरी कहानी, और पुनः हाजिर होंगे आप सबों की सेवा में शाम 5:10 पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदन के साथ। महिला सखियों का कार्यक्रम घर आंगन का समय होगा शाम 5:30 पर, और भोजपुरी लोकगीत सुन पाएंगे शाम 6:00। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का समय होगा शाम 6:05 पर, हम इसे आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे। ग्राम श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर सुन पाएंगे शाम 6:10 पर, और भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत सुनेंगे शाम 6:40 पर।

शाम 7:15 पर सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास और प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का समय होगा शाम 7:25 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से। पुनः हाजिर होंगे आप सबों के सेवा में कार्यक्रम ई मनपसंद के साथ शाम 7:50 पर। शाम 8 सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा और ई मनपसंद का भाग 2 सुन पाएंगे शाम 8:15 पर। संध्या 8:45 पर समाचार संध्या का समय होगा। हम इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा सुन पाएंगे रात्रि 9:00। मनकवत एवं ख्वाजा बंदगी में सुनेंगे आज हम रात 9:15 पर और रेडियो साहित्य की पत्रिका शब्दशील का प्रसारण हम इसे समापन तक रिले करेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही का रिकॉर्डिंग का प्रसारण समापन तक रिले किए जाएंगे। समय रहते सुन पाएंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम प्रसारण रात 10:15 पर और रात 10:30 पर सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम चित्रपट तराने। अगले दिन के कार्यक्रम का विवरण सुनेंगे रात 10:55 पर और रोजाना की तरह हिंदी व अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 11:00 से। सभा का समापन रात्रि 11:10 पर।

शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:10 हो चुके हैं। सुनते हैं हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका।

इस गाना को आप सुन रहे हैं उदित नारायण और प्रभा भारती की आवाजों में। विनय बिहारी के बोल हैं, लव कुश का संगीत है, फिल्म है विल्ला नंबर 786।

कार्यक्रम गीत मालिका की अगली पेशकश हंस राज हंस की आवाज में। श्याम बालकर ने इस गीत को लिखा है, आनंद राज आनंद ने संगीत दिया है। फिल्म है चोरनी।

कार्यक्रम की अगली पेशकश एक मुंडा फिल्म से लता मंगेशकर ने इसे गाया है। इंदिवर के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत है, फिल्म है एक मुंडा।

कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं एक और गाना मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल के आवाजों में। संतोष आनंद का बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म है बड़े घर की बेटी।

बड़े घर की बेटी फिल्म के इसी गाना के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हुए हैं, अगला प्रसारण

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज मोहम्मद रफी की याद का दिन है, उनकी स्मृति में विशेष फीचर।
1: तुम मुझे यूं भुला न पाओगे,
0: तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। गायकी की दुनिया का एक सितारा, जिसकी शीरी आवाज दुनिया के हर कोने में गूंजती है, मोहम्मद रफी नफरतों और जुल्मतों से भरी इस दुनिया में प्यार का राग।

0: रात की रात।
1: आवाज की दुनिया का एक फरिश्ता, एक बेहतरीन शख्स और एक महान कलाकार। समझ नहीं आता मोहम्मद रफी पर बातें कहां से शुरू की जाएं और कहां खत्म की जाएं।
2: कि तुझे नगमों की जां अहले नजर यूं ही नहीं कहते, तेरे गीतों को दिल का हम सफर यूं ही नहीं कहते।
1: विविध भारती के संग्रहालय से संगीतकार नौशाद।
2: सुनी सबने मोहब्बत की जबा आवाज में तेरी, धड़कता है दिले हिंदुस्तान आवाज में तेरी।

0: 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में मोहम्मद रफी का जन्म हुआ था। उन दिनों में उनके गांव में एक फकीर होता था जिसकी आवाज ने रफी को गाने की प्रेरणा दी। बाद में मोहम्मद रफी का परिवार लाहौर चला आया। यहाँ उन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब से संगीत की तालीम ली थी।
1: लाहौर में कुंदन लाल सहगल का एक कंसर्ट हो रहा था, लेकिन अचानक बिजली चली गई और आयोजन रुक गया। सहगल ने कहा कि जब तक बिजली नहीं आएगी वो नहीं गाएंगे। 13 बरस के मोहम्मद रफी इस आयोजन में अपने रिश्तेदार के साथ आए हुए थे। उन्होंने कहा कि रफी गाना गाकर जनता को शांत कर सकते हैं। इस तरह से मोहम्मद रफी ने पहली बार मंच पर गाया। फिल्मों में पहली बार गाने का मौका संगीतकार श्याम सुंदर ने दिया सन 1942 में।

0: फिल्म थी कुल बलोच।
1: गुरेनी हिरेनी तेरी याद ने आना सताया
0: तेरी। सन 1946 मोहम्मद रफी ने मुंबई आने का फैसला किया। यहां संगीतकार नौशाद ने उन्हें सबसे पहले फिल्म पहले आप में गाने का मौका दिया। सन 1946 में फिल्म शाहजहां में कुंदन लाल सहगल की आवाज के पीछे मोहम्मद रफी ने कोरस में ये गाना गाया था।

0: शुरुआती संघर्ष के बाद मोहम्मद रफी को पहला बड़ा मौका संगीतकार नौशाद ने दिया। फिल्म थी अनमोल घड़ी।
1: तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, तेरा खिलौना टूटा बालक।
0: इसके बाद 1948 में फिल्म मेला के इस गाने से मोहम्मद रफी को काफी शोहरत मिली।

0: सन 1949 में आया दुलारी फिल्म का ये गाना।
1: सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।
0: मोहम्मद रफी की कामयाबी का कारवां सन 1951 से शुरू होता है। फिल्म बैजू बावरा।

0: इसके बाद मोहम्मद रफी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगीतकार नौशाद ने उनकी याद में विविध भारती से ये बात कही थी।
1: गायकी था हुस्ने फन तेरा रफी, गायकी था तेरा हुस्ने फन रफी, तेरे फन पर हम सभी को नाज है, ये सबक सीखा तेरे नगमात से, जिंदगानी प्यार का एक साज है, मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में तेरी आवाज है।

रफी इतने पक्के सुरों वाले गायक थे कि गीत चाहे शास्त्रीय हो या पश्चिमी, उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मोहम्मद रफी और नौशाद की जोड़ी ने फिल्म संगीत के इतिहास के कुछ बेमिसाल और कालजयी गीत दिए हैं। सन 1960, फिल्म कोहिनूर, राग हमीर पर आधारित ये

0: मोहम्मद रफी ने मस्ती भरे गाने भी खूब गाए। चाइना टाउन
1: बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा
0: जंगली
1: आई आईया करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु
0: प्रिंस
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तो जैना जाए।
2: मतलब मेरी आवाज है, मैं समझता हूँ रफी साहब ना होते तो मैं बड़ा मैं इनकम्प्लीट था। उनके साथ होने से मेरी तस्वीर पूरी हो।
0: विविध भारती के संग्रहालय से जाने माने अभिनेता शम्मी कपूर।
2: उन्होंने मुझे स्टाइल दिया जैसे मैं समझता हूँ कि रफी को स्टाइल ओपी नहीं ने दिया। रफी साहब इज अ वेरी गुड सिंगर और क्या उनकी पिच है, लेकिन एक स्टाइल जो है वो नैयर ने दिया। हम वो खींचते थे आवाज एंड रफी साहब यूज्ड ऑल दैट फॉर मी ब्यूटीफुली और ही वाज वेरी रिसेप्टिव टू कि मैं जिस तरह से चाहता था। मैं पेरिस में था और उन्होंने गाना उन्होंने मेरी गैर हाजिरी में रिकॉर्ड किया और जब मैंने वो गाना सुना मैं तो बिल्कुल दंग रह गया कि ये ऐसे कैसे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। और जब मेरी मुलाकात हुई

उनसे जब मैं वापस आया तो मैं कहा रफी साहब ये आपने ये गाना इस तरह से कैसे गा दिया, मुझे जैसे चाहिए था जैसे मैंने सोचा था वैसे ही आपने गाया ये गाना, ये बताइए कैसे। कहते यार पापा मैंने बस ये सोचा कि शम्मी कपूर यहाँ पे की करेगा, वो शम्मी कपूर हाथ ऐसे फैलाएगा, वो शम्मी कपूर टंग ऐसे फैलाएगा, शम्मी कपूर तो तले इंज करके गिर जाएगा, फिर दो रोटियां खाएगा, तो मैं वैसे गाना गाता रहा। आप यकीन कीजिएगा दिस इज अनकैनी, वेरी अनकैनी के जिस तरीके से मैं सोचूं उस तरीके से वो आदमी ही इज एक्टिंग द होल सॉन्ग आउट, एंड दैट सॉन्ग वाज आसमान से आया फरिश्ता।

अपने दो रोटियां खाएगा तो मैं वैसे ही गाना गाता रहा, आप यकीन कीजिएगा। दिस इज अनकैनी, वेरी अनकैनी, के जिस तरीके से मैं सोचूं उस तरीके से वो आदमी इज एक्टिंग द होल सॉन्ग आउट, एंड दैट सॉन्ग वाज आसमान से आया फरिश्ता।

0: मोहम्मद रफी ने जाने कितनी भाषाओं में गाने गाए, यहाँ तक कि अंग्रेजी में भी। उन्होंने गैर फिल्मी गीत, गजलें, नातिया कलाम सबको अपनी आवाज दी। ये है उनका एक गैर फिल्मी गीत।
1: ब्रिज में लौट चलो।
2: दशक बदलती रही, युग बदलते रहे, पर रफी की आवाज का करिश्मा खत्म नहीं हुआ। उनकी आवाज लोगों के दिलों पर साल दर साल राज करती रही। आइए दशक दर दशक रफी की यात्रा पर एक नजर। 50 का दशक।

0: उनको खुश करना हो ना हमको, तो लक्ष्मी जी हम दोनों क्या करते थे?
1: विविध भारती के संग्रहालय से संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के प्यारे लाल
0: घर से चाय लेके आते थे, तो उनकी चाय जो बनती थी वो किसको देते नहीं थे, वो खुद पीते थे। लेकिन वो थर्मास के अंदर आती थी, दो थर्मास। लेकिन वो कैसी चाय बनती थी मैं बताऊं आपको। दो सिर दूध के एक सिर बनाते थे जिसमें बादाम और पिस्ता डालते थे, और उसके बाद में चाय की पत्ती, वो खास उनकी पत्ती थी, और वो चाय लेके आते। वो अगर आप एक मिनट रखेंगे तो मलाई इतनी जम जाती। तो हम क्या करते थे, क्योंकि हमको खुश करना है रफी साहब को, तो खुश करने के लिए हम उनको बोलेंगे थोड़ी चाय मिल जाएगी। तो वो कैसा करते थे ना, जैसे हम बोलते ना कि छोटा बच्चा अगर है तो अगर मस्ती कर रहा है कुछ, अरे भाई उसको कुछ चॉकलेट देना, चॉकलेट, तो कैसे बोलने का स्टाइल होता है ना। तो उनका होता है जहीर था उनका साला, अरे जहीर चाय दो ना, चाय इनको, बच्चे लोग है ना, चाय पिलाओ। तो बोलने का एक ढंग होता था, और चाय पीने के बाद फिर हमको बोलना चाहिए वाह वाह मजा आ गई। तो देखिए ऐसी ऐसी चीजें होती है। फिर उनको एक शौक था सिटी बजाने का,
2: अच्छा
0: विसल। उनको बोलेंगे भाई गाना है एंड में आपको विसल बजाना है, तो पूरा गाना वेट करते हो, गाना खत्म हो और मैं जाके विसल बजाऊ। दीवाना ओ रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैन अभी अभी के अभी ये सब चीजें होती ना, ये उनमें बहुत थी। और उसके बाद एंड में वो जो वो था ना उसमें पीस था डा, ये हमने यूज किया था टोटा। तो उसमें आप देखिए डा डा डा दी धक धीन, तो उसमें उन्होंने विसल बजाई है।

0: मेरी उनसे पहली मुलाकात 1947 में दिल्ली में हुई, जब भारत आजाद हुआ।
1: संगीतकार रवि विविध भारती के संग्रहालय से।
0: भारत सरकार ने एक प्रोग्राम रखा था दिल्ली में, जश्न जमहूरियत, आजादी का जश्न मनाया, और उसमें दो सिंगर्स मुकेश साहब और रफी साहब को बॉम्बे से बुलाया गाने के लिए।

0: वतन आजाद।
1: मुझे पता लगा मैं रफी साहब को बड़ा चाहने वाला था शुरू से, क्योंकि जब मैं गाने सुनता था उनके, सुनो सुनो ये दुनिया वालों, बापू की उम्र कहानी, या और बहुत से गाने उन्होंने गाए फिल्मों में, तो मैं बड़ा उनका फैन था। तो मैंने कहा मैं रफ़ी साहब को ज़रूर मिलूँगा। तो मैंने पता लगाया कि वो फतेहपुरी दिल्ली में कॉरोनेशन होटल में ठहरे हैं। मैं उनसे मिलने गया, बात की, मैंने उनसे, मेरे दोस्तों से कहलवाया मैंने कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि पहले असिस्टेंट बनना पड़ेगा, नोटेशन सीखनी पड़ेगी, ये वो सब सारी बातें बताई। खैर हम चले आए वहाँ से उनसे मिलकर, उनके भाई भी थे साथ में। इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे गाने का शौक़ था, मैं 1950 में बॉम्बे आया। इससे पहले मैं दिल्ली में पोस्ट एंड टेलीग्राफ में एज ए इलेक्ट्रिशियन काम करता था। तो वहाँ से बॉम्बे आया, बॉम्बे आकर बड़ा स्ट्रगल का टाइम गुजरा, 2-3 साल 4 साल। मुझे फिल्म वचन में पहला चांस मिला, उसमें एक गाना था एक पैसा दे दे बाबू, तो मैंने रफ़ी साहब से वो गाना गवाया।

0: सर डायरेक्टर डायरेक्टर मिस्टर राम महेश्वरी, वो एक दिन आए, साहिर साहब बैठे थे यहाँ साथ साथ में, साहिर साहब को सिचुएशन बता रहे थे कि राजकुमार जी फिल्म में मीना कुमारी को पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कुछ शायरी कहते हैं, तो कोई दो शेर आप लिख दीजिए, साहिर साहब का बोल दो शेर लिख दीजिए कि वो तरन्नुम में कहें। साहिर साहब लिख कर ले आए, चूल्हे नाजुक होठों को कुछ और नहीं तो जाम है। मैंने भी अब जब उन्होंने कहा था तरन्नुम की बात करी तो मैंने चूल्हे ने दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है जाम है ये, इस टाइप की टून बना दी। लेकिन जब मैं धुन बना रहा था तो मुझे एक धुन और याद आई, मेरे दिमाग में आई कि इसकी तो बहुत अच्छी धुन बन सकती है। साहिर साहब इसको हम तरन्नुम में क्यों डाल रहे हैं इसको, हम अगर इसका गाना बनाए तो अच्छा है ना, ये हम शेर व शायरी के हिसाब से तरन्नुम में दो शेर कह दिए, रिकॉर्ड भी बनेगा फिर उसका। तो मैंने उनको धुन सुनाई साहिर साहब को, बोले बड़ी अच्छी धुन है, बोले अच्छा आने दीजिए डायरेक्टर को, हम बोलते हैं कि गाना रखो उसके शेर की बजाय। राम महेश्वरी साहब आए, उनको सुनाया, बोले नहीं नहीं वो राजकुमार जी के मुँह पर अच्छा नहीं लगेगा गाना, कभी किसी ने दिया नहीं उनको गाना। मैंने कहा देखिए गाना अगर अच्छा है तो कोई भी गाए उसको अच्छा लगेगा। तो बड़े बेदिली से कहने लगे अच्छा ऐसा करे फिर दो शेर से ज़्यादा ना रखिए। साहिर साहब बोले ठीक है, दो शेर लिख कर ले आए। जिस दिन गाना रिकॉर्डिंग हो रहा था, सुनने वाले डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर के और आदमी सब सब सुन रहे थे हर शेर पर, वाह वाह वाह वाह क्या बात, रफी साहब क्या गा रहे थे। गाना ख़त्म हो गया दो शेर के बाद, डिस्ट्रीब्यूटर ने शिकायत की राम महेश्वरी साहब को, क्या महेश्वरी साहब ये क्या इतना अच्छा गाना दो शेर। अब महेश्वरी साहब परेशान हुए तो बार बाहर जाकर उन्हें साहिर साहब को फ़ोन लगा रहे थे कि तीसरा शेर भी दे दो कोई है तो। लेकिन साहिर साहब नहीं मिले और गाने में दो शेर रह गए।
1: छू लेने दो नाजुक।

मोहम्मद रफी की खासियत थी अलग अलग अभिनेताओं के हिसाब से गाने में अदायगी को स्वर देना। इसीलिए अभिनेताओं की पीढ़ियां बदलती रहीं और उनके मुताबिक रफी की अदायगी बदलती रही। आइए अभिनेता दर अभिनेता मोहम्मद रफी की आवाज के इस सफर पर एक नजर डालें। दिलीप कुमार।

0: अभिनेता दर अभिनेता मोहम्मद रफी की आवाज की अदायगी के सफर पर निकले हैं और ये गुरुदत्त की आवाज।
1: हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो।
0: और जॉनी वॉकर के लिए तो मोहम्मद रफी ने बहुत बेजोड़ अंदाज अपनाया।

0: कर दूंगा पर्दा, पर्दा ना शीशों पे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम।
1: कुछ ऐसे गाने आए जिनमें किशोर कुमार पर्दे पर नजर आए।

0: लेकिन प्लेबैक किया मोहम्मद रफी ने ऐसे ही एक गाने की कहानी, संगीतकार ओपी नैयर की जबानी।
1: भाई इसलिए किया कि वो क्लासिकल मूड का गाना था, मन मोरा भावरा, तो वो बड़ा सटपटाया उसमें। तो अपने भाई के पास गए, को भाई प्रोड्यूसर थे शोक कुमार साहब, तो बड़े इंसाफ पसंद आदमी थे। कहने लगे कि भाई ये म्यूजिक डायरेक्टर की बात है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता, तुम नैयर साहब से बात करो। हमने बोला ये तो सिर्फ मोहम्मद रफी गाएगा, दूसरा गाएगा नहीं। गाया फिर मोहम्मद रफी साहब ने गाया।

0: एक फिल्म आई थी गंगा मैया पियरी चढ़ई, वो भोजपुरी की पहली फिल्म थी, उसमें एक गाना था सोनवा का पिंजरा में।
1: संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद के आनंद।
0: वो गाना मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। तो इस गाने में खास बात यह है कि रफी साहब हिंदी और उर्दू के अलावा पंजाबी में बोलते थे। ये गाना अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि कोई ठेठ भोजपुरी जानने वाला आदमी है उसने गाना गाया। हर वर्ड का फील, प्रोनाउंसिएशन, जैसे इस गाने में एक भैले शब्द है, सोनवा का पिंजरा बंद, और जैसे बंद है, बंद भैले हाय राम, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई एकदम भोजपुरी जानने वाला आदमी है उसने इस गाने को गाया हुआ।

0: दुनिया का।
1: बचपन में दिल बहलाने के लिए ही तो गाता था, गुनगुनाता था। उस वक्त तो कभी सोचा भी न था कि मैं फिल्मों में आऊंगा।
2: जाने माने गायक शब्बीर कुमार।
1: मैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज के नाम से अपने शहर बड़ौदा गुजरात में काफी मशहूर हुआ। मुझे स्टेज पर बहुत से प्रोग्राम करने का मौका मिला। उस खुदादाद आवाज का मेरा मतलब है रफी साहब का, मैं शुरू से दीवाना रहा हूँ, शहदाई रहा हूँ। जब भी उनका कोई गीत सुनकर स्कूल या दोस्त यारों की महफिल में गाता गुनगुनाता तो सभी सुनने वाले मुझे रफ़ी साहब की आवाज़ का बदल कहते। आज भी आवाम मुझ में रफ़ी साहब को पाना चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि रफ़ी साहब जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है और मुझ जैसे कई शब्बीर मिलकर भी एक रफ़ी नहीं बना सकते।

0: मोहम्मद रफी की याद में ये था विशेष फीचर तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। शोध आलेख और संपादन यूनुस खान, स्वर यूनुस खान और ममता सिंह, प्रस्तुति शकील बख्शी।
1: आज के फनकार।

समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था।

0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं की हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं। आज सदन की कार्रवाई 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा है कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री जैन ने कहा कि आकाशवाणी ने एक विश्वसनीय सार्वजनिक प्रसारक के रूप में पहचान बनाई है। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अमर योद्धा उधम सिंह को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: आज शिलोंग में 135वें डूरंड कप के ग्रुप ई के मुकाबलों की शुरुआत होगी। इस ग्रुप में मेघालय के 3 क्लब शिलोंग लाजोंग फुटबॉल क्लब, नोंगसे स्पोर्ट्स सोशल एंड कल्चरल क्लब और लैंगसनिंग फुटबॉल क्लब खेल रहे हैं। इनके साथ ही मुंबई फुटबॉल क्लब भी ग्रुप ई का हिस्सा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा आज दोपहर होने वाले उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से हथियारों और सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी आज शिलोंग के पोलो ग्राउंड में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक लोगों के लिए खुली रहेंगी। अनुमिता दास, आकाशवाणी न्यूज, शिलांग।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद।
5: समाचारों से पहले हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूर्वाह्न के 10:05 हुए हैं। सुनते हैं

0: साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, संकलन वाचन रजनीश कुमार श्रीवास्तव का और प्रस्तुत करता है संतोष कुमार।
1: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रजनीश श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम सबसे पहले सुनेंगे सप्ताह भर की खेल गतिविधियों से जुड़ी खबरें और उसके बाद सुनेंगे एक गाना और फिर हम आपको लिए चलेंगे रोहतास के जिला खेल पदाधिकारी के पास। तो आइए शुरू करते हैं सप्ताह भर की खेल गतिविधियों की सुर्खियों से। राष्ट्रमंडल खेल, साक्षी चौधरी, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच, अंकुश यादव और नरेंद्र ने क्वार्टर फाइनल में जीत के साथ पक्के किए पदक। पदक पर मुक्केबाजों के दमदार पंच। समापन समारोह में दिखेगी भारत की जीवन संस्कृति की झलक। गुरु पूर्णिमा पर सचिन ने अपने गुरु आचरेकर को याद किया। शुभमन वनडे रैंकिंग में नंबर वन। ताइपे ओपन में प्रणय और उन्नति की आसान जीत और विश्व स्क्वैश में जीती भारतीय टीम। अब खबरें विस्तार से। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह में दिखेगी भारत की जीवन संस्कृति की झलक। भारत की जीवन संस्कृति और राष्ट्रमंडल परिवार के साथ उनके साझा मूल्यों की झलक 2 अगस्त को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह के दौरान हैंडओवर खंड में नजर आएगी, जो 2030 में खेलों के शताब्दी संस्करण के मेजबान के तौर पर अहमदाबाद के स्वागत के अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का हिस्सा होगा। पदक तालिका पर एक नज़र डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया 35 स्वर्ण, 18 रजत, 27 कांस्य, 80 उसके कुल पदक हुए। कनाडा कुल 35 पदक, इंग्लैंड कुल 44 पदक, स्कॉटलैंड कुल 15 पदक, नाइजीरिया कुल 12 पदक, भारत कुल 12 पदक, जिसमें भारत ने 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं। विश्व स्क्वैश में जीती भारतीय टीमें। भारतीय पुरुष और महिला टीमें विश्व जूनियर स्क्वैश टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष टीम ने कुवैत और महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। 5वीं वरीयता प्राप्त भारत की पुरुष टीम को कुवैत के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वहीं महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से आसानी से शिकस्त दे दी। अब भारतीय पुरुष टीम इंग्लैंड से भिड़ेगी, जबकि महिला टीम का मुकाबला अमेरिका से होगा। ताइपे ओपन में प्रणय और उन्नति की आसान जीत। HS प्रणव और उन्नति हुड्डा ने बुधवार को ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। इनके अलावा किरण जॉर्ज और थारून मनपेल्ली ने पहले दौर में जीत दर्ज की। 7वें वरीय प्रणव ने पहले दौर में जापान के मिनोरी कोगा को 21-11, 21-14 से हराया। अब उनका सामना हांगकांग के जेसन गुनावन से होगा, जिन्होंने भारतीय मिथुन मंजुनाथ को 21-8, 21-4 से मात दी। शुभमन वनडे रैंकिंग में फिर नंबर वन। भारतीय कप्तान शुभमन गिल बुधवार को जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की रैंकिंग में फिर दुनिया के नंबर एक वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी T20 रैंकिंग में 48वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गुरु पूर्णिमा पर सचिन तेंदुलकर ने अपने गुरु आचरेकर को याद किया। भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बचपन के कोच रमाकांत आचरेकर को याद किया। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को हमेशा एक और धन्यवाद कहना बाकी लगता है, जिन्होंने उन्हें एक क्रिकेटर और इंसान के तौर पर तलाशने में अहम भूमिका निभाई। आचरेकर के जीवित रहते तेंदुलकर इस दिन हर साल उनके घर जाकर आशीर्वाद लेते थे। उन्होंने इस परंपरा को जारी रखते हुए सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज यहाँ खड़े होकर कुछ एहसास हुआ। तो दोस्तों, यह थी सप्ताह भर की खेल गतिविधियों से जुड़ी खबरें। आइए अब सुनते हैं एक गाना।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना यह गाना। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं जिला खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित के पास, और उनसे हम जानेंगे कि उनके आने के बाद यहाँ किस किस तरह के खेल के आयोजन होंगे, खेल की क्या क्या गतिविधियाँ होंगी, कैसे उसका विकास करेंगे। तो सबसे पहले सर, विजय सर, आकाशवाणी सासाराम आपका हार्दिक स्वागत करता है।
1: थैंक यू
0: सर। आप यहाँ जब आए, लोगों में उत्साह आया, लोगों ने कहा कि हाँ अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे, तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आपके आने का। जब आप आए, आते ही हलचल सी मची है, तो इस हलचल में ये ट्रेनिंग जो हो रहा है, वो ट्रेनिंग क्या है सर?
1: आप देख रहे हैं कि बिहार में खेल गतिविधि का

0: तेजी से विकास हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: हाल ही में राजगृह खेल एकेडमी, बिहार खेल यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ प्रत्येक जिला में खेल भवन सा व्यायामशाला भवन का निर्माण बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों को हमारे बिहार के जो प्रतिभावान ऊर्जावान खिलाड़ी हैं उनको मुख्य धारा में जोड़कर और उनको आधुनिक तरह से ट्रेनिंग देकर इस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी को तैयार करना बिहार गवर्नमेंट की यही मंशा है।
1: सर, एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि बच्चे खेलना चाहते हैं, खेल करते हैं, तो खेल के बल पे, उसकी डिग्री के बल पे वो कहाँ तक जा सकते हैं, कौन कौन से पद हासिल कर सकते हैं?
0: पहले एक समय था, हमारे भागपुर में कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन विपरीत किदवंतियाँ हो गई है। आज हम देख रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे सचिन सहवाग।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर।
0: तो आज इस परिवेश में हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार की खेल के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। खेल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो बच्चे राष्ट्रीय लेवल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेडल दे रहे हैं उसके लिए हमारी गवर्नमेंट मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत सीनियर डिप्टी कलेक्टर रैंक या DSP का गवर्नमेंट सर्विस दे रही है
1: जी।
0: इसके अलावा पुलिस भर्ती हो या सिपाही दोगा भर्ती परीक्षा हो, उस परीक्षा में भी बिहार के खिलाड़ियों के लिए 1% कोटा रिजर्व है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट खिलाड़ी कल्याण कोष एक होता है
1: जी।
0: अगर खेल के दरमियान किसी खिलाड़ी को चोटग्रस्त हो जाता है, खिलाड़ी को कोई चोट लग जाती है, तो उस परिस्थिति में हमारी गवर्नमेंट खिलाड़ी कल्याण कोष से राशि प्रोवाइड करके उसको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। इसके अलावा जो हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय लेवल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हैं या अच्छे खिलाड़ी हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट खेल उपकरण प्रोवाइड करती है, ताकि गरीब खिलाड़ियों को खेल ऑपरेटर्स के लिए किसी तरह का भटकना ना पड़े। यानी हमारी गवर्नमेंट हर तरह से सक्षम है। आप देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 25-26 में मशाल खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। मशाल खेल प्रतियोगिता के अंदर जो हमारे गरीब बच्चे थे, जो सिलेक्टेड बच्चे थे, प्रखंड से ही बच्चों को राशि प्रोवाइड की जा रही थी। प्रखंड के बाद हमारे बच्चे जिला में आए, जिला के बाद स्टेट लेवल पे गए। हर लेवल पे बच्चों के लिए पुरस्कार राशि प्रावधान किया, नगद प्रावधान था। उसके तहत अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट 3 स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रदान की है। एक प्रेरणा है, प्रेरणा के तहत बिहार के जो हमारे सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनमें 3 लाख रुपया गवर्नमेंट प्रदान करती है। और एक है सक्षम, सक्षम के तहत हमारे जो सिलेक्टेड बच्चे बालक हो या बालिका हो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट 5 लाख रुपया का छात्रवृत्ति प्रदान करती है। और सबसे बेस्ट अगर पॉलिसी देखा जाए स्पोर्ट्स का, तो उत्कर्ष एक पॉलिसी है।
1: अच्छा।
0: उसके तहत 25 बच्चों का पूरे बिहार से चयन होगा और हमारी गवर्नमेंट उसमें 20 लाख रुपया छात्रवृत्ति के रूप में खिलाड़ियों को प्रदान करती है।
1: सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जिला खेल पदाधिकारी के पद पर हैं, तो क्या बच्चे खेल की डिग्री लेकर के भी और किस तरह की डिग्री लेकर के यहाँ तक पहुँच सकते हैं?
0: जैसे आप देख सकते हैं कि शिक्षा जगत में BEd का डिग्री है, DLED का डिग्री है, MA का डिग्री है, तो खेल के क्षेत्र में भी हमारी गवर्नमेंट अभी हाल में राजगीर में बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली है। उसके तहत हमारे बिहार के बच्चे या पूरे देश के बच्चे BPed के डिग्री ले रहे हैं, MPed के भी डिग्री हमारी गवर्नमेंट प्रदान कर रही है। और इसके साथ साथ आप NSNIS का नाम सुने होंगे, जिसको हम कोच के नाम से भी जानते हैं, वो डिग्री भी हमारी बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रदान कर रही है। उससे जो बच्चे हमारे ट्रेनिंग करके निकलेंगे सारे हाई स्कूल हो या मिडिल स्कूल में, उसमें हमारे फिजिकल इंस्ट्रक्टर के रूप में हमारे बच्चे बहाल होंगे। इसके अलावा हर एक जिला में जिला खेल पदाधिकारी का जो आने वाले निकट भविष्य में जो वैकेंसी आएगी, वही बच्चे BPed वाले बच्चे, NIS वाले बच्चे, वहाँ भी हमारे बच्चे जाएंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हर एक के जिलों में एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना संचालित की जा रही है।
1: जी, ये बहुत बिल्कुल यही मैं कोई प्रश्न आपसे पूछने भी वाला था।

0: और हमारे यहाँ तो बहुत सौभाग्य की बात है कि सासाराम में भी एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र है।
1: तो एकलव्य केंद्र फजलगंज में दो सेंटर यहाँ गवर्नमेंट संचालित कर रही है, एक है बास्केटबॉल बालक जिसमें स्वीकृत पद 30 बच्चों का है, पूरे बिहार से हमारे सिलेक्टेड बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, और दूसरा है एथलेटिक्स, ये भी सेंटर मेरा फजलगंज स्टेडियम में संचालित की जा रही है, इसमें भी पूरे बिहार से हमारे 30 बच्चों का सिलेक्शन होके विशेष रूप से हमारे NIS कोचेज जोनों हमारे जो NIS कोच हैं बहुत ही अच्छे कोच हैं उनके माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के तहत आधुनिक ढंग का जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो, और साथ ही साथ जो उनका भोजन डाइट है गवर्नमेंट डाइट के मुताबिक अच्छी डाइट दे रहे ताकि बच्चों को खान पान या ट्रेनिंग में किसी तरह का असुविधा ना हो, इस पर गवर्नमेंट पूरी ध्यान दे रही है।
0: सर यहाँ खेल प्रेमियों में बहुत ही उत्साह है आपके आने पर, तो आगे भविष्य में किस किस तरह की संभावनाएं हैं, इसमें कहाँ तक विकास की योजना आपने बना रखी है?
1: आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का सर्कुलर है या गवर्नमेंट की सोच है कि ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभा को निभारना इसका मेन लक्ष्य है। इसी उद्देश्य से बिहार गवर्नमेंट प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान और खेल क्लब का गठन कर ली है। इसके तहत बिहार गवर्नमेंट प्रत्येक खेल क्लब में कुछ राशि या खेल उपकरण प्रोवाइड करेगी ताकि पंचायत स्तर पर जो हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं वो खेल ऑपरेटर्स के माध्यम से आगे बढ़ें। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस जिला में प्रतिभा की कमी नहीं है, सिर्फ बच्चों को निखारना, अगर हम बच्चों को निखार लेंगे तो हमारे इस ज़िले के बच्चे स्टेट का नेशनल लेवल पर भी हमारे बच्चे मेडल देंगे। इसी पर्पस लेके मैंने प्रत्येक जिलों में प्रत्येक ब्लॉक में मैंने शारीरिक शिक्षा शिक्षक तथा शारीरिक शिक्षा अनुदेशक को भी मैंने 2 दिवसीय प्रखंडवार ट्रेनिंग दिया है, और निकट भविष्य में अन्य जो प्रखंड है उसमें भी मैं ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाया हूँ।
0: सर इस ट्रेनिंग में विशेष बातें क्या हैं जो उनको जानना जरूरी है या जो बताया जा रहा है?
1: इस ट्रेनिंग का मेन लक्ष्य यही है कि जो हमारे शारीरिक शिक्षक हैं जो नया नया रूल्स का चेंजिंग किया गया है उसको रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से उसको बताना, और साथ ही साथ फंडामेंटल स्किल बता के विद्यालय के बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना इस सेमिनार का मेन उद्देश्य है, ताकि हमारे ज़िले के बच्चे स्टेट और नेशनल लेवल पे मेडल दे सके।
0: जी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिला रोहतास में तिलोथू का एक बच्चा पीयूष कुमार वो हांगकांग गया था और उसमें एथलीट्स में उसने हासिल किया और उसको SI का पद भी मिला, क्या कहना है इसके बारे में?
1: एक बहुत बड़ा इस ज़िले के लिए धरोहर माना जाएगा उस बच्चों के लिए, पीयूष राज के लिए, कि जो जो इस जिला का खासकर कहा जाए ये भारतवर्ष के गौरव की बात है कि पीयूष राज जैसा सपूत इस जिला में हो, ताकि हर एक वित्तीय वर्ष में हमारे इस ज़िले के बच्चे होनहार बच्चे इस राज के लिए खासकर इस ज़िले के लिए मेडल दे, ताकि एक ज़िला गौरवान्वित अपने आप को महसूस करे खेल के क्षेत्र में।
0: और सर हाँ अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी हैं, आकाशदीप हमारे भारतीय क्रिकेट में शामिल है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, उनको DSP का पद मिला, उसके बाद ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट के एक हमारे फाइटर थे वो भी इंटरनेशनल लेवल पे खेले, तो यहाँ से फाइटर है उनके बारे में क्या कहना है आपका?
1: जो यहाँ से जो कोनहूर निकला गया है, जो बच्चे हमारे से निकले हैं हर एक साल निकल भी रहे हैं, एक बहुत बड़ा इस जिला की उपलब्धि होगा कि जो हमारे यहाँ से जो बच्चे दोनों बच्चे या तीन बच्चे निकले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस जिला के जो हमारे अन्य जो बच्चे हैं इनसे हम लोग आपस में सबक लें कि आने वाले निकट भविष्य के लिए ये पीयूष राज या जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट के होनहार जो DSP रैंक मिला है,
0: सब एक श्यामानंद फाइटर
1: श्यामानंद जी भी हैं, इन लोग से हम लोग का सबक लेके आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा।
0: सर आगे खेल होने वाला ऐसा सुना गया है, क्या क्या संभावना, किस किस तरह के खेल स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने वाले हैं?
1: प्रत्येक वित्तीय वर्ष में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी विद्यालय गेम के नाम से हम जानते हैं, प्रत्येक वर्ष हमारी खेल विभाग आयोजित करती है, ये प्रतियोगिता अगस्त के लास्ट में होने की प्रबल संभावना है। इसके तहत 3 आयु वर्ग है, U14, U17 और U19, और कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक के बच्चे हमारे बालक बालिका बच्चे भाग लेते हैं। इस गेम में करीब 54 विधा है, लेकिन जिस जिला में जो गेम पॉपुलर

0: के रूप में है, उसके तहत हम लोग गेम का आयोजन करते हैं, जिसके तहत एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल आदि गेमों का जिला स्तर पर सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन करके बच्चे हमारे स्टेट लेवल पर जाएंगे। स्टेट से जो हमारे बच्चे सिलेक्टेड होंगे वो बच्चे नेशनल लेवल पर जाएंगे, और जो अगर नेशनल लेवल पे जो हमारे बच्चे सिलेक्टेड हो जाएंगे यानी मेडल के दौर में आएंगे, तो हमारी गवर्नमेंट उसके लिए मेडल और नौकरी पाओ के तहत भी सर्विस दे रही है। या 29 अगस्त को जो ध्यानचंद के उपलक्ष्य में जो उत्सव हम मनाएंगे उसमें हमारी गवर्नमेंट राशि भी प्रदान करती
1: है। सर, आप एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, समय कम है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है खेल की गतिविधियों को जान करके। यहाँ जो खेल होते हैं इसके बाद बच्चे आगे जाते हैं, फिर उसके बाद बच्चे आगे जाते हैं, और निश्चित तौर पर इसमें भविष्य है और अभी तो देखा जा रहा है। तो सर, आप हमारे अभिभावक जो बच्चे खेलना चाहते हैं या जो खेल रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, उन खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो प्रेरणा स्रोत बने?
0: अगर देखा जाए शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल के क्षेत्र हो, दोनों में अपार संभावनाएं हैं। अगर खेल के क्षेत्र में आए तो आप देख सकते हैं कि खेल एक ऐसा माध्यम है, इसके तहत आप फिजिकल फिटनेस भी मेरा ठीक रहेगा और साथ से साथ नौकरी की भी प्रबल संभावना होती है। अगर हमारे क्षेत्र में बच्चे आएंगे, खेल के क्षेत्र में अगर बच्चे आएंगे तो मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत जाएंगे बच्चे। तो इसमें किसी तरह का हम प्रारंभिक परीक्षा या मेंस इंटरव्यू कोई हम परीक्षा नहीं लेते हैं, सीधे हमारे बच्चे DSP रैंक, सीनियर डिप्टी कलेक्टर रैंक, या हमारे बच्चे दरोगा या सिपाही भर्ती या अन्य फोर्थ ग्रेड में भी हमारे बच्चे जा रहे हैं। लेकिन मैं बच्चों को खासकर ये बताऊं कि इसमें लगन होना चाहिए, उसकी सोच होना चाहिए, नियमित अगर अभ्यास हो तो बच्चों निश्चित ही खेल के क्षेत्र में हमारे बच्चे उड़ान भरेंगे।
1: अभिभावकों को एक संदेश दे दीजिए।
0: मैं खासकर उस बच्चों के अभिभावक से कहना चाहता हूँ कि बच्चों की सोच को आप समझें कि बच्चों का सोच किधर जा रहा है। अगर बच्चों का सोच अगर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जा रहा है तो बच्चों को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप उड़ान भरने दें। आप सोचें कि हमारे बच्चे IAS बन जाए, फलाना बन जाए, तो नामकुन है। बच्चों को परफॉर्मेंस को आप देखें कि बच्चा का झुकाव सीट किस साइड में है। अगर बच्चों का झुकाव स्पोर्ट्स में है तो आप बच्चों को स्पोर्ट्स में उड़ान भरने दें। गवर्नमेंट हमारी खड़ी है, चाहे ट्रेनिंग के लिए हो या उसको राशि प्रोवाइड करने के लिए। वहाँ जब बच्चे स्पोर्ट्स में उड़ान भरेंगे तो निश्चित ही बच्चे हमारे सफलता के दौर में आगे बढ़ेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी,
0: धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ संपन्न होता है हमारे यह कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा आप अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं। तो फिर देर किस बात की, उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 8211115। संकलन एवं स्वर रजनीश श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
2: अभी हमारे श्रोता साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ भोजपुरी लोकगीत भरत शर्मा व्यास के आवाज में। एल्बम है आधी आधी रतिया के, गीत पांडे नगीना पांडे का है और संगीत भरत शर्मा व्यास का।

भरत शर्मा व्यास के गए इसी भोजपुरी एल्बम लोकगीतों के साथ ही कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न होता है। अब हम सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार। सुनते हैं रितेश पांडे और प्रियंका सिंह को। इस गीत को लिखा है शशिभूषण सिंह ने और अरशद जमाल ने संगीत दिया है। एल्बम है बरसेला समनवा।

कार्यक्रम की अगली पेशकश पंकज निराला की आवाज़ में शशि भूषण सिंह ने इसे लिखा है और अरशद जमाल ने संगीत दिया है। एल्बम है हम लुटा देव जान।

कार्यक्रम रसधार की अगली और आखिरी पेशकश राजा सिन्हा और प्रिया सिन्हा की आवाज में शशि भूषण सिंह ने इसे लिखा है, अरशद जमाल ने संगीत दिया है। एल्बम है हम लुटा दे जान।

0: राजा सिन्हा और प्रिया सिन्हा के गाए इसी भोजपुरी एल्बम सांग के साथ ही कार्यक्रम रसधार अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूर्वाहन के 11 बज चुके हैं। अगला प्रसारण विविध भारती से थोड़ी देर में।
1: रंग तरंग
2: रंग तरंग कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

गले

आप सुन रहे थे ये कव्वाली लैला मजनू फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी, अजीज़, नाजा और शंकर, शंभू, अमर कुमार और साथियों की आवाज़ें थीं। शायद ध्यानवी के बोल थे। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बेगम अख्तर की आवाज़ में ये दादरा आप सुन रहे थे, और इसके पहले श्रोताओं हमने आपको लैला मजनू फिल्म की कवाली सुनवाई थी, उसमें संगीत था मदन मोहन का।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
4: क्या
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

एक पल इस एल्बम का गीत आप सुन रहे थे उषा मंगेशकर, भूपेंद्र हजारिका और भूपेंद्र हेमंती की आवाज़ों में गुलजार के बोल थे, भूपेंद्र हजारिका की तर्ज थी।

जफर, गोरखपुरी का कलाम आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में। एल्बम तस्कीन, छाया गांगुली की आवाज, पयाम सईदी के बोल।

तस्कीन एल्बम का ये गीत था छाया गांगुली की आवाज में, पयाम सईदी का कलाम था, मधुरानी की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम रंग तरंग।

आप सुन रहे थे पिया बसंती एल्बम से ये गीत उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में। संदेश शांडिल्य की तर्ज थी। संदेश शांडिल्य का लिखा ये गीत था श्रोताओं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। हंगामा के जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर डाली गई बाधा पर चिंता भी व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: लोकसभा की कार्यवाही एक स्थगन के बाद अब जारी है। इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और शारीरिक रूप से मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसा नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालचंद जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालचंद जोवा ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

इंदिवर के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे पारस मणि फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। श्रोताओं, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने सजाए हैं मोहम्मद रफी के गाए नगमे।

0: प्यार सहारा है।
1: आप सुन रहे थे वापस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: रफ़ी को आपने सुना फिल्म दोस्ती में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था श्रोता।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
6: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
5: सखी सहेली?
6: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
5: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
7: सखी सहेली।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लाल किला फिल्म में आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को, बहादुर शाह जफर के लिखी ये इबारत थी, एस एन त्रिपाठी की तर्ज थी। इंदीवर का लिखा गीत आपको सुनवाते हैं कल्याण जी आनंद जी की तर्ज, आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, फिल्म कुर्बानी।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: संगीतकार रवि के संगीत निर्देशन में इसे गाए मोहम्मद रफ़ी ने। सहल ध्यानवी की रचना आपने सुनी फिल्म काजल से।
1: ओ

रफ़ी की आवाज़ में हकीकत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कैफी आज़मी की रचना थी, मदन मोहन का संगीत था, नील कमल। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, साहिल लुधियानवी की रचना, संगीत रवि का।

0: मोहम्मद रफी के गाए फिल्म नीलकमल के इस गीत के साथ ही श्रोताओ यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। श्रोताओ, भारतीय सिनेमा के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की आज पुण्यतिथि है और सुरीला सफर कार्यक्रम को आज हमने मोहम्मद रफी की याद और आवाज से सजाया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का। आपको लॉग ऑन कर लेना है www.facebook.com/vbsmumbai और अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं इस पते पर आप भेज सकते हैं। मोहम्मद रफ़ी की जब बात आती है श्रोताओं, तो सब कुछ जैसे मोहब्बत के फसानों में ढल ही जाता है। उनके जिंदा दिल गीतों को हमने सुना ही नहीं बल्कि एक जिंदगी जी है इन गीतों के साथ। चलिए एक बार फिर हम और आप बन जाते हैं इन गीतों के हम सफ़र और अब पढ़ देते हैं वो इबारत जो आज हमने फेसबुक पर पोस्ट की है। तो ये कुछ मोहम्मद रफ़ी साहब की याद से लबरेज़ है, उनके गीतों की इसमें याद भरी है ये।

ये फिल्म थी कोहिनूर और बड़ी ही खूबसूरत अभिनेत्री का नृत्य है श्रोताओ इस गीत में। तो आप अगर उन अभिनेत्री को पहचानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। मोहम्मद रफ़ी की जो पहली फिल्म थी उस बारे में आप हमें ज़रूर लिखें कि ये कौन सी फिल्म थी जिसमें उन्होंने पहला गीत गाया था। वैसे आप सुन रहे थे कोहिनूर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये जो गीत था वो अपने आप में श्रोताओ बड़ा ही खूबसूरत राग हमीर कल्याण थाट से उत्पन्न होने वाला चंचल और गंभीर प्राकृतिक गारत से भरा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें 16 मात्राओं में ताल जो है वो बंधी हुई है, यानी त्रिताल की बात हम कर रहे हैं। और मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी के कौशल को अगर देखें तो जिस परफेक्शन के साथ उनका आलाप ताल तान और सरगम का प्रयोग उन्होंने किया है वो एक बड़ी ही उच्च कोटि की शास्त्रीय गायकी क्षमता को दर्शाता है। गाने की शुरुआत में आपने मनमोहक जो आलाप सुना वो सबको मंत्रमुग्ध कर देता है, और बीच में जो पखावज तबले के बोलों और शास्त्रीय तराने का मिश्रण इस रचना को बड़ा ही दुर्लभ बनाता है, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने पूरी शिद्दत और सटीकता के साथ निभाया है। और यही कुछ वजहें हैं कि जिससे मोहम्मद रफ़ी हम सबके दिलों में बिल्कुल सीधा उतर जाते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ भी ऐसी ही थी। जब रफ़ी साहब गाते थे तो लगता था जैसे कोई सीधे दिल से बात कर रहा हो। उनकी आवाज़ में दर्द भी था, दुआ भी, प्रेम भी और भक्ति भी। रफ़ी साहब एक गायक नहीं, एक एहसास थे, और एहसास कभी मरते नहीं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी सफ़र करते रहते हैं, बिल्कुल उनके अमर गीतों की तरह। आज रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर सादर नमन करते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने मोहम्मद रफ़ी साहब को नमन किया है और हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि मोहम्मद रफ़ी की खूबियों को शब्दों में बांधना बहुत ही मुश्किल है। हम किसी भी मूड में हो, मोहम्मद रफ़ी के गाने हमें सुकून देते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि कब आप मोहम्मद रफ़ी के गीतों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके गीत गम में भी हमारे साथी हैं और खुशी में भी। कौन से गीत आपको अच्छे लगते हैं ये आप हमें ज़रूर बताएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि उनका बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय भजन सुख के सब साथी फिल्म गोपी का इन्होंने याद किया है, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब की वो जादुई आवाज़, सांसों का सरगम जिन्हें प्रभु की अपार कृपा से भक्तिभावपूर्ण भजनों की माला पहनाई गई हो, बड़ी शिद्दत से तराशा कोहिनूर रहे रफ़ी साहब को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पैदा। आपको ये फिल्म पहचाननी है।

सूरज का ये गीत था, आपको संगीतकार बताने हैं श्रोताओं, हस्र जयपुरी कृष्णा थी, मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में राग शिवरंजनी का प्रभाव इस गीत में नज़र आता है। एक बहुत ही सुंदर संवेदनशील और रोमांटिक प्राकृतिक राग है ये श्रोताओं, जो दिल के तारों को झकझोर देता है। इस राग में अगर आप ध्यान देंगे तो सारे ग प ध स्वर लगते हैं। रफ़ी साहब ने इस राग की कोमलता और ठहरी हुई मिठास को अपनी आवाज़ में जिस तरह से उतारा वो रूह को छू लेती है। और अगर इस गीत के आरोह अवरोह के फैलाव की बात करें तो बहारों फूल बरसाओं की जो उठान सीधे मध्यम और उच्च स्वर के सहज सफर के साथ होती है, जो सुनने वालों के मन में उल्लास भर देती है। गले की लोच की बात क्या कहें कि शब्दों का उच्चारण के जो साथ साथ मींद यानी सुरीला खिंचाव और गमक का प्रयोग इस गीत में किया गया, उसे ये शास्त्रीय दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट रचना बन पड़ी है। बिना किसी अतिरिक्त आप देखेंगे कि भारीपन और बनावट के केवल भावनाओं की गहराई से इस राग को जीवंत किया है मोहम्मद रफी साहब ने। तो ये गीत आप सुन रहे थे और उनकी याद हम ताज़ा कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने गुल बलोच फिल्म की बात की है। जी हाँ, ये फिल्म थी और जो पहला रिकॉर्डेड गीत था सोनिए नी हीरिया नी, ये गीत था जो मोहम्मद रफ़ी जी ने गुनगुनाया और ये रिकॉर्ड बन पड़ा। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों के संगीत के कोहिनूर हैं मोहम्मद रफ़ी जी, जिसकी आवाज़ एक अलग अंदाज बनकर हम सभी संगीत प्रेमियों के दिल में बस गई। हम जब भी मोहम्मद रफ़ी जी का कोई दर्द भरा गीत सुनते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं, और ये उस जादुई आवाज़ का करिश्मा जो शायद ही दूसरे कोई गायकों में ऐसी काबिलियत होगी। ऐसे महान और दिग्गज गायक मोहम्मद रफ़ी जी को विनम्र नमन। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें नमन किया है। एक और श्रोता लिखती हैं कि इन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित कर

हैं, हम खुशनसीब हैं कि हम रूहानी आवाज़ के दौर में जन्म हमने लिया है, वो आवाज़ जो हर किसी को हर तरह के गानों में सुकून देती है। तो आज भी मिसाल गाने सुनने को मिलेंगे। जी हाँ, उम्मीद तो यही करते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, यूँ तो अब बहुत सफ़र किए हमने, हर राह से कुछ सिखाया है, पर विविध भारती का सुरीला सफ़र दिल के सबसे करीब आया है। तो मिलते हैं। और एक और श्रोता लिखती हैं कि ब्रज में होली खेलत नंदलाल, रफ़ी साहब ने इस गीत में गज़ब का उत्साह और उमंग भरा है। शुरुआत में पारंपरिक जोगीरा सारा रारा की गूंज और उसके बाद रफ़ी के खुले गले से निकला स्वर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर देता है। और इस गीत को पहचानिए, कौन है अदाकार।

ससुराल का ये गीत था, हंसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और ये जो गीत था श्रोताओं, राग यमन कल्याण थाट पर आधारित शास्त्रीय लोक धुनों पर पहाड़ी राग पहाड़ी का मिश्रण आप सुन सकते हैं इस गीत में। राग यमन की वैसे जो प्रकृति होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है। अगर मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करें तो जो शुरुआती ऊपर सप्तक उन्होंने लगाए, यानी सास स्वर से बेहद कोमलता और नज़ाकत के साथ की है उन्होंने शुरुआत गीत के बोल, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को में उन्होंने जिस तरह अपनी आवाज़ की मिठास, ठहराव, मुर्कियाँ ये सभी इस्तेमाल किए हैं वो हमारे दिलों में उतर जाता है। भाव और अवरोह की अगर बात करें, उतार चढ़ाव की बात करें, तो सुरीले वाद्य यंत्रों का प्रयोग इस गीत में नज़र आता है, जिसके साथ रफ़ी साहब की जो अलगाकारी है स्व संवाद करता है। ये गीत अंतरे में जब ये प्रवेश करते हैं तो जो स्वर का विस्तार और अदायगी का अंदाज़ है वो इतना सहज है कि तक

की रूप से शास्त्रीय होते हुए भी आम संगीत प्रेमियों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाता है, तो भला बताइए कि ऐसे गीतों के लिए कौन से पुरस्कार हो सकते हैं। यही है कि हम सब मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को इतना प्यार करते हैं और उनके गीत हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र कार्यक्रम में इबारत जो है स्वयं उत्तरित है, सप्त सुर साधक संगीत के स्वयं सिद्ध जिनके लिए सुर संगीत मात्र सरगम नहीं अभी तो स्वर साधना है। रूह को रूहानियत से रूबरू कराने वाले रफ़ी साहब के राग रंगों से सजी सफ़र का इंतज़ार है। जी हाँ बिल्कुल, ये सफ़र तो आपके साथ ही पूरा होगा श्रोताओं। और एक और श्रोता लिखते हैं, आज की इबारत शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी को समर्पित लग रही है। जी हाँ बिल्कुल समर्पित है। और एक और श्रोता ने लिखा है, संगीत सरगम रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि रफ़ी साहब को हम अर्पित करते हैं। गीत लाजवाब जो बचपन से सुनते आ रहे हैं इनके, एक सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, आज की इबारत में नहीं किंतु फरमाइश अवश्य है। जी हाँ, ऐसे हजारों नगमे हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब के हैं। आपको कलाकार बताने हैं।

अभिनेत्री साधना और मनोज कुमार पर फिल्माया गया अमानत फिल्म का ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोता, रवि का संगीत था, साहिर लुधियानवी की रचना थी। एक श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसी आवाज़ जो सुख के पल में मन को सुकून से भर देती है और जब दुख मन को अवसाद में ढकेलने लगे तो कहीं दूर रेडियो से आती रवि जी की आवाज़ का ये गीत मन रे तो काहे न धीर धरे बजने लगता है तो मन अनायास ही दुख को भूल कर आगे जाने की उम्मीद से सराबोर हो उठता है। रफ़ी साहब की आवाज़ ऐसी कि लगता है स्वर्ग से कुछ समय के लिए कोई देवदूत पृथ्वी पर उतरकर हम सबको सुरीले जहां में छोड़कर फिर वापस चला गया, मगर आज भी वो आवाज़ हमारी सुबह को हमारी शाम को एक अनजाने सुख से भर देती है। रफ़ी जी के लिए क्या कहें, उनके गीत हमारे लिए सरपरस्ती, उनकी आवाज़ जब रेडियो से आती है तो लगता है कोई बड़ा हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा हो। जी हाँ, ऐसा ही जो नगमा है मोहम्मद रफ़ी साहब का है। और बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब रफ़ी साहब के गीतों को हम गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, तो ऐसी यादें आप हमसे साझा कर सकते हैं कि क्या कभी आपने उनके गीतों को गुनगुनाया किसी महफिल में, किसी स्टेज शो में, या उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते थे जो ग्रामाफोन पर बजते थे उनकी जो यादें थी वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। श्रोताओं, यानी हम बात कर रहे हैं रफ़ी साहब के गीतों की कलेक्शन की, तो आप इन बातों को भी हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि महफिल सजेगी आज मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ से, कोहिनूर की मोती जैसा मधुर उस मिठास को सुनते हुए बड़े हुए और आज भी सभी की प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा उनकी आवाज़ गूंजती रहेगी, ऐसा हमारे श्रोता लिखती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि आज 46 साल गुजर जाने के बाद भी गायक रफ़ी साहब के इर्द गिर्द भी कोई हो, और इन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को फरिश्ता कहा है कि फरिश्ते कभी मरते नहीं तो अजर अमर रहते हैं। गायकी के मामले में रफ़ी साहब तो वो एवरेस्ट हैं जिस पर फतेह पाना नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसी आवाज़ जो हमारी आत्मा में रची बसी है और जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसे भला हम कैसे भूल सकते हैं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, इस गीत को उन्होंने याद किया है। इस गीत को आप सुनिए श्रोताओ, क्या ये गीत आपके दिल के करीब है, हमें जरूर बताइए। मोहम्मद रफी साहब की आवाज का एक अलग ही ये नशा है।

0: दिल में समा आजा रे आ जरा आ लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा आ लहरा के आ।
1: जय मुखर्जी और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो फिल्म से। और अगले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं और संगीतकार बताने हैं। ये गीत जो आधारित था राग मिश्र भैरवी या दादरा अंग की खुशबू से सजा हुआ ये गीत हम कह सकते हैं। वैसे रफ़ी साहब की आवाज़ जो है इसमें एक इस गीत में अनोखी तड़प और नरमी नज़र आती है और जो एक फुसफुसाहट सी रूहानी एहसास लिए जो रफ़ी साहब ने इस गीत में घोला है बड़ा ही गज़ब का है श्रोताओं। जिसमें कि जो शुरुआती मुखड़ा है वो बड़ा कमाल का है उसी की हम बात कर रहे हैं। अगर स्वरों के या उनके गले के ठहराव स्वरों के आरोह अवरोह की बात करें तो कभी दर्द ऐसा लगता है कि जैसे रोंगटे खड़े हो गए। वाद्य यंत्रों की अगर हम शैली की बात करें तो शंकर जयकिशन ने इसमें वेस्टर्न और इंडियन धुनों का बेहतरीन सम्मिश्रण किया है। लेकिन अगर गाने की बात करें तो इसमें आत्मा पूरी तरह से रफ़ी साहब के रसीले और लोचदार स्वरों पर टिकी है जो प्रेमी को बेचैन कर देती है और बहुत ही शालीनता और सुंदरता से दिल की बातों को बयान करती है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में महान मोहम्मद रफ़ी जी की पुण्यतिथि जो है उसके उसको समर्पित है। संगीत जगत का वो चमकता सितारा हैं जिसकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ सकती। आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां उनकी गायकी से प्रेरणा लेती रहेंगी। मोहम्मद रफ़ी जी केवल एक महान गायक नहीं बल्कि भावनाओं की वो अमर आवाज़ हैं जो हमारी हर धड़कन के साथ हमेशा गूंजती रहेगी। एक और श्रोता ने लिखा है कि उनकी जो जब उनकी पुण्यतिथि यानी कि जब आती है तो याद आता है कि रेडियो पर ये सुनाई दिया कि मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं रहे तो उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ा करते थे उसकी यादों को उन्होंने ताज़ा किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि भावनाओं के सच्चे शिल्पकार थे मोहम्मद रफ़ी जी। उनकी आवाज़ में प्रेम की कोमलता भक्ति की पवित्रता देशभक्ति का जोश था दर्द की गहराई थी और खुशी की खिलखिलाहट भी। वे जिस अभिनेता के लिए गाते ऐसा लगता मानो वही अभिनेता स्वयं गा रहे हों यही उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो आप ये बताइए श्रोताओं कि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ जो है आपको किस अभिनेता पर ख़ास जचती हुई नज़र आती है और किस कॉमेडियन पर भी जो गीत उनके द्वारा गाया गया फिल्माया गया वो आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कॉमेडियंस पर भी उनके बहुत सारे गीत फिल्माए गए हैं। ख़ासकर हम बात करें महमूद साहब की जॉनी वॉकर साहब की तो

अभिनेता भारत भूषण पर फिल्माया गया बैजू बावरा फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ थी, नौशाद की तर्ज शकील बदायूनी की लिखी ये रचना थी। श्रोताओ, राग मालकौंस पर आधारित जो एक बड़ा ही शांत और आध्यात्मिक प्रकृति का रति प्रधान गीत भक्ति से भरा हुआ बन पड़ा है। हरिओम का जो उच्चारण है वो मंत्रवत और कर्णप्रिय आलाप जो शुरू होता है रफ़ी साहब का, तो इसमें मन के जो भक्ति भाव होते हैं अपने आप ही जग जाते हैं। और जो सूक्ष्म कर्ण स्वर इसमें मींड का जो प्रयोग किया गया है वो अपने आप में बड़ा ही बेमिसाल आरोह अवरोह ठहराव मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का इससे नज़र आता है। शास्त्रीय जो शुद्धता के साथ भावनाओं को गीतों को किस तरह से पिरोया जाता है ये इस गीत में बिल्कुल साफ झलकता है। उन्होंने बिना किसी भारीपन के कोमल स्वरों पर अद्भुत नियंत्रण रखते हुए इस गीत को गाया है और बड़े ही जो शब्द हैं वो संस्कृत निष्ठ और भक्तिभाव वाले हैं। तो ये गीत अपने आप में एक कह सकते हैं कि बड़ा ही कोहिनूर सा नगमा बन पड़ा है। अगले गीत में आपको पहचानना है कलाकार कौन से हैं और संगीतकार कौन है।

0: सबसे हसी ए नाम है ये, छू लेने दो नाजुक हो तुमको।
1: मोहम्मद रफी साहब के कोई रिकॉर्ड्स क्या अभी आपने संभाल रखे हैं श्रोताओं, तो आप हमें बता सकते हैं। काजल फिल्म का ये गीत था, मीना कुमारी और राजकुमार पर फिल्माया गया, रवि का संगीत था। 1965 में आई ये फिल्म थी जिसमें ये गीत संगीतबद्ध किया गया रवि के द्वारा। क्लासिक रचना है ये एक, मोहम्मद रफ़ी ने अपने जादुई आवाज़ का कमाल दिखाया है इस गीत में। राग मालकौंस की हल्की मिठास और साहिर के लुधियानवी साहब के दार्शनिक शब्दों के साथ रफ़ी साहब की अगर आवाज़ को आप सुनेंगे तो नुमा गीत को रूहानी गहराई और ठुमरी जैसा ठहराव उन्होंने दिया है, जो सुनने वालों को एकदम से कह सकते हैं कि बिल्कुल चकित कर देता है। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हमारे पास आए हैं, तो आप बता सकते हैं रफ़ी साहब के गीतों के साथ आपकी क्या रूहानी यादें हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरों के जादूगर और शहनशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की याद का दिन है, उनकी गायकी के बारे में लिखना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैं सिर्फ उन्हें रूह से महसूस करते हुए आज सिर्फ ध्यान से सुनना चाहूँगा और ही मेरी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि होगी। जी हाँ, ये तो है, लेकिन कार्यक्रम में तो साथ बने रहना है, इसलिए लिखना तो है ही आपको कि आपको मोहम्मद रफ़ी साहब के कौन से गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कब आप इन्हें गुनगुनाते हैं, और क्या आजकल जो मौसम है उस मौसम में कोई ऐसा गीत बरसात का है जो रफ़ी साहब की याद में आप अक्सर गुनगुनाते हैं उनका गाया हुआ। मुझे तो उनके गाए हुए कुछ गीत याद हैं जो बारिश के मौसम के बड़े ही गजब के हैं, तो आपको भी याद हों तो आप हमें बताइए। एक श्रोता और लिखती हैं कि महसूस होता है मानो हर पंक्ति में आज की इबारत पढ़ने से कि स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी जी की अमर आवाज़ की झलक समाई हो। आ जा रे चौदहवीं का चांद क्या तो मुझे भूल पाओगे, जैसे गाने भी उनकी यादों को और गहरा कर देते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं जब वर्ष 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान वीर सैनिकों की शहादत में देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के परिजनों के लिए वर्ष 1966 में अपने साजिंदों के साथ सशरीर उपस्थित होकर पटना के माइनुल हक स्टेडियम में उनके आश्रितों के लिए धन राशि मुहैया कराने हेतु लाइव स्टेज शो किया था उन्होंने। इस लाइव शो को देखने के लिए मैं अपने परिवार के साथ गया था। वो उनका मुस्कुराता चेहरा और उनके द्वारा सुनाए गए सभी गीत एक से एक पढ़कर थे। वहां पर उपस्थित सभी श्रोताओं ने एक अच्छी खासी राशि उनकी झोली में डाल दी थी, और तो और महिलाओं ने भी अपने जो सोने की चूड़ियाँ थी, गले की चेन भी उन्हें उसमें दी थी, और उनके गीतों को हम सुनकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का दिन है। हम उन्हें विनम्र भावपूर्ण नमन करते हैं। कलाकार आपको बताने हैं विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन रहे हैं।

हम किसी से कम नहीं है। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, तारिक और काजल। किरण पर फिल्माया गया, जो नज़र आते हैं वैसे तारिक पर फिल्माया गया ये गीत था श्रोताओं। और राष्ट्रीय पुरस्कार इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को दिया गया। वैसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो फिल्म फेयर पुरस्कार हैं वो भी बहुत सारे अपने नाम किए। एक बार श्रोता लिखते हैं कि जॉनी वॉकर और महमूद साहब पर आवाज़ रफ़ी साहब की बहुत फिट बैठती है। जॉय मुखर्जी, विश्वजीत राजेंद्र कुमार और किस किस के नाम लिखूं। रफ़ी साहब की आवाज़ हमें अच्छी लगती है शमी कपूर के ऊपर और धर्मेंद्र पर, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रफ़ी साहब हर अभिनेता के हिसाब से गाते थे, मानो लगता था कि अभिनेता ही गा रहे हों। मुझे शमी कपूर जी पर फिल्माया गया उनका गीत बहुत पसंद है, लेकिन आपने ये तो लिखा नहीं कि कौन सा गीत आपको उन पर फिल्माया गया बहुत पसंद है। जी हाँ, आपका जो बहुत पसंदीदा गीत है नगमा, वो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ की अगर बात है तो हर अभिनेता पर फिट बैठती थी, ये उनके गले की विशेष खासियत थी। जी हाँ, और ये भी बात थी कि वो अभिनेता के तौर पर अपने गीत को अक्सर ढाल लिया करते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि 130 गीत एक रिकॉर्ड है जो फिल्माया गया जॉनी वॉकर पर। इन्होंने कुछ किस तरह से डिटेल लिखी है कि कॉमेडियन ने गाया तो कुछ ऐसा लिखा इन्होंने, और हमारे तमाम श्रोताओं ने यही लिखा है ज़्यादातर कि रफ़ी साहब के जो गाए हुए गीत थे वो लगभग सभी अभिनेताओं पर फिट बैठते थे। अभिनेत्री मुमताज का भी आज जन्मदिन है श्रोताओं।

शमी कपूर और मुमताज़ पर फिल्माया गया ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफ़ी साहब के। वैसे श्रोताओ, बेशुमार गीत हैं जिन्हें भूल पाना और मोहम्मद रफ़ी साहब को भुला पाना बहुत नामुमकिन है। एक और गीत आपकी नज़र करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए। अगर आपने कोई शेर लिखा हो, कोई नज़्म लिखी हो, कोई बात लिखी हो, तो आप हमसे ज़रूर बता सकते हैं।

मोहम्मद रफ़ी साहब के अमर नगमें, अमर यादें, उनकी बहुत कुछ है श्रोताओं इनकी गायकी में। संगीतकार नौशाद ने लिखा है, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरी के महल, झोपड़ी में भी गरीबों की तेरी आवाज़ है। अपनी मौसीकी पे सबको फ़ख्र होता है, मगर मेरे साथ ही आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्य स्मृति को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम था सुरीला सफ़र। आप सभी का साथ रहा श्रोताओ इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी प्रतिक्रियाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से अब लेते हैं इजाजत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 39वीं कड़ी।

आरोप है कि आत्मसमर्पण के बाद भरत तिवारी को सबसे पहले अक्षय कुमार ने गोली मारी थी। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस को दिया था। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने मंत्री पद पर बने रहने के उच्चतम न्यायालय के सवाल पर कहा कि यह मामला फिलहाल विचाराधीन है। श्री प्रकाश ने पटना में कहा कि अदालत को सभी जरूरी जवाब जल्द ही जमा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बने 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किसी संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि बिहार

से राजद का वजूद खत्म होने वाला है। श्री आलोक ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में पार्टी को जनता का भरपूर समर्थन मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रशांत किशोर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता इनकी मंशा को कामयाब नहीं होने देगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दावा किया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत निश्चित है। श्री सरावगी ने पटना में कहा कि कम मतदान के बावजूद भाजपा यहां से जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त को चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेगा। राज्य के 7 जिलों में जल्द ही 50-50 बिस्तरों वाले आयुष अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य आयुष समिति इन अस्पतालों के संचालन की तैयारी को अंतिम रूप दे रही है। बेगूसराय, सिवान, गया, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा और मोतिहारी में बनने वाले इन अस्पतालों में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति से उपचार की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सिवान, कटिहार, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 5 अगस्त तक राज्य के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। सुपौल जिले के किशनपुर अंचल के मौजहा पंचायत के वार्ड नंबर 14 स्थित पचगछिया गांव में कोसी नदी के कटाव से लोगों के सामने पलायन का खतरा मंडरा रहा है। कटाव से सरकारी नल जल योजना के तहत निर्मित पानी टंकी ध्वस्त हो गई। किशनपुर के प्रभारी अंचलाधिकारी जियाउल कमर ने बताया कि अब तक कटाव की चपेट में आकर 15 घर नदी में डूब चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाजी मुजाहरा के दौरान सख्त पुलिस कार्रवाई समेत कई मामलों पर हिजब मुखालिफ के हंगामे के सबब आज मुतासिर हुई। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने बहस में हिस्सा न लेने के लिए हिजब मुखालिफ की तनकीद की। हिजब मुखालिफ के हंगामे के सबब ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान की आइंदा नशस्त 3 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर और पटना साहिब से रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने ऐवान के बाहर कहा है कि तलबा के मुजाहरे के दौरान जिन पुलिस मुलाजमीन पर हमला हुआ उनके तई भी हमें हसास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत नौजवानों का एहतराम करती है, लेकिन अगर तहरीक में मुजरिम भी शामिल हो जाएँ तो ये सख्त सवाल खड़ा करता है। भोजपुर के भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भरत तिवारी को गोली मारने वाले एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया है। इल्ज़ाम है कि खुद सपुर्दगी के बाद भरत तिवारी को सबसे पहले अक्षय कुमार ने गोली मारी थी। पुलिस ने तकनीकी तफ्तीश और जाँच की बुनियाद पर मुलजिम को गिरफ्तार किया है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने भी इस मामले पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत पुलिस को दी थी। पंचायती राज के वजीर दीपक प्रकाश ने वजीर के ओहदे पर बने रहने के हाई कोर्ट के सवाल पर कहा कि ये मामला फिलहाल वजीर गौर है। जनाब प्रकाश ने पटना में कहा कि अदालत को सभी ज़रूरी जवाब जल्द ही जमा किया जाएगा। वाजे रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत बिहार से पूछा है कि पंचायती राज के वजीर दीपक प्रकाश असम्बली या कौंसिल के रुकन बने बगैर 6 महीने से ज़्यादा मुद्दत तक वजीर के ओहदा पर किस आइनी बुनियाद पर बने हुए हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि बिहार से राजद का वजूद खत्म होने वाला है। जनाब आलोक ने बांकीपुर असम्बली ज़िमनी इंतखाब पर पटना में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में पार्टी को आवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रशांत किशोर मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन आवाम उनके इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। बीजेपी के रियासती सदर संजय सरोगी ने दावा किया है कि बांकीपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाब में

0: पार्टी की जीत यकीनी है। जनाब सरौगी ने पटना में कहा कि कम वोटिंग के बावजूद बीजेपी यहां से फतह हासिल करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त को इंतखाब के नतीजों के बाद मुखालिफिन ईवीएम पर तंज करेंगे। रियासत के 7 अजला में जल्द ही 50-50 बिस्तरों वाले आयुष अस्पताल कायम किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत के तआवुन से महकमे सेहत के तहत रियासती आयुष कमेटी इन अस्पतालों के निज़ाम की तैयारी में आखिरी शक्ल दे रही है। बेगूसराय, सीवान, गया, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा और मोतिहारी में बनने वाले इन अस्पतालों में आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी सिस्टम से इलाज की सहूलत मिलेगी। रियासत में मानसून की सरगर्मी से बारिश की सूरत हाल बनी हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से वस्त बारिश की दर्ज की गई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सीवान, कटिहार, अररिया, मशरकी चंपारण, मगरबी चंपारण अजला में काफ़ी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। महकमा के मुताबिक 5 अगस्त तक रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में वस्त से ज़्यादा बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का भी इम्कान है। सुपौल जिला के किशनपुर अंचल की मौजहा पंचायत के वार्ड नंबर 14 में वाकई पचगछिया गांव में कोसी नदी के कटाव की वजह से लोगों के सामने नकले मकानी का खतरा मंडला रहा है। कटाव से सरकारी नल जल मंसूबा के तहत तामीर की गई पानी की टंकी तबाह हो गई है। किशनपुर के इंचार्ज जोनल ऑफिसर जियाउल कमर ने बताया कि अब तक कटाव की जद में आकर 15 मकानात नदी में गर्क हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुतासर खानदानों की मदद के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड असिस्टेंट के 500 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से अगले दिन आमंत्रित करते हैं। उम्मीदवार भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.nataionalinsurance.nic.co.in। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB सेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026

इसके आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा, अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.indianraialways.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के 150 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.bpssc.bihar.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 483.1 मीटर था, 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया।
1: मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
2: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जाँच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं।

0: यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद की आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
1: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
3: सदन की गरिमा के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
4: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई एट

0: कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्ति जनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर। आप सुन रहे थे, माफ कीजिएगा, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।

0: हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सू आयो विनायक, करो ये नसीती विने धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: या
1: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ओले, ओले, ओले, ओले, ओले, ओले। सदाबहार नगमे, और हम आपको सुनवा रहे हैं फनकार मोहम्मद रफी के गाए नगमे।

0: संगीतकार रवि का सर्वदिकिया ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म थी चौदहवीं का चांद।
1: पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो, अरे पुरवा के झोंकवा में आई

0: के पतवा सरी के डोले मनवा की ही यार में उठे तहिलो गुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ।
1: मोहम्मद रफी का गाया गोदान फिल्म का गीत आपने सुना, अनजान की रचना थी, रविशंकर की तर्ज थी।

शाद की तर्ज थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में मदर इंडिया फिल्म का गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।

0: ये रास्ते हैं प्यार के, फिल्म का गीत था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोलों को सुरों में ढाला रवि ने। श्रोताओ सदाबहार नगमे इस गीत के साथ ही अब संपन्न होता है आज के इस कार्यक्रम में। हमने आपको सुनवाए सदाबहार गायक मोहम्मद रफ़ी के गाए चुनिंदा नगमे। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है, दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम

0: डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है.
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है.
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन.
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है.
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि संवाद वो सेतु है जो लोगों के बीच की दूरियों को कम कर संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है। मधुर संवाद रिश्तों को नई ऊर्जा से भर देते हैं। आज तकनीक ने संवाद के अनेक साधन दिए हैं, जिसके जरिए हम दूर दराज रहकर भी अपनों से जुड़ सकते हैं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ सोनाली पाठक। विविध भारती के स्टूडियो में आज मैं इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। देखते हैं आज किन किन सखियों से बातें होंगी। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये बजी घंटी और ये आया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली
1: जी। हेलो सहेली
0: नमस्ते।
1: जी नमस्ते मैम।
0: किसने फोन लगाया है?
1: मैं इंदौर से जीनत परवीन बोल रही हूँ।
0: जी क्या करती हैं जीनत जी आप?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: हाउसवाइफ हूँ, और घर में कौन कौन सदस्य हैं?
1: घर में बच्चे हैं तीन, लड़के तीनों, दो पढ़ाई करते हैं, पापा के साथ जॉब करते हैं।
0: अच्छा, तो आप बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके साथ कैसे वक्त बिताती हैं आप?
1: बच्चे को पढ़ाती हूँ, घर पे भी स्टडी कराती हूँ, और ये चलते ही रहता, रेडियो सुनती रहती हूँ।
0: अरे वाह, अच्छा ये बताइए आपके शौक क्या है, आपकी हॉबीज क्या है?
1: पेपर वेपर ये पढ़ाई करती हूँ, लिखने का शौक है, लिखती रहती हूँ कुछ भी।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छा शौक है, लिखना चाहिए। कविताएं लिखती है, कहानियां लिखती है, या और कुछ लिखती है?
1: नहीं बस ऐसी कुछ भी, गाने वाने लिखती रहती हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अपना शौक एक हमें रखना चाहिए, जिसके कारण हमें
1: जी
0: जीवन में एक अलग ही आनंद की अनुभूति मिलती है।
1: जी और हेलो सहेली, सखी सहेली ये सुनती रहती हूँ, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं,
0: जी
1: बच्चों को भी समझाती हूँ, और मेरे साथ वही होता है जो उसमें आ जाता है।
0: जी जी
1: ऐसा रहता है
0: यही बात है कि हम जो सुनते हैं, जो अच्छे

0: की बातें हमें सुनाई देती है, वो हमें जीवन में अमल में लाना चाहिए।
1: जी
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मिस्टर इंडिया का सुना देते ना, कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
0: मिस्टर इंडिया फिल्म का गाना, कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
1: जी
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, सत श्री अकाल दीदी। हाँ
0: सत श्री अकाल। बताइए कौन सी सहेली ने
1: जी, हम
0: फोन
1: दीदी
0: लगाया है?
1: पंजाब से बोल रहे हैं जी। हाँ जी, लुधियाना जिले से जी।
0: अपना नाम बताइए।
1: रितु।
0: रितु जी ने लुधियाना से फोन लगाया है। जी रितु जी,
1: हाँ जी
0: बताइए क्या करती हैं आप?
1: जी मैं तो हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, और
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: बताइए कि आपके शौक क्या-क्या हैं?
1: जी शौक तो यही है जी। मैं तो ज्यादातर जी घर में यही कपड़े सिलाई करती हूँ, यही मेरा शौक है जी।
0: जी, ये तो बहुत अच्छा शौक है, सिलाई करना। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आप क्या-क्या सिलती हैं?
1: जी यही लेडीज सूट वगैरह, प्लाजो वगैरह, पैंट।
0: जी, और नए नए डिजाइन के भी सिलती हैं आप?
1: नहीं दीदी, वो मुझे नहीं आते, वैसे मैं गले के डिजाइन बना लेती हूँ
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और रेडियो कब सुनती हैं?
1: जी। रेडियो तो जी मेरा हर वक्त ही चलता रहता है, मुझे जी बहुत पसंद है। मैं सुबह ही अपना ऑन कर लेती हूँ और शाम तक आपके सारे प्रोग्राम सुनती हूँ। हेलो सहेलीज पे, हेलो फरमाइश, मन चाहे गीत।

0: जो भाइयों का आता है 4G वाला, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे।
1: जी, तो बताइए कौन
0: हाँ,
1: सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
0: मंजिल फिल्म का मुझे रिम झिम गिरे सावन।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते
0: नमस्ते। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैम। मैं रितु राजपूत बात कर रही हूँ
0: रितु राजपूत, कहाँ से फोन लगाया है?
1: मैम। ग्राम सरायमगढ़ जिला अयोध्या से बात कर रही हूँ
0: बताइए रितु जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैम। घर पर रहकर काम करते हैं।
0: घर के काम करती हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी कोई सहेली है जिससे आप दिल की बातें साझा करती हैं?
1: हाँ मैम है, एक दो लोग हैं
0: कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैम। हम साथ साथ हैं मूवी का, ये तो सच है कि भगवान, ये गाना सुनना चाहती हूँ।
0: जी, हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: किसने फोन लगाया है?
1: जी, मैं राजस्थान जयपुर से पूजा सोलंकी बात कर रही हूँ और मैंने पहली बार कॉल किया है और मेरा फोन लग गया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
0: चलो बधाई हो आपको। जी बताइए पूजा जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड मिनिएचर आर्टिस्ट है। मैं उनके साथ हैंडक्राफ्ट का काम करती हूँ घर पर ही उनके साथ में।
0: क्या बात है, यानी दोनों मिलके आप काम करते हैं।
1: जी हाँ,
0: जी, अपने शहर के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: मेरा शहर गुलाबी नगरी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत खूबसूरत है और सब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं। हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग, सिटी पैलेस, बहुत सारी जगह यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए और सब देखने के लिए आते हैं और मुझे मेरा शहर बहुत पसंद है।
0: हमें भी आपका शहर बहुत पसंद है। बताइए अभी बारिश हो रही है या रुकी हुई है बारिश?
1: नहीं, बारिश तो बहुत नाराज हो रखी है क्योंकि जब बारिश आती है तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ थोड़ी बारिश आ गई है, जब ज्यादा आती है तो सब लोग बोलते हैं नहीं बारिश अब नहीं आनी चाहिए, बहुत परेशान हो गए, सब जगह कीचड़ हो गया है, रोड टूट गई है, इसीलिए बारिश नाराज होकर अभी रुकी हुई है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि 2 या 3 दिन में वापस आना स्टार्ट हो जाए क्योंकि अभी तो मानसून आने वाला है और स्टार्ट भी होने वाला है और सावन भी लगने वाला है।
0: क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छे विचार रखे कि हमें जैसे होना उस स्थिति में, उस परिस्थिति में खुद को ढाल लेना चाहिए। जब बारिश
1: जी
0: ज़्यादा हो जाती है तो हम शिकायत करने लगते हैं और बारिश कम आती है तब भी हम शिकायत करते हैं, तो हमारी शिकायत करने की आदत जो है वो हमें दूर रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी
1: जी
0: बात आपने कही। और बताइए रेडियो कब सुनती हैं, कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है?
1: मुझे रेडियो के सारे प्रोग्राम पसंद है और मैं और मेरे हस्बैंड काम करते हुए सुबह से ही सारे प्रोग्राम सुनते हैं और खास तौर से मेरे हस्बैंड मेरी शादी होने से पहले से ही प्रोग्राम सुनते थे और उन्होंने मुझे ये आदत डाली है आपकी सखी सहेली और यादें उनकी उजालों की। और सुबह से मतलब आप ये सोच लो कि सुबह से लेके हवा महल तक और उसके बाद में छाया जी तक जितने भी प्रोग्राम आते हैं हम सारे सुनते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, मनोज कुमार और जीनत अमान का मैं ना भूलूंगा सुनना है।
0: चलिए सुनवाते हैं रोटी कपड़ा और मकान फिर।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार। किसने फोन लगाया है और कहाँ से फोन लगाया है?
1: मैं साधना गजभिये नागपुर से बोल रही हूँ मैम। जिंदगी
0: साधना जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: में कपड़े का बिजनेस करती हूँ।
0: अच्छा, यानी आप कपड़े का बिजनेस, यानी ऑनलाइन बिजनेस है या आपकी खुद की दुकान है?
1: हाँ मैडम, मैं घर से सेल करती हूँ,
0: अच्छा
1: खुद का बिजनेस है।
0: अच्छा किस तरह के आपका बिजनेस है कपड़े का?
1: कपड़े का साड़ी है, शर्ट पैंट पीस है, सब आइटम रखते हैं। मतलब
0: ये तो बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है। और ये बताइए, अपनी दिनचर्या में व्यायाम को महत्व देती है?
1: मैं सुबह व्यायाम ही करती हूँ मैडम। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक एक्सरसाइज रहती मेरी, फिर वहाँ करने 6 बजे से 8 बजे तक बाहर जाती हूँ, 2-3 किलोमीटर चलती हूँ।
0: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जीवन में महिलाओं को कितने भी व्यस्त क्यों न हो, व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब व्यायाम करते हैं तो हम तंदुरुस्त रहते हैं। और रेडियो कब सुनती हैं?
1: दिन भर तो घर ही में रहते हैं, तो सुबह 8 बजे से हमारा समाचार से विविध भारती शुरू होता है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपने रेडियो से, या यूं कह लीजिए, संगीत से दोस्ती कर ली है। जब हम संगीत से दोस्ती करते हैं तो हमारे जीवन में सुकून के पल आते हैं। तन के स्वास्थ्य के लिए आप व्यायाम करती हैं और मन के स्वास्थ्य के लिए आप संगीत सुनती हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओ मेरी जंग है वो गीत तो जाएंगे हम माँ के ऊपर।
0: जी, चलिए सुनवाते हैं मेरी जंग फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली
1: हेलो सहेली, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कश्मीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से, और मेरा गांव है नीलनाग मांगवास।
0: कश्मीर से कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: बिल्किस ने।
0: बिल्किस जी, जी बताइए
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं ना रोजनी का शॉल बनाती हूँ मैं।
0: शॉल बनाती हैं जी,
1: हाँ
0: शॉल की बुनाई करती हैं
1: हाँ
0: जी।
1: दीदी,
0: और ये शॉल जो है साल भर बुनते हैं या किसी खास मौसम में ही बुना जाता है?
1: नहीं दीदी, आज भी बनाती हूँ, सर्दी में भी बनाती
0: जी। चलिए बताइए आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हूँ दीदी। मुझे फिल्म आँखें का गाना सुनना है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: जी, मिलती है
1: हाँ दीदी,
0: जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, प्रेरणा
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: शर्मा बोल रही हूँ। मैं बैतूल जिले से, मध्य
0: जी प्रेरणा
1: प्रदेश
0: जी।
1: के।
0: जी प्रेरणा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं समाज सेवा करती हूँ
0: अच्छा
1: और बस घर के जो भी अपने रहते हैं वो।
0: जी, जो सोशल वर्क आप करती हैं उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जी, मैं सोशल वर्क बच्चों संबंधी, महिलाओं संबंधी, पर्यावरण संबंधी ये करती हूँ। हमारी एक सोसाइटी है, उसमें मैं महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लाने का काम करती हैं।
1: जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं यही।
0: जी, और जब सामने वाला हमारी बदौलत खुश होता है तो हमें अलग ही बहुत खुशी मिलती है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी, और अपने शहर के बारे में बताइए।
1: शहर तो हमारा बड़ा खूबसूरत है, हरियाली से भरपूर ट्राइबल एरिया है। ये बेसिकली आदिवासी क्षेत्र है जी।
0: जी
1: बाकी है, छोटा है लेकिन सब सुविधाएं हैं, शांति है, हर तरी लोग बहुत अच्छे हैं, सरल हैं लोग।
0: जी प्रेरणा जी, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं घर फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ।
0: जी, घर फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है।
1: मैं सुरेखा जोशी बात कर रही हूँ मुलुंड से।
0: जी बताइए सुरेखा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में।
1: मैं क्लासेस लेती हूँ गाने के, और गाने के प्रोग्राम करती हूँ।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात है, यानी संगीत से
1: हाँ
0: जुड़ी
1: हाँ
0: हुई हैं आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके विविध भारती की बहुत पुरानी श्रोता हूँ। आप सब आरजे की आवाज बहुत मीठी है, बहुत बढ़िया पेशकश रहती है सबकी।
0: जी शुक्रिया।
1: सब प्रोग्राम सुनती हूँ मैं। सुबह संगीत सरिता से शुरू होता है मेरा रेडियो, संगीत सरिता सुनती हूँ, फिर 8 बजे तक सुनती हूँ।
0: अरे वाह,
1: आज के मेहमान, सेहतनामा और बाकी गाने के सब प्रोग्राम रात को 10 बजे तक, 10:30 बजे तक चालू रहता है।
0: यानी आपने
1: बिल्कुल
0: रेडियो से दोस्ती कर ली है।
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो सुबह उठते से ही पहले रेडियो ही रहता है हाथ में, उसके बाद मैं सब करती हूँ मेरा काम। बराबर
0: बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमने रेडियो से ही संगीत सीखा है।
1: है, ये भी बात सही है मैडम, क्योंकि हम लोग इतने साल से सुन रहे हैं। मैं उज्जैन की हूँ एक्चुअली, मायका मेरा उज्जैन का है, और मेरी एक जुड़वा बहन है, तो हम दोनों सुबह उठते से ही पहले रेडियो लगाते थे, और बहुत से गाने फटाफट फटाफट लिख लेते थे। तो हम सब गाने लिख लेते थे और हम सब उसी से याद करते थे। हम दोनों ही गाते हैं, वो उसने MA किया है, मैंने BA किया है म्यूजिक में, तो हम दोनों ही प्रोग्राम करते हैं, और सब गाने विविध भारती से सुन के ही हमने याद किए हैं।
0: यानी रेडियो से जुड़ी आपकी कितनी खूबसूरत, कितनी सुनहरी यादें हैं। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं।
1: मुझे अनुपमा का गाना सुनना है।
0: चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है
1: जी, मैं स्वाति पाथे बोल रही हूँ थाने से।
0: जी। स्वाति जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: वैसे बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो इसी से रिलेटेड मेरा बिजनेस है।
0: अच्छा, यानी किस तरह का बिजनेस है?
1: मेरा ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें मैं हर तरह का, जैसे अपने देश में हर तरह का हैंडलूम है, हैंडलूम की बड़ी रिच परंपरा है हमारे पास, तो मैं ऑल हैंडलूम साड़ीज में डील करती हूँ। होम लिनन है प्लस रेडीमेड गारमेंट्स भी हैं।
0: जी, यानी ऑनलाइन है, यानी आप घर पे रहकर ही काम करती हैं।
1: हाँ जी, मैं घर पे रह के अपना घर संभाल के ही काम करती हूँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताइए स्वाति जी, कि
1: जी।
0: इसी महीने हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं, तो दोस्त का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: सोनाली जी, दोस्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं हमारी जिंदगी का। रिश्तेदार तो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, राइट? कि दोस्त जो होते हैं उनको हम चुनते हैं,
0: जी
1: जिनसे हमारी वेवलेंथ मैच होती है, जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, और जो हमारे सुख दुख को बड़ी आसानी से बिना कहे समझ जाते हैं, वही दोस्त होते हैं।
0: जी सचमुच दोस्त, जिनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्ती घनिष्ठता से जो लोग दोस्ती निभाते हैं, वो सचमुच बहुत भाग्यशाली होते हैं। जी
1: सच में, बिल्कुल सच कहा आपने।
0: जी
1: एक चीज और मैं कहना चाहूंगी सोनाली जी, कि जैसे दोस्त तो हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी होते हैं, और बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके जिंदगी में बड़े पुराने अपने स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के दोस्त होते हैं,
0: जी
1: है ना? लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो हमारे आसपास प्राणी होते हैं
0: जी
1: वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं या होते हैं।
0: जी
1: ऐसे ही मेरा भी एक बहुत प्यारा सा मित्र है, छोटा सा, मेरा बिल्ला जिसको हम सिम्बा कहते हैं। सचमुच उसने मेरी लाइफ का सुख दुख बहुत ही अच्छे तरीके से बांट लिया है।
0: जी यानी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनुष्य से ही दोस्ती हो, प्राणी मात्रों से हम दोस्ती कर सकते हैं, प्रकृति से दोस्ती कर सकते हैं, संगीत से दोस्ती कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तो आपका दिन का बिल्ला है, उसके साथ में बहुत प्यारे अंदाज में गुजरता होगा।
1: बहुत अच्छे से, मतलब जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव,
0: जी
1: वो हम इन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि क्या होता है एक्चुअली।
0: जी तो हम
1: बहुत
0: सभी
1: ही
0: को
1: प्यार,
0: ये सीख लेना चाहिए कि जब भी हम कोई खाने की चीज़ होती है ना, प्लास्टिक में भर के हम रास्ते पे फेंक देते हैं, तो ये जो हमारे प्राणी मित्र होते हैं, बेचारे भूखे होते हैं, तो प्लास्टिक के साथ में खा लेते हैं। तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि कोई भी खाना अगर दे तो आप कागज़ पर रख कर दे या फिर किसी पत्ते पर रख कर दे, पर इसे प्लास्टिक में खाना नहीं फेंकना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने।
0: जी स्वाति जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: जैसे कि हमने दोस्ती की बातें की हैं सोनाली जी, तो मैं दोस्ती का ही एक गाना सुनना चाहूंगी। फिल्म

0: नमक हराम किशोर कुमार जी का गाया हुआ गीत है, और गीत है दिए जलते हैं फूल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से यहाँ दोस्त मिलते हैं।
1: जी बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है
1: जी, मैं मृणालिनी सक्सेना बोल रही हूँ
0: जी? कहाँ से बात कर रही हैं आप
1: जी। मैं भोपाल से बात कर रही हूँ।
0: जी? मृणालिनी जी, बताइए क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा उन लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना
0: जी, छोटे बच्चों के साथ काम करके कैसा लगता है?
1: जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मतलब इस बात में खुशी मिलती है और संतुष्टि मिलती है कि वो उन लोगों को जो नहीं आता है उन लोगों को पढ़ाना और उनको ज्ञान देना, उनको बहुत शिक्षित करना, बहुत खुशी मिलती है
0: अच्छा मृणालिनी जी, आप बच्चों को ट्यूशन देती हैं, तो ये बात
1: जी।
0: बताइए आप कि रेडियो कब सुनती हैं फिर?
1: हाँ जी, मेरी ट्यूशन शाम को रहती है और मैं दोपहर में समय निकालकर और इसको जरूर सुनती, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको सुनना। मुझे बहुत सारी बातें ऐसी पता चलती हैं जिससे कि आजकल की महिलाएं हैं जिनको मैं सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये बहुत आत्मविश्वास से भरी हैं और अपना अस्तित्व बनाने के लिए बहुत बिल्कुल जुट गई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आगे बढ़ रही हैं।
0: तो चलिए रेडियो सुनते रहिए और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, मैं फिल्म मासूम का तुझसे नारा

0: सखियों, आपके अनुभव, आपसे की गई बातें दिल को छू गई। आपसे मुलाकात होगी अगले मंगलवार को। हम आपको बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से, तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह से हैं, 400-2462, यानि 400-2462। दूसरा नंबर है 2867-0288, यानि 2867-0288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानि 022। चलते चलते मैं आपको बता दे, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े, हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो आज आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिस मैच, उन्हीं के स्वर में।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे।

0: कहाँ रख दिया मैंने। कितना सोचा था कि आज की पार्टी में नया वाला सलवार सूट पहनूंगी, पर इसका दुपट्टा पता नहीं कहाँ रख दिया। ज्यादा संभाल कर रखो तो भी चीजें नहीं मिलती, पर दुपट्टा कोई छोटी चीज तो है नहीं। अच्छा खासा 2.5 मीटर का दुपट्टा है। सौम्या ढूंढ ही रही थी कि आलोक, सौम्या के पति ने आवाज दी। कितना टाइम लगाती हो सौम्या, 7 बजे पहुंचना है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। आ रही हूँ आलोक, बस बस 5 मिनट। क्या करूं, कहीं टेलर के पास ही तो नहीं छूट गया। दुपट्टे का पीको करने दिया था। उफ, मैं अब जा रहा हूं। तुम्हारा हर बार का यही हाल है, कभी जो समय से तैयार हो जाओ, पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं। आलोक झुंझला पड़ा। कितनी तो प्लानिंग की थी, रात ही में सोच लिया था क्या पहनना है, अम्मा के लिए खाना बनाकर रख दिया था, दोनों बच्चों को प्रीति के यहाँ छोड़ आई थी। जब तक हम आए तब तक वे दोनों उनके बच्चों के साथ खेलेंगे खाएंगे, उनके लिए केक बिस्किट वगैरह सभी तो दे आई थी। आलोक की भी ड्रेस निकाल कर रखी थी। सब कुछ तो प्लान किया था, अब और कितना प्लान करूं। इस दुपट्टे ने सारा गड़बड़ कर दिया। सौम्या अलमारी में ऊपर के नीचे के रैक सब खंगालते हुए सोचती जा रही थी, इतना सब करने के बाद भी काम सही से नहीं हो रहा है।
1: ये कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

बात उन दिनों की है जब सौम्या का पहली बार आलोक के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बना था। नई नई शादी के बाद अपने पति के साथ फिल्म देखने जाना बहुत उत्साह से भर रहा था सौम्या को। उसने अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया था, लेकिन तैयार होने में केवल 5 मिनट की देरी हो गई थी। बस आलोक मूवी तो ले गए लेकिन एक शब्द नहीं बोला। सौम्या का इस तरह मूवी देखने का अनुभव बड़ा ही अलग था। अपने मायके में तो जब भी कोई मूवी देखती थी तो उस पर सभी कितनी चर्चा करते थे, उसके गाने गुनगुनाते थे, पूरी समीक्षा कर डालते थे। पर यहाँ तो अंदाज ही जुदा था। इस तरह पहली बार चुपचाप नाराज होकर कोई मूवी दिखाए तो कैसी लगेगी मूवी। खैर, रूठे हुए पति के संग सौम्या ने जैसे तैसे पूरी फिल्म देखी। फिर कोई चारा भी तो नहीं था।

सौम्या, तुम ना पार्टी का पूरा मूड बर्बाद कर रही हो। लोकल ट्रेन छूट गई तो कैब से जाना पड़ेगा, और इतना ट्रैफिक होता है कि शाम को पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएगा, और तुम्हारी गाड़ी है कि खिसक ही नहीं रही है। 5 मिनट में तैयार हो, नहीं तो तुम अपनी पार्टी यहीं मनाती रहना। आलोक की तलखी से सौम्या चिढ़ सी गई। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है आलोक के पास। अभी मैंने कुछ बोल दिया तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे और एक हफ्ते बात ही नहीं करेंगे। कितने भी नए साल आ जाएं, इनमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला। हे भगवान, तुमने पूरब पश्चिम की जोड़ी बनाई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी याददाश्त भी तो माशाल्लाह है, ऐसी जगह दुपट्टा रख दिया कि वक्त पर मिल ही नहीं रहा। यही सब सोचते हुए सौम्या ने गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा पहन लिया। अब क्या करे, नहीं मिल रहा है तो मिसमैच करना पड़ेगा। सौम्या गोल्डन दुपट्टे के साथ तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई और दोनों लोकल ट्रेन के लिए ऑटो से स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते भर आलोक कुछ नहीं बोला। सौम्या को भी गुस्सा आ गया था। जाओ, मत बोलो। मैं भी नहीं बोलूंगी, बहुत मना लिया।

ठाणे स्टेशन पर ट्रेन आते ही आलोक जनरल डिब्बे में चढ़ा और सौम्या लेडीज डिब्बे में। सौम्या ने चढ़ते समय देखा आलोक का मुंह अब भी फूला हुआ था। सौम्या का भी मन बुझ सा गया। कितना सोचा था नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, खूब एंजॉय करेंगे, पर ये तो 5 मिनट की देरी भी नहीं आलोक को बर्दाश्त। मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ का कितना इंतजार करते हैं, जरा भी झुंझलाते नहीं, और एक हम दोनों बिल्कुल मिस मैच। सौम्या को मन बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा है।

लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन आराम से खड़े रहने भर की जगह सौम्या को मिल गई थी। लोकल ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट, जैसे कि एक रंग बिरंगी दुनिया वहां समा गई हो। कोई महिला बैठे हुए हाथ में माला लेकर जप रही थी, तो दूसरी मोबाइल में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। कई सारी महिलाएं दफ्तर से लौटने के बाद चेहरे पर थकान लिए घर जाने की प्रतीक्षा में निढाल सी खड़ी दिख रही थी। इन सब की जिंदगी में भी क्या सब कुछ मन मुताबिक होगा? कुछ ना कुछ अभाव तो सबके जीवन में होता ही है। इनके जीवन में भी कुछ झगड़े झंझट होते ही होंगे, खासकर पति से। यही सब सौम्या सोच रही थी कि उसे लेडीज डब्बे में पीछे की ओर बैग टांगे, जीन्स टॉप स्कर्ट टॉप पहने उत्फुल्लता से बतियाती हुई कॉलेज जाने वाली लड़कियां दिखीं। वैसे तो वे सब कॉलेज से वापस आ रही थी, लेकिन उनके दमकते चेहरे इसका तनिक भी आभास नहीं दे रहे थे। हल्का मेकअप तो जरूर था उनके चेहरे पर इससे कहीं अधिक भविष्य को लेकर बुने गए सपनों की चमक इन लड़कियों के चेहरे की रौनक को आबाद कर रही थी। ये लड़कियां कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आ रही थी। इन्हें स्पष्ट पता है कि इन्हें क्या चाहिए।

सचमुच ये लड़कियां अपनी मंजिल खुद तय करती हैं, और एक मैं थी। करियर, कपड़े, बाहर जाना, सब में किसी न किसी की अनचाही सलाह, और स्वयं भी तो वो कंफ्यूज रही। शादी की उम्र पर भी नहीं पता चल रहा था कि शादी किसके साथ की जाए, इसलिए तो सब मिसमैच। एताई पुढ़े चला ना, यह आवाज सुनकर सौम्या की सोच को विराम लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कान के झुमके वाला, बांगड़ी वाला आवाज दे रहा था। कुछ महिलाएं उससे झुमके, कंगन वगैरह खरीदने लगी। सौम्या को फिर याद हो आया कि किस तरह उसने सपने संजोए थे कि उसे उसका पति झुमके लाकर पहनाएगा। शायद हिंदी फिल्मों का असर रहा हो, पर यहां तो पासा ही पलट गया। सौम्या के पतिदेव जी को फिल्में देखने का कोई खास शौक ही नहीं था, तो फिर ये झुमके वाला रोमांस तो बहुत दूर की कौड़ी थी।

0: अंतराल के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। लीजिए सुनिए मिस मैच, इस कहानी का शेष भाग।
1: सौम्या को साहित्य संगीत से प्रेम और आलोक गणित का पहाड़ा पढ़ने वाले। सौम्या ने अगर आलोक को पकड़ के कोई कविता सुना भी दी तो कहेंगे, अच्छा तो तुम बताओ कि इस कविता के लिए क्या कहूं। या कविता सुनते सुनते कहते, वो तुमने दूध वाले का बिल दे दिया। सौम्या अपना सर पकड़ के रह जाती। कविता की ऐसी रस निष्पत्ति होगी उसने कभी नहीं सोचा था। नई नई शादी के बाद पहली बार सौम्या ससुराल में आरती कर रही थी। बड़े ही भाव के साथ आरती गा रही थी कि ओम जय जगदीश का अलग ही सुर या असुर कानों में सुनाई पड़ा। ये बेसुरा संगीत आलोक के मुखार बिंद से सुनाई पड़ रहा था। ये सुनते ही सौम्या की हंसी छूट पड़ी। ऐसा सुर संगम जिंदगी में उसने पहली बार सुना था। ये सब याद करते हुए सौम्या के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और फिर आसपास लोकल ट्रेन में अन्य महिलाओं को देखते हुए स्वयं को फिर से गंभीर मुद्रा के साथ बांध लिया। उसे अपने आप में मुस्कुराता देखकर वे क्या सोचेंगी, पर मुंबई में कहाँ किसी को फुर्सत किसी के विषय में सोचने की। अच्छा भी है, इससे आप बेपरवाह रह सकते हैं, और अच्छा नहीं भी, क्योंकि कभी कभी मन को कितना भाता है जब कोई आपकी परवाह करता है। हाँ, करता था ना परवाह, बिना बोले सिर्फ अपनी आंखों से, और कभी बोला भी तो सबके बीच सौम्या की प्रशंसा करते हुए। बहुत अच्छा गाती है सौम्या, और लिखती कितना अच्छा है, और ओह कहाँ से कहाँ बात लेकर चली गई। सब पुरानी बातें जिन्हें बस याद करके मन झूम उठता है।

मोबाइल की रिंग से सौम्या वर्तमान में आ गई। देखा तो आलोक का फोन था। हेलो, सौम्या ने फोन उठाते हुए कहा। क्या सौम्या, कितनी बार कॉल किया और तुम हो कि उठा ही नहीं रही हो, लगभग चिल्लाते हुए आलोक बोले। अरे ट्रेन में इतना शोर हो रहा है, कैसे सुनाई पड़ेगा, और फिर मोबाइल पर्स में रखा है। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान बस इधर उधर रहता है, एक बार में कभी फोन उठाना ही नहीं। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ हो तो बहुत कुछ सकता है, बस आगे बढ़ने से खुद को रोक लेती हूँ, सौम्या कहना चाहती थी पर कहा नहीं। अच्छा सुनो, दादर आने ही वाला है, 3 स्टेशन के बाद ही उतरने के लिए तैयार हो जाओ। आलोक की आवाज में अब भी तलखी थी। जरा मिठास से नहीं बोल सकते हैं क्या, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना अच्छा नहीं। कबीर ने कहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पर साहित्य तो पढ़ा ही नहीं आलोक ने, तो कैसे समझ आएगी ये सब बातें। सौम्या मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी।

दादर उतरना है ना? सौम्या ने फिर आगे खड़ी महिला से पूछा। उस महिला ने हां में सिर हिलाया। सौम्या उसी लाइन में खड़ी हो गई। ऐसे भी मुंबई में कोई काम बिना लाइन के चलता ही नहीं। थोड़ा भी तलविचल हुए कि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। जब सौम्या आलोक के साथ मुंबई पहली बार आई थी तो ऐसा ही कुछ अस्त व्यस्त सा माहौल हो गया था। आलोक के हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी और सौम्या के हिसाब से ये तो कोई गलती ही नहीं। फिर अगर गलती मान रहे हैं तो वो गलती क्या थी? तो बात ये थी कि सौम्या साबुन लाना भूल गई थी। एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होने में कुछ चीज़ें भूलना तो सामान्य बात है। इतना सामान पैक करना है तो कुछ ना कुछ छूट सकता है, पर आलोक को ये सब आधारभूत गलती लगती थी। साबुन कैसे भूल सकती हो? अब भूल गई, इतना पैक करना था सब कुछ, लेकिन साबुन कैसे कोई भूल सकता है? ओफो, साबुन ही है ना, ले आएंगे यहीं से। पर तब तक आलोक का मूड बिगड़ चुका था, यानी मुंबई पहुंचते ही सौम्या की लाइन में विचलन आ गया था। सौम्या यही सोचती रहती कि जिंदगी में ये गणित और साहित्य का संगम आखिर भगवान जी ने कैसे कर दिया।

0: है बॉम्बे मेरी जान।
1: ए ताई, दादर उतराए से तुला? पीछे आती हुई आवाज से सौम्या की सोच को विराम लगा। सौम्या ने हाँ की मुद्रा में सिर हिलाया और फिर सोचते हुए मुस्कुरा दी। मंजिल तक पहुंचने के लिए लाइन में रहना जरूरी है। अब जो है जैसा है सब ठीक है। आलोक अगर पक्के गणितज्ञ तो मैं पक्की साहित्यिक, और फिर साहित्य वाले तो निश्चित रूप से अधिक समझदार होते हैं। कब कहाँ कैसे व्यवहार करना है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। और फिर व्यवहारिक जोड़ गुणा भाग भी तो उसे खूब आता है। चला न ताई, लेडीज डिब्बे में फिर से आवाज गूंज गई। दादर स्टेशन आ गया था। लेडीज डिब्बे में भी बहुत भीड़ हो गई थी। सौम्या 8-10 लेडीज के बाद उतरी। ट्रेन से उतरते ही सौम्या अपना दुपट्टा संभालते हुए अपने बाल ठीक करने लगी। आलोक दूर खड़े होकर सौम्या को देख रहे थे। सौम्या आलोक के पास पहुंची। आलोक ने गंभीर स्वर में कहा, ये कौन सा दुपट्टा डाल लिया? आलोक की बात बीच में काटते ही सौम्या बोली, वो मिसमैच किया है। मिसमैच पर अच्छा लग रहा है, अभी मैंने गौर किया। आलोक रूखे से ही बोले। और मैं कैसी लग रही हूं? सौम्या ने धीरे से पूछा। पता नहीं, आलोक का रूखा सा जवाब था पर आंखें मुस्कुरा रही थी। सौम्या ने उन मुस्कुराती आंखों को देख लिया था, उसे हंसी आ गई। हम दोनों, व्हाट अ मिसमैच। पर जो भी है शायद अच्छा ही है। इतनी बड़ी दुनिया में उसका हाथ पकड़कर साथ चलने वाले आलोक ही तो हैं। भले सुर साहित्य से उतना जुड़ाव नहीं, लेकिन उसके जीवन को पूर्णता के साथ सुरम्य बनाने वाले आलोक ही तो हैं। और फिर आलोक से जुड़ने के बाद भी न उसके अपने छूटे न उसके सपने। सौम्या का हृदय भाव से लबालब हो चुका था। वह अपना दुपट्टा संभालते हुए आलोक के साथ स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगी।

गीतों भरी कहानी। आज आप सुन रहे थे डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिसमैच। वाचन स्वर था जया आनंद का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: 19 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 33 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 5,000 मेगावाट की 33 सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का विकास किया जाएगा। इन प्रणालियों की न्यूनतम भंडारण क्षमता 2 घंटे होगी और कुल ऊर्जा भंडारण क्षमता 10,000 मेगावाट होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना की अवधि 5 वर्ष होगी।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सीमा संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। लोकसभा ने आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच ये विधेयक पारित हो गया। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में कल देर रात 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग, पुलिस और नगर निगम बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने मृतकों के परिजनों के लिए 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके के सैकड़ों विस्थापित लोगों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जे वाले क्षेत्र में किए जा रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन पीओजेके के विस्थापित परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन SOS इंटरनेशनल ने आयोजित किया था। प्रदर्शनकारियों पाकिस्तान और उसकी सेना के खिलाफ नारे लगाते हुए पीओजेके को भारत में शामिल करने की मांग कर रहे थे। SOS इंटरनेशनल के अध्यक्ष राजीव चुनी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र के लोगों का दमन और शोषण कर रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सोरंग क्षेत्र में एक कोयला खदान में मीथेन गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। शक्तिशाली विस्फोट के कारण खदान का बड़ा हिस्सा ढह गया और कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय मीडिया ने प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हवाले से बताया है कि मलबे में फंसे खनिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन स्पर्धा में पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने पर लवलीत सिंह को बधाई दी है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में प्रीति ने जाम्बिया की कैथरीन मापे को 5-0 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5:05 हो चुके हैं। आइए कार्यक्रम संबंधी जानकारी आपको दे देते हैं।

अब से थोड़ी ही देर बाद शाम 5:10 पर भक्ति संगीत में आप का कार्यक्रम आप सुनेंगे वंदन, जिसके अंतर्गत आप भक्ति गीतों का आनंद लेंगे। शाम 5:30 पर हम लेकर आएंगे सखियों का मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन। इसमें बहनों से बातें होंगी, खाली समय का सदुपयोग कैसे करें, आसपास जल जमाव रोकें और गीत संगीत भी इसमें होंगे। पाक कला में झटपट बनने वाले व्यंजन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में आज की सूत्रधार होंगी मंजू बाला। शाम 6:00 भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे। शाम 6:05 पर भोजपुरी समाचार बुलेटिन आप पटना से सुनेंगे। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम गांव घर, जिसमें चर्चा होगी परिवार में अनुशासन है जरूरी, और लोकगीत भी आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे प्रेम रंजन सिंह से। वार्ता होगी श्री मुंडेश्वरी अतीत और वर्तमान, वार्ताकार होंगे प्रसून कुमार मिश्रा। एक जानकारी में असहयोग आंदोलन दिवस 1 अगस्त 2026 पर ये जानकारी आप लेंगे, और साथ ही साथ मुंशी प्रेमचंद जयंती पर भी। इस कार्यक्रम में आज के सूत्रधार होंगे मनोज कुमार सिंह, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार।

शाम 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। शाम 7:15 पर सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:25 पर पटना से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का प्रसारण आप सुनेंगे। शाम 7:50 पर आप सुनिएगा ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। रात्रि 8:00 दिल्ली से संसद समीक्षा का प्रसारण होगा और रात्रि 8:15 पर ई मनपसंद कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे।

रात्रि 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या का प्रसारण होगा और रात्रि 9 बजे आप सुनिएगा लोकधारा में भोजपुरी लोकगीत। रात्रि 9:15 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम बंदगी। रात्रि 9:30 पर आप सुनिएगा पटना से रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण। रात्रि 10 बजे रसरंग में हिंदी एल्बम सॉन्ग प्रसारित होंगे और रात्रि 10:30 पर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे चित्रपट तराने।

रात्रि 10:55 पर अगले दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और रात्रि 11 बजे दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा। अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर और सभा का समापन हम करेंगे रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हो चुके हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम बंदगी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदन में आइए सुनते हैं भक्ति गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: और श्रोता, इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम बंधन अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाश

सिंहानी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं सखियों का मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन।

सभी श्रोता बहनों को मंजू बाला का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है बहनों आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में। बहनों, दिन भर की भाग दौड़ के बाद यही तो वो पल है ना, जब हम महिलाएं थोड़ा सा सुकून पाती हैं। सुबह सुबह घर के सारे कामकाज निपटाना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनके टिफ़िन पैक करना, पतिदेव को ऑफिस भेजना, घर के सारे काम निपटाते निपटाते कैसे दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता। यानी हमारे पास सिर्फ काम ही काम, ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी चल नहीं रही है, दौड़ रही है ना। और ऐसे में अगर दिन भर के कामों के बीच थोड़ा सा पल मिल भी जाए तो हमें लगता है कि क्या करें। तो आइए आज इसी विषय पर हम कुछ बातें करते हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह सच है बहनों कि हम महिलाएं अपने बारे में सोच नहीं पाती, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता होती है हमारा अपना घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग, यानी सबकी ज़रूरतों को पूरा करते करते बस दिन यूँ ही निकल जाता है। अपनी उसी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ पल निकाल लिए बहनों, खुद के लिए, कुछ अपने लिए, कुछ अपने लिए पल चुराइए उन्हीं लम्हों में से, क्योंकि सबके पास दिन के 24 घंटे ही हैं, हमारे पास भी हैं। तो उसी में से हमें कुछ नया सीखना है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज मोबाइल के माध्यम से हम चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग्स, कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर या नई रेसिपी जैसी कई चीज़ें आप घर बैठे सीख सकती हैं, और यही आपके आय का साधन भी बन सकता है। क्योंकि यह हुनर आपके पास आ गया तो आगे चलकर यही आपके आय का साधन भी बन सकता है। तो बहनों, अगर थोड़ा सा भी वक्त आपको मिलता है तो उसे आप सदुपयोग कीजिए। कुछ महिलाएं कहती हैं ना कि मन नहीं लगता, घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो इसके लिए आपकी हॉबी, अगर आपके पास, हर इंसान के पास एक हॉबी होती है, तो आपने अपनी हॉबी को आप निखारिए। अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालिए, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़िए, समाचार पत्र या धार्मिक ग्रंथ जो भी आपकी सोच और ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं उन्हें पढ़ने की आदत डालिए। और हाँ, इन सबके बीच अपने स्वास्थ्य को भी कभी अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य तो सबसे बड़ा धन है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालकर योग, प्राणायाम या हल्का फुल्का व्यायाम जरूर कीजिए। इससे आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेगा, जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो खाली समय में उनके साथ बैठिए, खेलिए, उनकी बातें सुनिए, उन्हें कहानी सुनाइए और उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। अपने संस्कार से, अपने घर के नैतिक मूल्यों से उन्हें जोड़िए। परिवार के साथ बिताया गया समय बहनों सबसे मूल्यवान समय होता है। हमारी जो ग्रामीण बहनें हैं वे अपने आसपास के स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकती हैं, और वहाँ से जुड़कर अचार, पापड़, अगरबत्ती, मसाले, हस्तशिल्प या अन्य

कई ऐसे घरेलू उद्योग हैं जो आप उनकी आय को बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप स्वयं सहायता समूह से जुड़िए और खाली समय में पौधा रोपण यानी बागवानी का शौक अगर आपको है तो इससे बढ़ के और कुछ बात हो ही नहीं सकती। आजकल तो किचन गार्डन का भी बड़ा चलन हो गया है। अब तो महिलाएं घर बैठे ही अपने किचन गार्डन में कुछ ना कुछ उगा ले रही हैं। तो रसोई बागवानी या और भी अपनी हॉबी वाले काम आप कर सकती हैं। इससे न केवल हमारे मन को संतोष मिलता है बहनों, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। और हाँ, इन सबके बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है मनोरंजन। इसे तो हमें कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि मनोरंजन के बिना हमारा जीवन अधूरा है। गीत संगीत सुनते रहिए अपने काम के बीच में, यह आपको हमेशा तरोताज़ा बनाए रखेगा, क्योंकि गीत संगीत हमारे जीवन को नई ऊर्जा और उमंग से भर देते हैं। तो चलिए, अब गीत संगीत की बारी आ गई तो हम सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों, सावन का महीना हो और रिमझिम बरसती फुहारें, तो मौसम का क्या कहना। ऐसे में तो बड़ा सुहावना तो लगता ही है, पर बारिश का मौसम बहनों अपने साथ हरियाली और ठंडक तो लाता है, लेकिन सावधानी नहीं बरतने पर यह खतरे का संकेत भी हो सकता है। यदि आपके घर या मोहल्ले में कहीं भी पानी जमा हो गया है, तो यही पानी कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए जल जमाव को रोकना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि जमा हुआ पानी मच्छरों के पनपने की सबसे अच्छी जगह होती है और यही मच्छर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। इसलिए हमें अपने घर और आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए कुछ आसान उपाय हमें अपनाने चाहिए, जैसे घर

की छत पर गमलों की तस्तरियों में या पुराने पड़े टायर, टूटे बर्तन और कूलर में पानी जमा हो जाता है, तो आप इन्हें फौरन साफ़ कर दें, यानी इनमें पानी जमा नहीं होने चाहिए। कूलर का पानी सप्ताह में कम से कम एक बार आप अवश्य बदलें। घर की नालियों की नियमित सफाई करें ताकि पानी जमा न रहे उसमें, वह पानी आसानी से निकल जाए, बह जाए। बारिश के बाद यदि कहीं गड्ढों में पानी भर जाए तो उसे मिट्टी से भर दें या उसकी निकासी की व्यवस्था अगर संभव है तो करें। अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि अपने घर की साफ सफाई के साथ साथ आपके आसपास का वातावरण भी साफ सुथरा होना ज़रूरी है, क्योंकि स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सभी की जिम्मेदारी है। तो बहनों, छोटी सी सावधानी हमें और हमारे परिवार को बड़ी बीमारियों से बचा सकती है, इसलिए इस बारिश के मौसम का आनंद तभी आप ले सकती हैं जब आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए अपने घर के आसपास पानी का जल जमाओ।

सुथरा होना जरूरी है, क्योंकि स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सभी की जिम्मेदारी है। तो बहनों, छोटी सी सावधानी हमें और हमारे परिवार को बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। इसलिए इस बारिश के मौसम का आनंद तभी आप ले सकती हैं जब आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए अपने घर के आसपास पानी का जल जमाव ना होने दें।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किड बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किड बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: और अब बारी है रेसिपी की, तो आज हम बात करेंगे झटपट बन जाने वाले कुछ पौष्टिक व्यंजनों की जो कम समय में तैयार हो जाते हैं और स्वादिष्ट भी हैं और पूरे परिवार को पसंद भी आएंगे। बहनों, यह सच है कि आजकल महिलाओं की दिनचर्या बहुत व्यस्त हो गई है, विशेषकर जिन घरों में महिलाएं कामकाजी हैं वहाँ तो उनके पास समय की सचमुच बहुत कमी है। ऐसे में अक्सर हम सोचते हैं कि क्या बनाया जाए जो पौष्टिक भी हो और सभी को पसंद भी आए। तो चलिए ऐसे ही कुछ रेसिपीज़ हम आज लेकर आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूजी का उपमा। सूजी का उपमा बनाने में आसान है और झटपट बन जाने वाला हेल्दी नाश्ता है और बच्चों को भी इसमें रंग बिरंगी सब्जियां डालकर आप आसानी से खिला सकती हैं। सूजी से बना यह व्यंजन हल्का, स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। इसमें सब्जियों का इस्तेमाल करके इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाया जा सकता है। यह न सिर्फ पेट भरने वाला होता है बल्कि पचाने में भी आसान होता है। तो चलिए झटपट आप सूजी उपमा के लिए सामग्री नोट कर लीजिए। सूजी, जिसे रवा भी बोलते हैं, 1 कप, पानी 2.5 से 3 कप, तेल या घी 2 बड़े चम्मच, राई यानी सरसों के दाने 1 छोटा चम्मच, चना दाल 1 बड़ा चम्मच, उड़द दाल 1 छोटा चम्मच, करी पत्ता 8-10 पत्ते, हरी मिर्च 1 या 2 बारीक कटी हुई, अदरक 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ और प्याज 1 छोटा बारीक कटा हुआ, गाजर 1 छोटा बारीक कटी हुई, मटर 2 बड़े चम्मच, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो नहीं भी डाल सकती हैं, हरा धनिया सजाने के लिए और नींबू का रस स्वाद के अनुसार, नमक स्वाद के अनुसार। और अब आइए बनाने की विधि जानते हैं। सबसे पहले सूजी को एक सूखी कढ़ाई में 5 से 6 मिनट तक धीमी आंच पर भून लीजिए। जब सूजी हल्की सुनहरी हो जाए और अच्छी खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दीजिए। ध्यान रखिए कि सूजी जलनी नहीं चाहिए, यानी भूनते समय लगातार चलाते रहिए।

और अब तड़का और सब्जियों की तैयारी करनी है। तो अब कढ़ाई में तेल या घी डालिए और गर्म हो जाने के बाद उसमें राई डालिए। जैसे ही राई चटकने लगे उसमें चना दाल और उड़द दाल डाल दीजिए। दालें जब हल्की ब्राउन होने लगें तो करी पत्ता, हरी मिर्च और अदरक डाल दीजिए। इसके बाद प्याज, जो कटा हुआ प्याज है, उसे डालकर हल्का गुलाबी होने तक भूनिए। अब इसमें गाजर, मटर या कोई और सब्जी जो भी आप डालना चाहें उसे डाल दीजिए और 2 से 3 मिनट तक पकाइए। जब सब्जी हल्की सॉफ्ट हो जाए, यानी थोड़ी सी लगे कि अब गल गई है, तब उसमें 2.5 से 3 कप जो पानी हमने रखा है उसे डाल दीजिए। अब उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और पानी को उबलने दीजिए। जैसे ही पानी उबलने लगे उसमें धीरे धीरे भुनी हुई सूजी डालिए और लगातार चलाते रहिए ताकि गांठें ना बने, जो कि बहुत जल्दी इसमें गांठ बनने लगती है। अब गैस को धीमा कर दीजिए और ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक उसको पकने दीजिए। यानी सूजी बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए। जब पानी सूजी में अच्छे से समा जाए तो उपमा खुद लगेगा कि उपमा फूला फूला फूला दिखने लगेगा। तब गैस बंद कर दीजिए। अब ऊपर से थोड़ा नींबू का रस और कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। अब लीजिए, तैयार है आपका सूजी का गर्मा गर्म उपमा। इसे नारियल की चटनी, हरी चटनी या फिर यूं ही चाय के साथ खाया जा सकता है। बच्चों को टिफ़िन देने के लिए भी अच्छा ऑप्शन है ये, क्योंकि यह जल्दी ख़राब नहीं होता। उपमा बनाने के लिए कुछ खास टिप्स हैं कि अगर आप इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहती हैं तो उसमें बारीक कटे हुए पालक या शिमला मिर्च भी डाल सकती हैं, और घी से तड़का लगाने पर इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अगर बच्चे खा रहे हों तो मिर्च कम डालिए और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, तो बच्चों को मीठा मीठा स्वाद बहुत पसंद आता है। तो यह थी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि आपको यह रेसिपी बहुत ज़रूर पसंद आएगी। और अब बात करते हैं वेजिटेबल पोहा की। यह भी एक बहुत ही अच्छा नाश्ता है। इसे भी आप शाम में या सुबह में बना सकती हैं। इसमें सबसे पहले वेजिटेबल पोहा में गाजर, मटर, शिमला मिर्च और मूंगफली मिलाकर तैयार किया गया पोहा स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषण और ऊर्जा से भी भरपूर होता है। तो बहनों, कोशिश कीजिए कि हर भोजन में हरी सब्जियां, दाल, फल और दूध से बने पदार्थ शामिल हों, क्योंकि स्वस्थ परिवार ही खुशहाल परिवार होता है। इसलिए आपके परिवार की सेहत की चाबी आपके हाथ में है। इसलिए खुद स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। और हम सभी की चाहत होती है कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारा रसोई घर जहाँ हमारा भोजन पकता है। इसलिए भोजन पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। खुद स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। अब इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी संतोष कुमार की, और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी की सुई का भी इशारा है कि आपसे विदा लेने का वक्त हो गया। तो अगले कार्यक्रम में फिर हम आएंगे इसी तरह के कुछ मज़ेदार बातों के साथ, जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सखियों का मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं अब आइए सुनते हैं भोजपुरी लोकगीत।

0: सदन में बिना कोनो चर्चा के हंगामा के बीच ई विधेयक पास हो गई ह। विपक्ष नीट मुद्दा पर पढ़ाई लिखाई करे वाला लेकिन के विरोध के प्रदर्शन के दौरान भइल कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई गो मुद्दा पर हंगामा कैलस ह, जेकरा चलते संसद के दोनों सदन के कामकाज आज प्रभावित भइल ह। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू चर्चा में भाग ना लेवे खातिर विपक्ष के आलोचना कैलन ह। हंगामा के कारण सदन के कार्रवाई दिन भर लागी स्थगित कर दिहल गइल ह। सदन के अगला कार्यवाही 3 अगस्त के सवेरे 11 बजे शुरू होई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक कहले बाड़े कि बिहार से राजद के वजूद खत्म होखे वाला बा। श्री आलोक बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधित करत कहलन ह कि चुनाव में पार्टी के जनता के भरपूर समर्थन मिलल बा। उ आरोप लगौलन ह कि तेजस्वी प्रसाद यादव आ प्रशांत किशोर एक साथ मिल के चुनाव लड़ले ह, लेकिन जनता ए लोग के मनसा के कामयाब ना होखे दी। इन्हें भाजपा के बढ़न नेता आ पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद संसद के बाहर कहले बाड़े कि लैकन के प्रदर्शन के दौरान जे पुलिसकर्मी लोग पर हमला भइल ह, उहू लोग के प्रति हमनी के संवेदना होखे के चाही। उ कहलन ह कि केंद्र सरकार सभे लोग के सम्मान करेले, लेकिन अगर आंदोलन में अपराधी भी शामिल हो जास तो ई गंभीर सवाल खड़ा करेला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी दावा कैले हं कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के जीत तय बा। श्री सरावगी पटना में कहलन ह कि कम मतदान के बावजूद भाजपा यहां से जीत रहल बिया। उ कहलन ह कि 3 अगस्त के चुनाव के नतीजा आइला के बाद विपक्ष ईवीएम पर आरोप लगाई। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामला में पुलिस बड़ कार्रवाई कैले बिया। पुलिस भरत तिवारी के गोली मारे वाला एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार के गिरफ्तार कैले बिया। आरोप बा कि सरेंडर कैला के बाद भरत तिवारी के सबसे पहले अक्षय कुमार गोली मारले रहलन। पुलिस तकनीकी अनुसंधान आ जांच के आधार पर आरोपी के गिरफ्तार कैले बिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी ई मामला पर कड़ा कार्रवाई करे के निर्देश पुलिस के देले रहलन। राज्य के 7 गो जिला में जल्दीए 50 बेड वाला आयुष अस्पताल बनावल जाई। केंद्र सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य आयुष समिति ई अस्पतालन के संचालन के तैयारी के अंतिम रूप दे दिया। बेगूसराय, सिवान, गया, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा आ मोतिहारी में बने वाला इन अस्पतालन में आयुर्वेद, होम्योपैथी आ यूनानी तरीका से इलाज के सुविधा मिली। भोजपुरी भाषा आ भोजपुरिया लोगन के हित में काम करे वाला जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया संस्था के 12वां स्थापना दिवस 2 अगस्त के गोपालगंज के भोरे में मनावल जाई। ए मौका पर भोजपुरी कवि सम्मेलन के आयोजन कैल गइल बा। राज्य में मानसून के सक्रियता से लगातार बरखा के स्थिति बनल बा। पिछला 24 घंटा के दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सा में हल्का से मध्यम बरखा दर्ज कैल बा। मौसम विभाग अगला 24 घंटा के दौरान गोपालगंज, सिवान, पूर्वी या पश्चिमी चंपारण जिला में भारी बरखा के लेके येलो अलर्ट जारी कैले बा। विभाग के मुताबिक 5 अगस्त तक ज्यादातर राज्य के ज्यादातर हिस्सा में मध्यम से भारी बरखा हो सकत बा। एकरा साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम सुने वाला सब श्रोता भाई लोगन के मनु भाई के तरफ से नमस्कार। देखें श्रोता सब है, आजकल भी रोपनी बड़ा जोर शोर से चल रहा बा। देखत है नहीं कि हर तरफ में बोरिंग से डीजल पंप से चला चला के आदमी माने थोड़ा भी वर्षा होता तो खेत की जुताई शुरू कर दिल बड़ा आ जोत के एकदम रोपनी एकदम जोर शोर से लगा दिल बड़ा। तो देखिए हमने के ये धान के कटोरा कहे जला रोहतास जिला जो एकरा में हमनी के धान के समय पर खेती ना कर लिए तो एक उत्पादन भी अच्छा ना ले पाओली। इससे हमनी के देखी सब किसान भाई लगल बन जी जोड़ जान से कि समय पर हमनी के धान के रोपनी कर लिया जाओ आ करे के भी चाहिए। श्रोता सब आई आज के कार्यक्रम के संक्षिप्त रूपरेखा देखा जाओ। पहले आज के हमनी के चर्चा के विषय रही परिवार में अनुशासन बा बहुत जरूरी। एक बाद एगो लोकगीत के आनंद लीजिए, कलाकार आज के रहा प्रेम रंजन सिंह। फिर हमनी के वार्ता एगो सुनल जी, विषय रही श्री मुंडेश्वरी अतीत और वर्तमान। आज के वार्ताकार हम प्रसून कुमार मिश्रा जी। एक जानकारी के तहत हमनी के असहयोग आंदोलन दिवस के बारे में जानल जी आ फिर मुंशी प्रेमचंद जयंती के बारे में भी जानकारी ले ली। कार्यक्रम के बीच में हमनी के कुछ संदेश भी सुनल जी आ अंत में हमनी के मौसम का पूर्वानुमान जानल जी। तो श्रोता सब है आई सबसे पहले हमनी के परिवार में अनुशासन जरूरी है का है एकरा बारे में देखी। परिवार में ना ही हर जगह अनुशासन जरूरी बा, हर क्षेत्र में अनुशासन बहुत जरूरी बा। अनु और शासन मिलके ही अनुशासन बनल बा। अनु माने पीछे या अनुसार और शासन माने नियंत्रण या निर्देश होला। जना के मतलब बा शासन या नियम के अनुसार चलल। अनुशासन के अर्थ निकाल सकत बानी हमनी के कि नियम सिद्धांत और मर्यादा के पालन कई तय कल गई बा या बनावल गई कोनो कायदा कानून के ईमानदारी से हमनी के आचरण कल ही अनुशासन बा। परिवार में अनुशासन इस जरूरी बा ताकि घर में शांति बनल रहे, सभी सदस्य एक दूसरा के सम्मान करी, बच्चन के सही विकास होखी। परिवार में अनुशासन से लाभ भी बा, आपसी सम्मान बढ़ेला, लोगन के आदर बड़ लोगन के आदर करी आ छोट लोगन के प्यार बनल रहेला अनुशासन से। बच्चा के भी सही गलत के पहचान होला, शांति और एकता के माहौल बनल रहेला, कलह कम होला, खुशनुमा माहौल रहेला। अनुशासन से हर सदस्य अपन कर्तव्य के समझलन। अनुशासन ही हमनी के जीवन बा, मनुष्य के विकास के आधार अनुशासन ही बा। घर परिवार से ही अनुशासन के शिक्षा प्रारंभ होला। लक्ष्य प्राप्ति खातिर अनुशासन आवश्यक होला। अनुशासन के मतलब ही होला नियम सिद्धांत पर चलल, चाहे गाड़ी चलावे के बात होके या बच्चन के पढ़ाई लिखाई के बात होके, सब जगह अनुशासन जरूरी बा। यदि अनुशासन में रहकर बिना नियम के गाड़ी चले लगी, बिना नियम के लिखन के पढ़ाई लिखाई हो जाए तो वो कोनो तरह के विकास ना हो पाई, गाड़ी भी कहीं भी ओकर एक्सीडेंट हो सकत बा। इससे जो नियम बनावल बा नियम के अनुसार चलावे के चाहिए। परिवार के विकास के बात होके या समाज के या राष्ट्र के विकास के बात होके हर जगह अनुशासन जरूरी बा। श्रोता से हमनी के आपन निजी जीवन में भी अनुशासन देख सकत नहीं जा। हमनी के आपन जीवन में यदि अनुशासन छोड़ दिया जा तो हमनी के भी विकास बंद हो जाए, हमनी के भी कोनो काम ना हो पाई। अब कहे के अनुशासन दिमाग कुछ और करता, मन कुछ और करता, अब पैर कुछ और करे, हाथ कुछ और करे, तो हमनी के जौन अपन शरीर के अनुशासन में जौन मन के अनुशासन में ना रखल जाए तो फिर हमनी के कोनो काम ना हो। इससे हमनी के थोड़ा माने समाज से या कोनो माने पारिवारिक मर्यादा के देखते हुए कोनो काम करनी जाए। एक तरह से अनुशासन इहे सब के नियम के

सिद्धांत के पालन कैल ही मानल जाला। एहि अनुशासन से हमनी के पूरे परिवार के विकास होला। इससे परिवार में अनुशासन बहुत जरूरी बा। श्रोता सब है, आई एगो लोकगीत के आनंद लिया जा। आज के कलाकार बने हमनी के प्रेम रंजन सिंह, बोलबा बजरा चढ़ी अले असमानवा, ताई सुनल जाओ।

0: गीत सुन के तो एकदम मन हरियर हो गई आ श्रोता सब रौरो सबके मन एकदम गदगद हो गई हुई। तो देखी गीत संगीत मन के सारा दुख दर्द तो भुलवाइए देला आ हमारा आशा बाकी रौरो सबके ऐसे ही दुख दर्द भुलाही खातिर संगीत के आनंद ले तनी जा। तो रउआ सब भी देखिए आनंद ले तनी जा, आनंद लिहल करी जा, आगे भी हमनी के गीत संगीत सुनल जाई। आई हमनी के आज मुंडेश्वरी अतीत और वर्तमान एकरा बारे में जानल जाओ जाइए। हमनी के क्षेत्र जोन बा श्रोता सब रोहतास जिला एकरा में बहुत से मंदिर आ बहुत से दर्शनीय स्थान बा जोना के बहुत पहले से हमनी के देखत आवतिया। आ एकरा में जैसे कि मंडेश्वरी भइल, ताराचंडी भइल, तुतला भवानी बा, बहुत तरह के ऐसा हमनी के दर्शनीय स्थान बा जोना के हमनी के आज भी गुप्ता धाम बा देख दर्शन करे जात जा। तो इस सब के हमनी के एक अतीत और वर्तमान भी देखल जाओ। तो आई हमनी के एकरे बारे में जानल जाओ। आज के वार्ताकार बनी प्रसून कुमार मिश्र जी, तो आई यहाँ से सुनल जाओ श्री मुंडेश्वरी अतीत और वर्तमान का बा।
1: पहाड़ियों जंगलों के मनोरम प्राकृतिक परिवेश और सोन दुर्गावती सुरवरा तथा कर्मनाशा आदि नदियों के उपजाऊ मैदानों से आच्छादित कैमूरांचल सहस्त्राब्दियों से राजनीतिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। 30,000 वर्ष पूर्व आदि मानव के निवास व समूह गठन के प्रस्तर युगीन अकाट्य प्रमाण कैमूर पहाड़ियों की 30 से अधिक गुफाओं में शैल चित्र तथा उपस्करों के रूप में वर्तमान है। आर्यों द्वारा असुर दैत्य तथा अनार्ज नामों से संबोधित मूल निवासियों की सभ्यता व साम्राज्य के प्रतीक दुर्गों नगरों के ध्वंसावशेष यहाँ कदम कदम पर बिखरे पड़े हैं। काल के निरंतर प्रहारों के बावजूद गढ़वट सिलसिला सेनवार दरौली पटना रघुबीरगढ़ आदि स्थानों पर वर्तमान अवशेष मूल निवासियों की नगरीय सभ्यता के निर्माण तथा उनके पराक्रम के मौन साक्षी हैं। यह भूमि पुराणों व दुर्गा सप्तशती में वर्णित युद्ध में दुर्गा के हाथों पराक्रमी दानवों के पराजय की भी साक्षी रही है। दुर्गों के ध्वंसावशेष चंडेश्वरी मुंडेश्वरी आदि शक्तिपीठ तथा दुर्गावती नदी का अस्तित्व स्पष्ट करते हैं कि दुर्गा के नेतृत्व में आर्यों तथा शुंभ निशुंभ चंड मुंड के नेतृत्व में दानवों के बीच निर्णायक संघर्ष की केंद्र भूमि यही है। मातृशक्ति की आराधना के जागृत सिद्धपीठ इस क्षेत्र में मातृसत्तात्मक सभ्यता की उपस्थिति का भी उद्घोष करते हैं। इनमें सर्वाधिक प्राचीन और महत्वपूर्ण है कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड के रामगढ़ गांव के पास स्थित लगभग 600 फीट ऊंची प्रवरा पहाड़ी पर विराजमान जगत जननी मुंडेश्वरी का अद्वितीय मंदिर। आइए हम चलें इस शक्तिपीठ की यात्रा पर। आज से हजारों वर्ष पूर्व दुर्गम वनाच्छादित कैमूर श्रृंखला की तलहटी में एक उच्च कोटि का सांस्कृतिक केंद्र अपनी आभा से संपूर्ण आर्यावर्त को आलोकित कर रहा था। एक ओर ज्ञान की अखंड ज्योति जल रही थी तो दूसरी ओर एक अद्वितीय समानुपातिक एवं आकर्षक शिल्प यौवन की ओर अग्रसर था। शताब्दी ही नहीं सहस्त्राब्दियों तक यह महायज्ञ अविरल चलता रहा, परंतु कालांतर में ऐसा लगता है कि यज्ञ देवता रूठ गए और यह यज्ञ पूर्णाहुति के बिना ही भंग हो गया। लेकिन आग बुझी नहीं, यज्ञ धूम जीवित रहा। आज उसी सांस्कृतिक ध्वंसावशेष को हम मुंडेश्वरी मंदिर के नाम से जानते हैं। पहाड़ी पर स्थित मंदिर पर पहुंचने के लिए बनी सर्पिल सड़क अथवा छायादार सीढ़ियों से ऊपर पहुंचने पर हमारी सांस्कृतिक विरासत की अनूठी प्रतिकृति श्री मुंडेश्वरी देवी के मनोहारी मंदिर के दर्शन होते हैं। शिखर से देखने पर दक्षिण तथा पश्चिम में लता गुल्मों से पूरित वन्य पुष्पों से अलंकृत तथा शीतल सुगंधमय वायु के झोंकों से प्रकंपित कैमूर पहाड़ियाँ अपनी दूरस्थ बाहें फैलाए देवी के चरणों में सर्वस्व समर्पण को प्रतिश्रुत दिखाई पड़ती हैं। वहीं उत्तर और पूर्व के खुले मैदानों में नहरों की पंक्तियाँ, लहलहाती फसलें, सुरभित आम्रकुंज तथा जलाशय एवं कूप दर्शनार्थियों का सारा मार्गश्रम दूर कर उन्हें

तृप्त कर देते हैं। लगता है प्रकृति ने पूरे मनोयोग से जगत जननी के लिए इस अप्रतिम परिवेश की रचना की हो। 20वीं सदी के प्रारंभ में मंदिर परिसर से प्राप्त शिलालेख, जो वर्तमान में नेशनल म्यूजियम कोलकाता में संरक्षित है, उसके अध्ययन के पश्चात विभिन्न विद्वानों ने वर्तमान अष्टकोणीय मंदिर को छठी शताब्दी का माना, किंतु वर्ष 2003 में मंदिर परिसर से प्राप्त महान श्रीलंकाई सम्राट महाराजा द्युतिगामिनी 101-77 BC जिनका काल था, उनकी मुहर तथा अन्य पुरातात्विक व साहित्यिक प्रमाणों पर गहन शोध व परिचर्चा के बाद शिलालेख का काल शक संबत का 30वां वर्ष अर्थात 108 ईस्वी निर्धारित किया गया है। शिलालेख के काल निर्धारण तथा मंदिर को देश का प्राचीनतम हिंदू मंदिर सिद्ध करने में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के प्रशासक आचार्य किशोर कुणाल और उनके इतिहासकारों का अथक श्रम स्तुत्य है। समकोणीय ब्राह्मी लिपि में अंकित 18 पंक्तियों वाले मुंडेश्वरी शिलालेख के अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ श्री नारायण यानी विष्णु देवकुल के मंदिरों का समूह था, जिसके प्रधान देवता मंडलेश्वर स्वामी थे। बाद में शैव मत की प्रधानता के काल में विनितेश्वर यानी शिव यहाँ प्रधान देवता के रूप में पूजित हुए। शाक्त मत की प्रबलता के समय मंडलेश्वर की अर्धांगिनी मंडलेश्वरी प्रमुखता से सुपूजित हुई, जो बाद में अपभ्रंश होकर मुंडेश्वरी कहलाने लगी। संभवतः अंतिम परिवर्तन मातृपूजक चेरो राजाओं के शासनकाल में हुआ। मंडलेश्वर स्वामी का मंदिर वर्तमान अष्टकोणीय मंदिर है, जिसका शिखर प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह में केंद्रीय स्थान पर मंडलेश्वर तथा अथवा विनितेश्वर का चतुर्मुख शिवलिंग विद्यमान है। मंदिर के पूर्वी गवाक्ष की दक्षिणी दीवार पर श्री मुंडेश्वरी देवी की अष्टभुजी महिषासना मूर्ति प्रतिष्ठित है। प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि चतुर्मुख शिवलिंग सूर्य की स्थिति के अनुसार रंग परिवर्तन करता है। प्रातः मध्यान एवं सूर्यास्त के समय यह भिन्न भिन्न आभाओं में दृश्यमान होता है। एक ही गर्भगृह में शिव एवं वैष्णवी देवी की उपासना अद्भुत एवं समन्वयकारी है, जो निर्माताओं के धर्म के शाश्वत स्वरूप से निकटता का परिचायक है और तत्कालीन परिस्थितियों में अनूठी है। इसी समन्वयक शक्तिपुंज के प्रकीर्णन के फलस्वरूप मुंडेश्वरी शक्तिपीठ सहस्त्राब्दियों से साधकों एवं तांत्रिकों के साथ साथ लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता रहा है। मुंडेश्वरी विग्रह की रहस्यात्मकता यहाँ संपन्न होने वाली पशु बलि के समय प्रतिदिन देखी जाती है। बलि प्रक्रिया आश्चर्यपूर्ण एवं स्तब्धकारी है। बलि पशु पर पुजारी मंत्रपूत अक्षत पुष्प छिड़कते हैं और वह निष्पंद मृत सा हो जाता है। कुछ समय बाद पुनः अक्षत छिड़कने पर पशु सचेष्ट एवं जागृत होकर डगमगाते कदमों से स्वयमेव मुख्य द्वार से बाहर चला जाता है। इस प्रकार रक्तहीन बलि प्रक्रिया पूर्ण होती है। सचमुच यहाँ जगत माता साक्षात विराजती हैं। तभी तो अपनी संतान का वध नहीं चाहती, बल्कि उसके सर्वस्व समर्पण से पुलकित होकर चिर जीवन का वरदान देती हैं। ब्रह्मांड नियंता एवं सर्जक मातृशक्ति का ऐसा वात्सल्यपूर्ण विग्रह अद्वितीय है। श्री यंत्र पर पूर्ण शास्त्रीय विधि से निर्मित यह मंदिर विशिष्ट तांत्रिक महत्व रखता है। प्रवरा पहाड़ी अधोमुख त्रिकोणवत है। मंदिर अष्टकोणीय है। शिवलिंग चतुर्मुख तथा इसके सभी अर्घे चतुष्कोणीय हैं। पहाड़ी का अधोमुखी बिंदु पूर्व दिशा की ओर है। सूक्ष्म तांत्रिक विचारधारा में त्रिकोण शक्ति का प्रतीक है और वृत्त ब्रह्मांड का। अष्टकोण आठों दिशाओं का प्रतीक और सर्वत्र शक्ति प्रहार तथा उसकी व्यापकता का परिचायक है। बिंदु शक्ति का केंद्र है और वही प्राण है। अपनी अत्यंत गूढ़ तांत्रिक स्थिति और निरंतर ऊर्जा स्फुरण के कारण ही मुंडेश्वरी शक्तिपीठ अनंत जागृत रूप में प्रागैतिहासिक काल से कायम है। प्राचीन मनीषी तथा आधुनिक वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि प्रत्येक स्थान की एक विशेष चुंबकीय शक्ति होती है। भूमि चेतन एवं आंतरिक स्पंदन युक्त होती है। मुंडेश्वरी धाम बाह्य रूप से जड़ होते हुए भी स्पंदित है।

0: अजस्त्र सनातन अस्तित्व को बनाए रखने की आंतरिक क्षमता ने इसे विलुप्त नहीं होने दिया। यह संप्रदाय विशेष का स्थान नहीं, मानव के सनातन धर्म और संस्कृति का क्षेत्र है, जहाँ व्याप्त अपूर्व ऊर्जा एवं उल्लासयुक्त शांति हमें ज्ञात अज्ञात समस्त शक्तियों के समक्ष नत हो जाने को प्रेरित करती है। दोनों नवरात्रों, सावन तथा वर्ष भर यहाँ पहुँचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की असीम श्रद्धा भगवती के जागृत विग्रह की महिमा का यशोगान करती है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने मंदिर को अपने मूल स्वरूप में पुनः निर्मित करने, पहाड़ी तक रज्जु मार्ग बनाने तथा अन्य यात्री सुविधाओं के निर्माण हेतु सराहनीय प्रयास किए हैं। वह दिन दूर नहीं जब भारत का यह प्राचीनतम शक्तिपीठ अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर देश ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के आध्यात्मिकों, पुरातत्व शास्त्रियों, मानव शास्त्रियों, पर्यटकों व साधकों श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा।
1: देखें श्रोता सब, कितना निमन निमन जानकारी हमनी के प्रसून कुमार मिश्र जी से मिलल। यह जानकारी खातिर यहाँ के धन्यवाद दे दिया जाओ। श्रोता सब, काल 1 अगस्त बा। 1 अगस्त के दिन हमनी के असहयोग आंदोलन दिवस मनाओ जाला देश के हर क्षेत्र में। देश के हर क्षेत्र में ये असहयोग आंदोलन दिवस मनाओ जाला। आ एकरा में देखी मनावे के मुख्य कारण जोन बा कि 1 अगस्त 1920 के महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजन के खिलाफ ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन के शुरुआत भइल रहे। ब्रिटिश अन्याय के विरुद्ध जालियांवाला बाग जिसे 3 अप्रैल 1919 के भइल रहे, ये हत्याकांड, रॉयल एक्ट और खिलाफत आंदोलन जिसन क्रूर अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ गुस्सा जतावे के खातिर ये असहयोग आंदोलन मनाओल गए। भारत के ब्रिटिश राज के से मुक्ति दिलावे और देश में स्वराज स्थापित करे खातिर भी असहयोग आंदोलन के शुरुआत कैल गई। विदेशी वस्तु के बहिष्कार कैल गई, जैसे भारत के लोग सरकारी नौकरी, अदालत, विदेशी कपड़ा और स्कूल के पूरा तरह से बहिष्कार कैलन और स्वदेशी खादी अपनावे पर जोर दिलन। और ये तरह से असहयोग आंदोलन के जरिए ये सब अपन गुस्सा जतावत रहन। तो श्रोता सब, इस तरह से हमनी की असहयोग आंदोलन काल जौन बा 1 अगस्त के पूरे देश में मनावल जा रहा बा। आज जौन बा हमनी के 31 जुलाई बा, आ 31 जुलाई के मुंशी प्रेमचंद जयंती मनावल जा रहा बा। श्रोता सब, महान उपन्यास सम्राट कहीं मुंशी प्रेमचंद के जन्म जौन बा 31 जुलाई के, हमनी के 31 जुलाई 1980 के वाराणसी के पास लमही गांव में भइल रहे। इनकर पूरा नाम धनपत राय रहे। आ इ प्रेमचंद के उपनेम जो रहल प्रेमचंद रहल धनपत राय श्रीवास्तव के। इनकर बहुत से बढ़िया बढ़िया रचना रहल जोना के चलते इनकरा के महान उपन्यासकार कहल गेलै। इनकर साहित्य में देखल जा तो कलम का सिपाही कहे जाए वाला ई सम्मान से सम्मानित रहन। इनकर गोदान, गमन और निर्मला जिसे महान उपन्यास रहे। सामाजिक सुधार में इनकर अहम भूमिका रहे। उनकर कहानी समाज के शोषित वर्ग, किसान, मजदूर और महिला के स्थिति के उजागर कैलन। इन नई पीढ़ी के भारतीय समाज के वास्तविक सच्चाई और मानवीय मूल्य से जुड़े खातिर ये दिन याद कर जला। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद के जयंती हमनी के आज 31 जुलाई के हर जगह मनावल जा रहा बा। श्रोता सब, आई अब हमनी के कुछ संदेश सुन लिया जाओ। जैसे पिछला कुछ दिन में वर्षा जल के लाभ उठावत हुए हमनी के पूर्वानुमान अवधि में भी वर्षा के संभावना के देखत हमनी के धान के रोपाई खातिर व्यवस्था सुनिश्चित कनी जाए। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट के प्रयोग कनी जा। सुगंधित धान के किस्म भागलपुर, कतरनी आदि के बुआई अब कर सकतनी जा। अभी

भी करे के समय बा। किसान अपन निचला जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ बांध के वर्षा जल के संचय करके ताकि आवश्यकता पड़े पर इनका सिंचाई में उपयोग कर जा सके, एक करके हमनी के धान के रोपनी आराम से कर सकत बनिया। खरीफ मक्का के बुआई के 15-20 दिन बाद निकौनी करी, मक्का में धान बाल निकले के समय नियंत्रण ऊपरी निवेश जरूर करी। आम खातिर देखी बागवानी खातिर सलाह दिया जाता कि जुलाई अगस्त आम के पौधा के रोपण खातिर बहुत उपयुक्त समय बा। कलमी पौधा के रोपाई 10x10 मीटर तथा बीजू पौधा खातिर 12x12 मीटर के दूरी पर पौधा के रोपाई करी। सघन बागवानी खातिर 5x5 मीटर पर आम्रपाली खातिर 2.5x2.5 मीटर दूरी रखी। फलदार वृक्ष में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नेत्रजन, 300 ग्राम फास्फोरस और 700 ग्राम पोटास तथा 80 से 100 किलोग्राम सरल गोबर के खाद के प्रयोग जरूर करी। यही तरह से केला खातिर सलाह दिया जाता कि वर्तमान समय में स्वस्थ नरकस के रोपाई करी। लंबा किस्म अल्पान कांथली, मालभोग, चिनिया G9 और बौनिक किस्म ग्रैंड रेन, रोबस्टा, बसराई के चयन करी। लंबा किस्म खातिर 2x2 मीटर और बौनिक किस्म खातिर 1.5x1.5 मीटर की दूरी पर पौधा के लगाई। प्रत्येक गड्ढा में 15 किलोग्राम नेत्रजन के खाद, 500 ग्राम अरंडी के खली और 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 10 ग्राम कार्बेनोफॉर्म मिलाई। रोपाई से पहले सक्रस के कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करी। टिश्यू कल्चर पौधा के उपयोग अधिक उत्पादन खातिर लाभकारी होला। गाय खातिर सलाह दिया जाता कि गाय यदि पल्ले बनी तो पशुओं में PPR, FMD, खुरपका, मुँहपका और गला घोटू रोग के खतरा अधिक होला। ऐसे पशुओं के समय पर टीकाकरण जरूर कराई, उनके स्वच्छ एवं सूखा रखी और बीमार पशुओं के स्वस्थ पशुओं से अलग रखी। रोग के लक्षण दिखाई देला पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करी और पशुओं के अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखी। शुद्ध पानी दी, साफ पानी दी। हमनी के मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बाकी हमनी के आज के आसमान साफ और घने बादल छाइल रही और जिला में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले और हल्का वर्षा होकर के अनुमान बा। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के उम्मीद बा। सापेक्षिक आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 60% रहे के संभावना बा। पूर्वानुमान के अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चल सकत बा। देखी आज के तो रहल आ कल जौन बा हमनी के कल देखी कल के मौसम जौन बा वर्षा 12 mm बा। अधिकतम तापमान जौन बा 35 डिग्री सेंटीग्रेड बा आ न्यूनतम तापमान जौन बा 26 डिग्री सेंटीग्रेड बा। आ अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 70% बा आ न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 40% रहे के संभावना बा। हवा के गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल सकत बा। आंधी और बिजली तूफान आजी तेज हवा सतही हवा चल सकत बा। यही के साथ साथ श्रोता सभी देखी समय तो ओरा गई। ये सारे कार्यक्रम का प्रस्तुत करता रही संतोष कुमार। तो चली चल चलत के बेरा में सभी श्रोता भाई लोगन के मनु भाई के तरफ से नमस्कार बा।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम गांव घर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं अब आइए सुनते हैं सांझ गीत में भोजपुरी फिल्मी नगमे। राजा बाबू फिल्म का गीत हम आपको सुनवाएंगे कल्पना और आलोक कुमार की आवाज़ में। राजेश मिश्रा का लिखा गीत छोटे बाबा का संगीत।

बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुन रहे थे राजा बाबू फिल्म से, कल्पना और आलोक कुमार की आवाज़ों में। राजेश मिश्रा का ये लिखा गीत था, छोटे बाबा का संगीत था। इसी फिल्म से आइए सुनते हैं एक और गीत, नीतू सिंह की आवाज़ में राजेश मिश्रा के बोल, छोटे बाबा का संगीत।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देहियों के बुलंदियन के पांख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
1: बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।

कृतज्ञा फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे उदित नारायण और कल्पना की खूबसूरत आवाज़ों में। विनय बिहारी का लिखा ये प्यारा सा गीत था, राजेश मिश्रा का संगीत था। अगला गीत आइए सुनते हैं परिवार फिल्म से उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में। विनय बिहारी का लिखा गीत, धनंजय मिश्रा का संगीत।

बम बम बोल रहा है काशी। इस फिल्म का गीत हम सुन रहे थे कल्पना और खुशबू जैन की आवाज़ों में। प्यारे लाल यादव का लिखा गीत था और राजेश रजनीश का संगीत था। सैया हमार इस फिल्म से ये गीत सुनते हैं। साधना सरगम और सोहम की आवाज़ों में विनय बिहारी के बोल ताबुन और सुजीत कुमार का संगीत।

और श्रोताओं, इसी के साथ सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का स्वागत है। खेल मैदान बचाने की मांग को लेकर युवाओं ने दिया धरना। बिहिया के युवाओं, छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने वर्षों से खेल मैदान के रूप में उपयोग हो रही बियाडा की जमीन को बचाने की मांग को लेकर गुरुवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना दिया। अंत में वीडियो को ज्ञापन सौंपा। युवाओं का कहना है कि उक्त मैदान लंबे समय से क्षेत्र के युवाओं और बच्चों के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, दौड़, शारीरिक अभ्यास, सेना, पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का प्रमुख केंद्र रहा है। उक्त भूमि को बियाडा द्वारा किसी औद्योगिक इकाई के लिए लीज पर दे दी गई है, जिस पर निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया में विसंगतियों पर जताई नाराजगी। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार स्थानांतरण नीति और मानक संचालन प्रक्रिया में तमाम तरह की विसंगतियां सामने आई हैं, जिससे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बन गई है। जैसे विशेष आधार यथा पति पत्नी पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरित शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को भी अधिशेष शिक्षक यानी कि सरप्लस मानकर उनका समायोजन सूची में रखा गया। शिक्षक विकास कुमार सिंह, रविकांत सिंह आदि अन्य शिक्षकों ने इस तरह की विसंगतियों की वजह से तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें, और इस पर उन्होंने नाराजगी जताई है। एनटीए को भंग करने के लिए संकल्प मार्च। आईसा आर वाई भाकपा माले के नेतृत्व में कुशवाहा सभा भवन से गुरुवार को संकल्प मार्च निकाला गया। पुरानी जीटी रोड से होते हुए मार्च धर्मशाला चौक से होते हुए पोस्ट ऑफिस चौक पर पहुंचा, जहां एक सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए काराकाट विधायक अरुण सिंह ने सभी आंदोलनकारियों के घर वापसी तक आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया और सरकार से मांग की कि बिहार शरीफ के नगर नौसा के सभी आंदोलनकारियों सहित आंदोलन के दौरान गिरफ्तार छात्र नौजवानों को बिना शर्त रिहा की जाए। आंदोलनकारियों पर AK-47 और पायलट गन का आदेश देने वालों की जवाबदेही तय कर गिरफ्तारी और मुकदमा सुनिश्चित की जाए। पुलिस की गोली या लाठी से घायल सभी आंदोलनकारियों को मुआवजा दिया जाए। बिहार के विश्वविद्यालयों में ऑनर्स में नामांकन के लिए 7.5 CGPA की अनिवार्यता खत्म की जाए और NTA को भंग कर शिक्षा परीक्षा में भ्रष्टाचार पर रोक लगे। और श्रोताओं अब आइए कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अब आइए कार्यक्रम में वापस लौटते हैं। रोहतास महिला कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। रोहतास महिला कॉलेज सासाराम में निर्वाचन साक्षरता क्लब के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और भावी मतदाताओं में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी को प्रेरित करना है। कार्यक्रम में महिला कॉलेज के प्राचार्य अजित कुमार राय, BDO उप नगर आयुक्त किशोर कुणाल तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी रोहतास सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने निर्वाचन साक्षरता क्लब की अवधारणा, उद्देश्य, कार्यक्रम की रूपरेखा और निर्वाचन प्रक्रिया पर जानकारी दी। उप नगर आयुक्त ने छात्राओं को निर्वाचक नियमावली में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज और आवेदन दाखिल करने की विधि से अवगत कराया। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचक सूची में विसंगतियों, जैसे एक व्यक्ति का एक से अधिक स्थान पर पंजीकरण और 18-19 आयु समूह के कम मतदाताओं की संख्या के बारे में जानकारी दी। और श्रोताओं, इसी के साथ सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास अब यहीं संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल के लिए आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र।

ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।

0: आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के।
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशन धारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन धारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
6: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
8: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
9: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
10: और इस गीत के बाद
11: छाया गीत
12: ऑल इंडिया रेडियो।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 सालों तक जारी रखने की दी मंजूरी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, शिक्षकों के तबादले की नीति को लचीला बनाया जा रहा है। शिक्षक अब तबादले के लिए 30 विद्यालयों का संकल्प दे सकते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग का अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सिवान, कटिहार, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। अब समाचार।

0: से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्षों की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि अब तक 23 किस्तों में 44,70,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जा चुकी है।
1: बहुत बड़ा फैसला लिया है आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया। पीएम किसान योजना आप सब जानते हैं कि देश की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए का सपोर्ट, इनकम सपोर्ट दिया जाता है, जैसे कि बीज खरीदना हो, फर्टिलाइजर खरीदना हो, इन सब के लिए किसानों को एक अच्छी क्रॉप साइकिल के बिगिनिंग में बेनिफिट मिलता है, जिससे कि खेती करने के टाइम में सोइंग के समय में बेनिफिट मिलता है, खरीफ सोइंग में, खरीफ हार्वेस्ट, रबी की प्रिपरेशन में और रबी के हार्वेस्ट के समय।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 सालों की अवधि के लिए खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों की शक्ति का उपयोग करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। हंगामे के कारण सदन में बिना किसी चर्चा के यह विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की।
3: पार्लियामेंट में भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हिस्सा नहीं लेते हैं बिल में, फिर आप बाहर में न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते, ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते, आपने अपना मौका गंवा दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सहयोग करें, हंगामा ना करें।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने संसद के बाहर कहा कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जिन पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ उनके प्रति भी हमें संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नौजवानों का सम्मान करती है, लेकिन अगर आंदोलन में अपराधी भी शामिल हो जाए तो यह गंभीर सवाल खड़ा करता है।
4: ऐसा है, पुलिस वालों पर जो हमला हुआ है, जिनको चोट लगी है, हमको संवेदनशील होना चाहिए। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं और उनके भी मानवाधिकार हैं, ये बात समझना चाहिए। अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय भी उस मामले में बात कही हुई है, लेकिन हम नौजवानों का सम्मान करते हैं, उनके आंदोलन के पीछे अगर अपराधी खड़े होते हैं और इस तरह से सजायाफ्ता लोग या अपराध, मर्डर के आरोप, रेप के आरोप और बाद में पुलिस वाले पिटते हैं, तो गंभीर सवाल तो ही है।
0: विपक्ष ने नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर हंगामा किया, जिसके कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज प्रभावित हुई। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की अगली कार्यवाही 3 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत शिक्षकों का समायोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपनी पसंद के कम से कम एक और अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प दे सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो शिक्षक तबादले के लिए आवेदन नहीं करेंगे उनकी इच्छा के विरुद्ध स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भरत तिवारी को गोली मारने वाले एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आत्मसमर्पण के बाद भरत तिवारी को सबसे पहले अक्षय कुमार ने गोली मारी थी। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार

0: गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस को दिया था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा है कि बिहार से राजद का वजूद खत्म होने वाला है। श्री आलोक ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में पार्टी को जनता का भरपूर समर्थन मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रशांत किशोर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता इनकी मंशा को कामयाब नहीं होने देगी।
1: बांकीपुर की जनता को बहुत सहृदय धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक बार फिर से उन्होंने ये साबित किया कि उनका दिल भारतीय जनता पार्टी में ही बसता है और भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व बहुमत के साथ बांकीपुर चुनाव जीतने जा रही है। तीसरे हमारे जो प्रत्याशी थे उनका नाम तो वैसे पीके है, लोग जानते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन न प्रशांत है न किशोर है, वो है प्रखर कुटिल। पूरे चुनाव में इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने कभी आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। सोचिए कितनी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे थे, एक बार भी अटैक नहीं किया।
0: राजद के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। श्री यादव ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चुनाव में पार्टी की प्रत्याशी रेखा कुमारी को सभी वर्गों का सहयोग मिला है।
2: इस बार बीजेपी की करारी हार होने जा रही है और इस बार राष्ट्रीय जनता दल हम लोग चुनाव हमारी प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी जो है, जिनको समाज का हर जाति हर धर्म के लोगों ने हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया है, हम लोगों की बड़ी जीत जो है बांकीपुर से होने जा रही है। और 3 तारीख को नतीजा आएगा, उसमें आप सब लोग देखिएगा कि जो है लालटेन खिलेगा।
0: निगरानी विभाग की टीम ने औरंगाबाद जिले के रिसियप थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार को 50,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दारोगा उमेश कुमार ने मारपीट के मामले में नामजद आरोपी का नाम केस डायरी से हटाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की समृद्धि अब वैश्विक बाजारों तक अपनी पहचान बना रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी कि कनाडा को बिहार से 7 मीट्रिक टन मखाना भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने इसे लोकल से ग्लोबल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी को राज्यपाल सचिवालय में सलाहकार नियुक्त किया है। यह नियुक्ति बिहार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए की गई है। राज्य सरकार ने सिपाही और ASI रैंक के पुलिसकर्मियों को वाहन जांच करने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय वाहन जांच के दौरान आ रही विभिन्न शिकायतों को देखते हुए लिया गया है। ट्रैफिक ADG सुधांशु कुमार ने आज पटना में बताया कि इस आदेश को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए जांच दल भी बनाए जाएंगे।
6: स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल सब इंस्पेक्टर या ऊपर के रैंक के पदाधिकारी ही प्रवर्तन करने के लिए अधिकृत, किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य रैंक का पदाधिकारी

0: कर्मी, जैसे सिपाही हो या हवलदार हो या ASI हो, उसको ये काम नहीं करना है।
1: विधान पार्षद देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री कुमार वर्ष 2021 में विधान पार्षद बने थे। समझा जाता है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने विधान पार्षद की सदस्यता छोड़ी है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सिवान, कटिहार, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 5 अगस्त तक राज्य के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग के अनेक स्थानों जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर विभाग ने पटना, मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली जिले के कुछ भागों में रात 8 बजे तक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। सुपौल जिले के किशनपुर अंचल के मौजहा पंचायत के वार्ड नंबर 14 स्थित पचगछिया गांव में कोसी नदी के कटाव से लोगों के सामने पलायन का खतरा मंडरा रहा है। कटाव से सरकारी नल जल योजना के तहत निर्मित पानी टंकी ध्वस्त हो गई है। किशनपुर के प्रभारी अंचलाधिकारी जिया उल कमर ने बताया कि अब तक कटाव की चपेट में आकर 15 घर नदी में डूब चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए कार्रवाई की जा रही है। नेपाल के सुनसरी में दो समुदायों के बीच तनाव को देखते हुए प्रशासन ने धनुषा और सिराहा जिला में कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू के कारण जयनगर से नेपाल के बिजलपुरा तक चलने वाली ट्रेन का परिचालन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पटना में क्लस्टर शिविर का आयोजन किया गया। NSO के उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों को वेब पोर्टल पर रिटर्न खुद भरने की जानकारी देना था। रक्षा विभाग की ओर से छपरा में पूर्व सैनिकों के लिए रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सारण प्रमंडल के तीनों जिलों के लगभग 1000 पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के शिवचक बैंक कॉलोनी स्थित एक मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की है। जब्त दवाओं की कीमत 30 लाख रुपए से अधिक है। मधुबनी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाकर भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब जब्त की है। जुलाई महीने में कार्रवाई के दौरान 320 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बांका जिले के बौंसी प्रखंड के तिवारीचक गांव में पटवन के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एक महिला की बाघ के हमले में मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 सालों तक जारी रखने की दी मंजूरी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, शिक्षकों के तबादले की नीति को लचीला बनाया जा रहा है। शिक्षक अब तबादले के लिए 30 विद्यालयों का विकल्प दे सकते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने STF के जवान अक्षय कुमार को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग का अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सिवान, कटिहार, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम

0: संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कैमूर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।
1: सावन का पावन महीना शुरू होते ही कैमूर जिले में भक्ति का माहौल है। सभी शिवालयों को सजाया गया है और श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना में जुटे हैं। जिले के प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी धाम में एक महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई है। धार्मिक न्यास समिति की ओर से मंदिर के गर्भगृह में स्थित चतुर्मुख मंगलेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक कर मेले की शुभारंभ किया गया। कंवरिया बाबा का जलाभिषेक करने के साथ मां मुंडेश्वरी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने धाम में पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धाम परिसर में मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों और पर्याप्त संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्रकाश, पहुंच मार्ग, वाहन पार्किंग, विश्राम और आवासन की समुचित व्यवस्था की गई है। इधर जिले में धान की रोपनी का काम तेजी से चल रहा है। नहरी क्षेत्र के किसान नहर के पानी से, जबकि असिंचित क्षेत्रों के किसान समर सेबल डीजल पंप और मोटर के जरिए खेतों की सिंचाई कर धान की रोपनी कर रहे हैं। जिले में इस बार 1,41,000 हेक्टेयर में भूमि में धान की रोपनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक करीब 65% क्षेत्र में रोपनी हो चुकी है। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि खरीफ फसलों की खेती के लिए किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर निगरानी समितियां गठित की गई है। समितियों के अधिकारी उर्वरक दुकानों का निरीक्षण कर आपूर्ति, वितरण और स्टॉक की जांच कर रहे हैं। कैमूर के मोहनिया और भभुआ शहर में पाइपलाइन के जरिए घरों तक पीएनजी पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी घनानंद ने बताया कि पहले चरण में सितंबर तक मोहनिया शहर के सभी घरों में पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके बाद दूसरे चरण में भभुआ शहर में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की कार्रवाई की जाएगी।
2: अभी वर्तमान में कैमूर जिला अंतर्गत पाइपलाइन नेचुरल गैस का काम तेजी से चल रहा है और ये लक्ष्य जो हमारे पूरे जिले का है कि मोहनिया में सितंबर माह के अंत तक एवं उसके अगले आगामी अक्टूबर माह तक भभुआ शहर में भी हम पाइप नेचुरल गैस जो है प्रत्येक घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आदमियों को गैस सिलेंडर पर प्रत्येक महीना उसका बुकिंग या उसको लाना या ढोने का के समस्या से निजात पा जाएंगे। और पाइपलाइन नेचुरल गैस जो है कि एलपीजी के कंपैरिजन सस्ता भी है और सेफ भी है।
1: जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभुकों से बैंक खातों को आधार से सीडिंग कराने और जीवन प्रमाणीकरण जल्द कराने की अपील की गई है। विभाग के अनुसार जिले के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,99,829 लाभुकों को हर महीने 1,100 रुपए पेंशन मिल रही है। इनमें 23,146 लाभुकों ने अब तक अपना बैंक खाता आधार सीडिंग नहीं कराया है। प्रशासन ने समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है ताकि पेंशन की राशि मिलने में परेशानी नहीं हो सके। सरकार के सेवा संकल्प और समर्पण के 100 दिन पूरे होने पर जिले में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी ने दर्जन भर लाभुकों के बीच भूमि बंदोबस्ती के पर्चे वितरण किए। कार्यक्रम में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और लाभुकों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। 7 निश्चय योजना के तहत उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले सप्ताह कैमूर जिले के राजकीय डिग्री महाविद्यालय चैनपुर और राजकीय डिग्री महाविद्यालय नुआ में शैक्षणिक सत्र का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि इन महाविद्यालयों की शुरुआत जिले में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में कैमूर के कलेक्ट्रेट में सांसद मनोज कुमार की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक हुई। सांसद ने विकास योजनाओं को समय पर लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले के अस्पतालों में सर्पदंश की वैक्सीन और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मरीजों को निर्धारित मेनू के अनुसार भोजन देने को कहा। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मां मुंडेश्वरी सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने टीबी मरीजों के बीच पोषण किट वितरण किए। उन्होंने कहा कि पोषण किट वितरण केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सामाजिक सहभागिता के साथ स्वस्थ समाज के निर्माण का

0: महत्वपूर्ण संकल्प है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से भभुआ मंडल कारा में बंदियों के लिए जागृति योजना 2025 के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पैनल अधिवक्ता अनिल कुमार ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, प्ली बार्गेनिंग और अपराधों के समन से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी।
1: अभी आप सुन रहे थे कैमूर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।
2: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और श्रोताओं, आपने बहुत सारे ईमेल फरमाइश हम तक भेजी है जिन्हें हमने शामिल कर लिया है, और इसमें से ज़्यादातर फरमाइश है आज मोहम्मद रफ़ी जी की पुण्यतिथि पर। तो आप सभी और पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से मोहम्मद रफ़ी जी को सत सत नमन करते हैं, उनकी गायकी को, उनकी सुरीली आवाज़ को, और सुनवाते हैं आप सभी को आपके द्वारा पसंद किए गए गीतों को। तो पहला गीत आया सावन झूमके, इस फिल्म का गीत आप सबों ने सुनना चाहा है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता।

जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। एक और मैसेज शामिल कर लेते हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है, और ये हमारे श्रोता हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश साहू, और डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। तो चलिए हम सभी सुनते हैं आज महान गायक मोहम्मद रफ़ी जी की पुण्यतिथि पर ये गीत।

0: और श्रोता, इसी के साथ ई मनपसंद कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इसका शेष भाग हम सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। और अब आइए आपको लेकर चलते हैं संसद समीक्षा के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है, आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रही हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए, आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे

स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट DM, उपमंडल मजिस्ट्रेट SDM अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति JPC का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवम्बर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बच

साफ के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने ये भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूं लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जन

जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं, इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

FM 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है एक बार फिर से ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। शेष भाग आपको हम सुनवाएंगे। ये मैसेज हमें मिला है फिल्म दिल से, फिल्म से उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज़ों में इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता, जो कि हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे। ये हमारे श्रोता हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश, रमेश गौंड और शादाब खत्री। इनको भी हम सुनवा रहे हैं दिल से फिल्म का ही ये खूबसूरत गीत। आइए सुनें।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ब्रेक के बाद श्रोताओं स्वागत है आप सभी का, और अब आइए सुनते हैं अगला गीत खुदगर्ज फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहते हैं साकीबा, आलिया, कमाल, मेराज और निसार, आप सभी हैं आकाशी सासाराम से। तो आप सबों को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं, और ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। करणवीर हाउस भूचो कैंचिया वटिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत, इन्होंने लिखा है किसी भी गीत में शामिल किया जाए। तो चलिए आप भी सुनिए खुदगर्ज फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज़ और नितिन मुकेश की आवाज़ों में।

खुदगर्ज फर्म का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और नितिन मुकेश की आवाजों में। अब आइए सुनते हैं अगला गीत आज और कल फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता जो कि हैं गांव टोरी वाल जिला नवान शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी और डॉक्टर प्रियम थांदी। तो चलिए आप सबों को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। कुछ और मैसेज शामिल कर लेते हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। और ये हमारे श्रोता हैं ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और इनका पूरा परिवार। इन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। इन्होंने लिखा है कि इनके भी ईमेल को शामिल करें। तो चलिए आज आपके ईमेल शामिल हो गए और सुनिए आज और कल फिल्म का ये खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं भाई सुनते हैं हमराज फिल्म का गीत, और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। एक और मैसेज है, नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, जेके मिश्रा, श्वेता रानी पाठक, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, हनी, कासवी और गोलू ने कोई भी गीत सुनना चाहा है, तो चलिए आप सभी सुनिए हमराज फिल्म का गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी।

हमराज फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुन रहे थे, उदित नारायण की आवाज़ थी। अब आइए सुनते हैं अगला गीत पगला कहीं का इस फिल्म से। और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता जो कि हैं फुटानी चौक नरहन स्टेट से, ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। कुछ और मैसेज शामिल कर लेते हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। और ये हमारे श्रोता हैं पुरुषोत्तम कुमार, शेख जफर हसन, सिवा लोहट, शारदा प्रसाद प्रजापति, गांव डांडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। तो इनको भी हम सुनवा रहे हैं पगला कहीं का फिल्म कहीं ये नगमा। और ये हमारे श्रोता हैं दतरंगी के, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, इन्होंने भी कोई भी गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पगला कहीं का फिल्म से ये गीत।

0: कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी।

0: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
0: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीज का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीज का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीज का प्रोग्राम।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
0: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए का इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
0: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीज की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार

0: और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG राम जी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए एसटीएफ की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहरा जाना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आनंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचा

0: पाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 9 बज चुके हैं और अब आइए सुनते हैं भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

नीलेश्वर मिश्रा की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। और इसी के साथ लोकधारा कार्यक्रम भोजपुरी लोकगीतों का अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम बंदगी।

रूबीना शेख और असलम हुसैन की आवाज़ों में अभी हम सुन रहे थे। ये मन कब अब आइए सुनते हैं छल का चिराग आफ्ताब साबरी की आवाज़ में ये अगला गीत।

और श्रोताओं, इसी के साथ बंदगी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अगले कार्यक्रम के लिए आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से हम सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण।

असंभव है। इस दिशा में बाल साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके द्वारा बच्चों में स्वस्थ संस्कार डाले जा सकते हैं। अनुशासन, मर्यादा और व्यवस्था की नींव बचपन में ही उचित बाल साहित्य द्वारा निर्मित की जा सकती है। श्रोताओं, आज बच्चों का जीवन मोबाइल और इंटरनेट गेम आदि की ओर ही घूमता नजर आता है। वे पत्र पत्रिकाओं, किताबों से दूर होते जा रहे हैं। ये इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में बाल साहित्यकारों का दायित्व बढ़ जाता है। बच्चों के बिना घर संसार, देश दुनिया सूनी सूनी सी है। कहने का मतलब, बच्चों से ही कल है। अतः भावी पीढ़ी के चरित्र निर्माण में बाल साहित्य की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। श्रोताओं, बाल साहित्य ही बच्चों के भविष्य का निर्माता है। इसका मूल

0: उद्देश्य कुरीतियों तथा सभी प्रकार की बुराइयों से हटकर स्वस्थ, सुंदर और आनंदमयी जीवन जीने की कला सिखाना है, जिससे बच्चों का दृष्टिकोण सकारात्मक हो न कि नकारात्मक। श्रोताओं, चारित्रिक दृढ़ता लाने का सर्वोत्तम माध्यम बाल साहित्य ही है। बच्चों के हृदय की कोमलता और मन की सच्चाई को बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। समाज रूपी बगिया का सौंदर्य ये बच्चे ही हैं, इसलिए बच्चों के प्रति सदैव सजग रहने की आवश्यकता है। मुस्कुराते बच्चे समृद्धशाली देश की पहचान होते हैं। बच्चे ही बड़े होकर देश के निर्माता बनते हैं। अभी आप सुन रहे थे संपादकीय शब्द शिल्प में लीजिए प्रस्तुत है शिशिर कुमार कर्ण की वार्ता प्रेमचंद लिखित बाल साहित्य।
1: मुंशी प्रेमचंद आधुनिक हिंदी साहित्य को पूर्ववर्ती युग के तिलिस्म और अय्यारी वाली कहानियों से निकालकर यथार्थ की जमीन से अंकुरित कर उदग्र आदर्श की ओर उन्मुख करने वाले 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों में ही संपूर्ण हिंदी जगत को अपनी कलम से चमत्कृत और आकृष्ट करने वाले अप्रतिम साहित्यकार थे। उनका जीवन काल वर्ष 1880 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक कुल 56 वर्षों का रहा। उनके लिखे विश्व प्रसिद्ध उपन्यासों सेवा सदन, गबन, कर्मभूमि व गोदान ने प्रेमचंद को हिंदी के उपन्यास सम्राट के रूप में स्थापित किया। विदेशी भाषाओं में भी इन उपन्यासों के अतिरिक्त शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, सौत, परीक्षा, उपदेश आदि कहानियों को प्रसिद्धि और लोकप्रियता मिली। निर्धनता और गंभीर अस्वस्थता के चलते वर्ष 1936 में वह परलोक सिधार गए। अपने समृद्ध कथा साहित्य के लिए वह सदा के लिए अमर हो गए, परंतु यदि वह स्वस्थ रहते तो अपने जीवन काल में ही वह हिंदी कथा जगत की और मंजिलें गढ़ते। इसी वर्ष उन्होंने मंगलसूत्र नाम से एक और उपन्यास लिखना प्रारंभ किया था, जो उनके निधन के कारण पूरा नहीं हो सका, और इसी वर्ष 1936 ईस्वी में ही उनकी एक कथा रचना पूर्ण हुई थी, कुत्ते की कहानी। कुत्ते की कहानी वास्तव में हिंदी कथा जगत में बाल साहित्य की नींव रखने वाली रचना है। यह रचना हिंदी साहित्य का प्रथम बाल उपन्यास है। शीर्षक में कहानी देखकर लग सकता है कि यह कहानी प्रेमचंद द्वारा बच्चों के लिए लिखी एक कहानी है, लेकिन प्रेमचंद की यह दीर्घकाय और औपन्यासिक ताने बाने में बुनी एक ऐसी कथाकृति है जो अपनी संरचना, शैली, कथ्य और भाव विस्तार की दृष्टि से हिंदी का सर्वप्रथम और श्रेष्ठ बाल उपन्यास ही है। इसकी भूमिका में प्रेमचंद ने बाल पाठकों को इस प्रकार से संबोधित भी किया है, उम्मीद है तुम्हें यह कुत्ते की कहानी अच्छी लगेगी, क्योंकि इस कुत्ते के भीतर भी तुम्हारे जैसा ही सरल निश्चल बच्चा बैठा हुआ है। इस प्रकार बच्चों के लिए लिखी यह महत्वपूर्ण कृति, जो कालांतर में हिंदी के प्रथम बाल उपन्यास के रूप में समादृत होती है, वस्तुतः प्रेमचंद के जीवन की आखिरी रचना सिद्ध हुई। यह कृति इस बात के संकेत देती है कि प्रेमचंद और कुछ वर्ष जीवित होते तो बाल साहित्य की दुनिया इन प्रारंभिक वर्षों में ही और अधिक समृद्ध हुई होती, क्योंकि कुत्ते की कहानी जब लिखी जा रही थी तब प्रेमचंद अपनी प्रतिष्ठा और यश के शीर्ष पर थे। साथ साथ गोदान जैसे महान उपन्यास की रचना भी वह कर चुके थे। फिर उन्हें उन्हीं दिनों यह बाल उपन्यास कुत्ते की कहानी लिखने की प्रेरणा आने लगी थी। अपने चतुर्दिक फैले परिदृश्य से समाज की एक एक समस्याएं उनकी रचनाओं का केंद्रीय विषय बनती थीं। शायद इसीलिए उनकी दृष्टि समाज का भविष्य बनाने वाले बाल पाठकों पर गई और उन्होंने यह बाल उपन्यास लिखा ताकि उपन्यास के नायक इस साहसी कुत्ते की कहानी के माध्यम से बाल पाठकों के मन पर उदारता और स्वाभिमान से परिपूर्ण साहस और कर्मठता का संस्कार आरोपित किया जा सके। इसलिए प्रेमचंद अगर और जीते तो हिंदी का बाल मानस जगत उन्हीं

ऐसे उनके और एक से एक बाल उपन्यासों से समृद्ध होता। काश। तो यह बाल उपन्यास कुत्ते की कहानी का नायक स्वभावतः एक कुत्ता ही है। लेखक ने उसको नाम दिया है कल्लू। कल्लू अपने जिस परिवार का हिस्सा है उसमें उसकी माँ है और भाई है। इनसे कल्लू का मिजाज थोड़ा अलग प्रकार का है। कल्लू की रोटी उसका भाई ही जबरन छीनता है तो कल्लू दुखी होकर सोचता है, हम कुत्तों में यही बुराई है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते का सुख नहीं देख सकता। यह व्यंग्य बाल पाठक को छूता है, लेकिन यह व्यंग्य तो प्रौढ़ पाठकों को भी अछूता नहीं छोड़ता। खैर, धीरे धीरे यही कल्लू वास्तव में नायकीय मन मिजाज का हो जाता है। अनेक बड़े से बड़े और आश्चर्यजनक कारनामों की वजह से वह सुखचैन का जीवन जी रहा है। उसकी वीरता की कहानियां अखबार छापने लगे हैं। लोग मुहमागी कीमत में उसे खरीदना चाहते हैं। साहबों की तरह उसे मेज पर खाना मिलता है, सेवा करने और टहलाने के लिए नौकर बहाल हैं। लेकिन सच पूछो तो कल्लू को चैन नहीं है, वह सुखी नहीं है। वह भीतर भीतर अशांत रहता है क्योंकि उसका मन पहले की भांति गलियों में घूमने और आवारागर्दी करने को करता है। उसे यह बात चालती है कि सारे सुख उसके पास हैं लेकिन गले में गुलामी का पट्टा बंधा हुआ है, और गुलामी से बड़ा अभिशाप क्या हो सकता है। तब से कई नुमाइशों में जा चुका हूँ, कई राजाओं का मेहमान रह चुका हूँ, मगर अब यह मान सम्मान बहुत अखरने लगा है। यह बड़प्पन किसी कैद से कम नहीं। उस आज़ादी के लिए जी तड़पता रहता है जब मैं चारों तरफ मस्त घूमा करता था। जब यह उपन्यास लिखा जा रहा था तब यही आज़ादी की तड़प संपूर्ण भारतीय समाज में भी व्याप्त थी। कुत्ते की कहानी हिंदी का प्रथम बाल उपन्यास है, यह जिक्र पहले कर आए हैं, लेकिन बच्चों के लिए प्रेमचंद की यह एकमात्र रचना नहीं है। प्रेमचंद की ऐसी अनेक कथा रचनाएं हैं जो तदयुगीन बाल पाठकों का ही नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी हर युग के बालमन का मर्म स्पर्श करती रही है। लेखकों की रचनाएं बदलते समय के साथ अपनी आभा और मूल्य खोने लगती हैं, लेकिन प्रेमचंद की ये कहानियाँ अवश्य कोई नित नूतन तत्व अपने में अंतर्निहित रखती हैं कि आज का बाल पाठक भी उन्हें पढ़कर भावुक हुए बिना नहीं रहता। प्रेमचंद ने एक और रचना लिखी, दुर्गादास। दुर्गादास को प्रेमचंद ने जीवनी के रूप में लिखा, लेकिन अनेक समीक्षक इसे ही हिंदी का प्रथम बाल उपन्यास घोषित करते हैं। इस कृति की शुरुआत नाटकीयता के साथ होती है। दुर्गादास की दुर्जेय छवि और उसके साहस और शौर्य की एक एक घटना उसके उदात्त चरित्र का बखान करती है। मुगल शासक औरंगजेब को हंसा हंसा कर चिढ़ा देने की उसकी जीवटता और अंत में इस महान योद्धा का वीरगति प्राप्त करना प्रेमचंद ने जिस मार्मिकता के साथ की है वह प्रेमचंद की औपन्यासिक कला की उदात्तता का परिचय कराने के लिए पर्याप्त है। प्रेमचंद की लिखी ऐसी अनेक कहानियां हैं जो खास तौर पर बच्चों के लिए नहीं लिखी गई थीं, लेकिन इनमें जीवन और जगत का यथार्थ इतना जीवंत और सर्वस्पर्शी हो आया है कि उनकी संप्रेषणीयता उम्र के बंधन को बहा ले जाती है और आबाल वृद्ध सभी आयु के पाठक के मन में गहरे उतरती जाती है। दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, रामलीला, ईदगाह, गुल्ली डंडा, ये सब प्रेमचंद की ऐसी कहानियां हैं जो उम्र भर पाठक को तरह तरह से लुभाती रही हैं। ईदगाह का हामिद जब अपने तमाम हम उम्र बालकों की तरह खाने पीने की कोई वस्तु नहीं खरीदता या अपने किसी बालकोचित शौक की ओर आकर्षित नहीं होता बल्कि मेले से लौटते हुए दादी के लिए चिमटा ले आता है तो केवल दादी का मन नहीं भीगता, पढ़ने वाला चाहे किसी उम्र का पाठक हो भावुक होता है। हामिद का यही अंतर्वर्ती चरित्र बाल पाठकों के मन पर अद्भुत रागात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे ही दो बैलों की कथा बेजोड़ कथा है जो बच्चों को चकित विस्मित करने में सर्वथा समर्थ है। बड़े भाई साहब, कजाकी, नादान दोस्त, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर आदि ऐसी कहानियां हैं जिन्हें बच्चे पाठ्यक्रमों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते आए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि बाल पाठकों के बीच

0: इन जैसी प्रेमचंद की अनेक कहानियों का एक अच्छा व गहरा संबंध कायम हुआ है। विशेष रूप से बाल पाठकों का ध्यान रखकर प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी उन पर हिंदी जगत का ध्यान देर से गया है। जंगल की कहानियाँ, इसमें दर्जन भर कहानियाँ हैं जिनमें प्रेमचंद बाघ, भालू, वनमानुष, चीता आदि जंगली जानवरों के जीवन क्रम को लेकर बच्चों की दृष्टि से बड़ी संवेदना जगाने वाली कोमल शब्दावली की मार्मिक कहानियाँ कहते नजर आते हैं। तब तक प्रेमचंद अपने यश और उपलब्धियों के उस शीर्ष पर पहुँच चुके थे जिसकी चकाचौंध में उनके ही इस बाल साहित्य की ओर लोगों का ध्यान नहीं के बराबर गया। कम लोग जानते होंगे कि हिंदी में रामकथा पर पहली गद्य जीवनी प्रेमचंद ने लिखी है। यह प्रेमचंद ने पहले उर्दू में लिखी और फिर उसका हिंदी में लिप्यंतरण और अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। बड़ी आत्मीयता से प्रेमचंद ने यह स्थापित करने की चेष्टा की कि राम अपने किन उदात्त गुणों के कारण लोक में आदर के पात्र बने हुए हैं। संयोग की बात है कि बड़े पाठकों को केंद्र में रखकर लिखी यह जीवनी भी बच्चों को अधिक आकर्षित और प्रभावित करती है। बच्चों के लिए लिखी प्रेमचंद की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है कलम, तलवार और त्याग, जिसकी चर्चा के बिना प्रेमचंद का बाल साहित्य का विषय पूरा नहीं होता। अनेक लेखकों, कलाकारों, स्वाधीनता सेनानियों, पत्रकारों और अन्य ऐतिहासिक चरित्रों की जीवनी इस पुस्तक में सहज सरल बालोपयोगी भाषा में संग्रहित है। महाराणा प्रताप, राजा रणजीत सिंह, स्वामी विवेकानंद, अकबर महान, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, गोपाल कृष्ण गोखले, गैरी वाल्डी, मौलाना वहीदुद्दीन सलीम, डॉक्टर कर श्री बद्रुद्दीन तैयब जी आदि के जीवन चरित सहज सरल भाषा में प्रेमचंद ने लिखे, जो बच्चों में सेवा, त्याग और उत्साह के मूल्य अंकुरित करने वाले हैं। कह सकते हैं कि प्रेमचंद एक तरफ प्रौढ़ों के साहित्य के शीर्षस्थ और सर्वप्रिय लेखक हैं, दूसरी तरफ वह बच्चों के भी महानतम कालजयी लेखक हैं। प्रेमचंद के बाल साहित्य की ओर साहित्यालोचकों को और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता बनी हुई है, जो उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व का एक नूतन वात्सल्यपूर्ण स्वरूप हिंदी जगत के समक्ष उपस्थित कर सके। यह प्रसन्नता की बात है कि इस तथ्य की ओर प्रकाशकों ने ध्यान दिया है और प्रेमचंद लिखित बाल साहित्य पर्याप्त मात्रा में प्रकाशित होकर सामने आने लगा है।
1: प्रेमचंद लिखित बाल साहित्य, अभी आपने शशर कुमार कर्ण की ये वार्ता सुनी। कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है नरेंद्र देव शुक्ल तरुण से उनकी कहानी समर्पण।
2: इतनी लंबी अवधि के बाद तुम्हारे पत्र का आना एक सुखद आश्चर्य ही तो है। जीवन के कितने अध्याय बीत गए, कितना कुछ घटित हुआ कि क्या कहूँ, लेकिन तुम्हारी याद और तुम्हारी तलाश कभी समाप्त नहीं हुई। अब इस लिफाफे को खोलते हुए मन इतना आशंकित क्यों है? मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। इतना कहते हुए अजय ने वह पत्र मेरे हाथों में देते हुए कहा, तुम ही पढ़ो रत्नधर, मैं आंखें मूंद कर शांत भाव से सिर्फ सुनना चाहता हूँ। अजय और मेरी बचपन की दोस्ती है, हम दोनों के बीच कुछ भी गोपनीय नहीं। यही कारण था कि पत्र को पढ़ने का अधिकार उसने मुझे दिया, ताकि पूरे ध्यान से वो सिर्फ सुन सके। मैं तो स्वयं अवाक था ये सोचकर कि आखिर इस पत्र की आत्मा क्या होगी। कुछ भी पूर्वानुमान लगा पाना कठिन हो रहा था। वैसे ये तो मैं जानता ही था कि अजय और शुभांगी में कितनी अंतरंगता थी, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण मौन विद्रोह का सहारा ले शुभांगी कहीं चली गई, कुछ पता नहीं चला। कितनी तलाश की गई लेकिन सब व्यर्थ। अजय तो मौन हो गया, लेकिन शुभांगी की याद उसके मन मस्तिष्क में अधिक से अधिक गहराती गई। एक रोबीले सरपंच की बेटी होने के कारण शुभांगी ने विद्रोह का साहस तो दिखा दिया और अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सरपंच ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। फिर तो कभी सूचना मिलती कि शुभांगी अपनी

नी के पास गई है तो कभी पढ़ाई के सिलसिले में मुंबई में रहने वाले अपने चाचा के यहाँ गई है। एवं प्रकारेण समय बीतता गया और लोगों के बीच उनकी चर्चा भी थमती गई, लेकिन अजय की सूनी आँखों में अब भी तलाश जारी थी और अपने स्तर से उसका प्रयास भी लगातार जारी था। सच्चाई से सभी अनभिज्ञ थे। इधर अजय मौन रहते हुए सभी सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं और बंधनों को स्वीकार करता गया ताकि शुभांगी के परिवार की मर्यादा पर किसी भी प्रकार का आघात न लगे और सरपंच की दबंगई से उसका स्वयं का परिवार भी बचा रहे। उसके पारिवारिक संस्कारों में मर्यादा का महात्म्य था। फिर माँ बाप की सूनी आँखों को नहीं देख पाने की लाचारी के भी कारण उसने शादी की और फिर तो रोटी के लिए नौकरी तो करनी ही थी। खैर, अब तो यह सब कुछ हो चुका था और कहानी भी खत्म हो चुकी थी। पत्नी एक गंभीर बीमारी में असमय ही चली गई, एक छोटे से बेटे को छोड़कर।

0: माँ बाप की सुनी आंखों को नहीं देख पाने की लाचारी के भी कारण उसने शादी की, और फिर तो रोटी के लिए नौकरी तो करनी ही थी। खैर, अब तो यह सब कुछ हो चुका था और कहानी भी खत्म हो चुकी थी। पत्नी एक गंभीर बीमारी में असमय ही चली गई, एक छोटे से बेटे को छोड़कर, जिसे अजय ने ऊंची शिक्षा दिलवाई और अब तो वो विदेश में है। अजय अपने गांव के उसी पुराने मकान में है, अकेला, शुभांगी की यादों के साथ। इस चिट्ठी को पाकर अजय की आंखों में जो चमक मैंने देखी थी वो अद्भुत थी। शुभांगी के जाने के बाद आज पहली बार उसका खिला हुआ चेहरा मैंने देखा था, जो झुर्रियों से झांकता हुआ भी कमाल का लग रहा था, वरना उसे तो हमेशा चुप और उदास ही देखता रहा था मैं। मैंने चिट्ठी पढ़कर सुनाना शुरू किया। संबोधन में कुछ भी नहीं था, संभवतः स्वीकृति की प्रतीक्षा उसे अभी भी थी। मैं जहां कहीं भी रहा तुम्हारी याद हमेशा मेरे साथ रही, तुम्हारे हर पल की जानकारी मैं लेती रही चुपचाप। तुम्हारे मन की शांत झील को अपनी यादों से उद्वेलित नहीं करना चाहती थी। सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाने की स्थिति में मेरे पास विकल्प ही क्या था। जन्म से ही दलित तो थी ही मैं, अतः अपने आंतरिक विद्रोह को रचनात्मक दिशा देते हुए मैंने दीनहीन, वंचित, उपेक्षित और तिरस्कृत महिलाओं की दशा सुधारने और उसे एक नई दिशा देने में अपने को इस कदर झोंक दिया कि फिर अपनी सुधी ही नहीं रही। तुम पर कोई लांछन नहीं लगने देना चाहती थी, पर अब मैं थक चुकी हूँ, अतः सारी यात्राओं को विराम देकर तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा से लौटे यात्री की तृप्त और सुखद थकान का अनुभव करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मजबूरियां समझती हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन सामाजिकता की कोई भी भेड़ी हमारे लिए बंधन नहीं बन सकती। परंपराओं की छाया से निकलकर देखो, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। हम दोनों अगर देखें और महसूस करें तो शायद हम दोनों की आंखों की गहराई बुढ़ापे से और ज्यादा गहरी हो गई हैं। जीवन तो एक नदी है अजय, जिसका लक्ष्य है चिर शांति की आस लिए सागर तक की यात्रा। अतः इस अवस्था में कोई भी सामाजिकता हमारे पथ में बाधा नहीं बनेगी, और फिर तुम्हारा बेटा भी तो तुम्हें वृद्धाश्रम में डाल देने की चिंता से मुक्त हो जाएगा। अजय, हम लोगों की उम्र के लोग इतने भारी क्यों हो गए हैं कि आज की युवा पीढ़ी उन्हें वृद्धाश्रम में डालकर भार मुक्त हो जाना चाहती है? तुम्हारे चेहरे पर पड़ी झुर्रियों में छिपी पीड़ा मैं सहज ही अनुभव करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ। मेरे जीवन में तो इतना बिखराव रहा, ओढ़ी हुई इतनी व्यस्तताएं रहीं कि अपने विषय में सोचने का अवसर ही नहीं मिला। आज जीवन के बीते कालखंड चलचित्र की तरह आंखों के सामने से तेजी से गुजर जाते हैं, और यह सब मैं आंखें मूंद कर ही महसूस कर सकती हूँ। तुम आखिर करते भी क्या? तुम्हारी मजबूरी को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आज अपने घावों को सहलाने का एक अवसर मुझे दे दो मेरे देवता, इसमें मेरी पीड़ा का भी तो अंत हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी असमय ही चली गई, बहुत दिनों बाद मालूम हुआ, बहुत कम दिनों का साथ रहा तुम्हारा। मेरा मन तो अवसाद से भर गया था, लेकिन करती भी क्या? एक अच्छे और सच्चे मित्र की तरह जीवन की इन सांधे वेला में हमारे इस निर्णय को स्वीकारने में तुम्हें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। वैसे तो अपने बीते जमाने की यादों को कुतर कुतर कर खाने और विसूरते रहने से बेहतर है कि हम दोनों ही एक दूसरे की आंखों की झील की गहराई में डूबे रहने की सुखद अनुभूति लेते रहें। जीवन का संभवतः यही कालखंड अपना होगा जिसे स्वीकारने में हमें किसी सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। तुम समझ पा रहे हो ना अजय? मैं हूं तुम्हारी शुभांगी, शीघ्र आ रही हूं तुम्हारे पास। ये पत्र समाप्त होने पर मैंने देखा अजय की आंखों में एक अलग सी चमक थी। आकाश की ओर देखता हुआ वो भावी जीवन की सुखद कल्पना में खो गया था। मैंने उससे कहा, प्यार की छांव में ये विश्राम का पल है अजय, इसे महसूस करो, इसका आलिंगन करो।
1: अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र देव शुक्ल तरुण से उनकी कहानी समर्पण। कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा से काव्य पाठ।
2: एक पर...

0: मुझ में कहीं कुछ बो गया ऐसा, पा सका खुद को न फिर मैं हो गया वैसा। एक पल मुझ में कहीं कुछ बो गया ऐसा, पा सका खुद को न फिर मैं हो गया वैसा। छंद यह मधुबंध का मुझ में रचा तुमने, छंद यह मधुबंध का मुझ में रचा तुमने, मन को गम गम कमल वन सा कर दिया तुमने। ठूठ में फिर हो हरा मधुमास बन झूमा, ठूठ में फिर हो हरा मधुमास बन झूमा। तुमने सुरभित श्लोक सा मुझको रचा ऐसा, एक पल मुझ में कहीं कुछ बो गया ऐसा। एक भ्रू संकेत में सौ सौ कथाएं थीं, एक भ्रू संकेत में सौ सौ कथाएं थीं, एक मचलन की अबोली सौ व्यथाएं थीं, एक भ्रू संकेत में सौ सौ कथाएं थीं, एक मचलन की अबोली सौ व्यथाएं थीं। मौन ही में खुल गया जब भेद वह न्यारा, मौन ही में खुल गया जब भेद वह न्यारा। शांत सुस्मित हुआ मैं निरभ्र नव जैसा, शांत सुस्मित हुआ मैं निरभ्र नव जैसा। एक पल मुझ में कहीं कुछ बो गया वैसा। एक दूरागत बंसी धुन में तुम बोले, एक दूरागत बंसी धुन में तुम बोले, एक पल ही मीत मेरे पास तुम ठहरे। पर हुआ उस पल का ही विस्तार कुछ ऐसा, पर हुआ उस पल का ही विस्तार कुछ ऐसा, जिसके परे ना रहा कुछ संसार के जैसा, जिसके परे ना रहा कुछ संसार के जैसा। एक पल मुझ में कहीं कुछ बो गया ऐसा। एक पल की छुअन में सौ कल्प की सिहरन, एक पल की छुअन में सौ कल्प की सिहरन, एक स्वन में संपुटित संपूर्ण स्वर कानन। एक पल की छुअन में सौ कल्प की सिहरन, एक स्वन में संपुटित संपूर्ण स्वर कानन। छू दिया तुमने मुझे मैं हो गया ऐसा, छू दिया तुमने मुझे मैं हो गया ऐसा। राम जाने तुमने मुझको कर दिया कैसा, राम जाने तुमने मुझको कर दिया कैसा। एक पल मुझ में कहीं कुछ भो गया ऐसा। छू मेरे सन्यास को ऋतुराज कर डाला, छू मेरे सन्यास को ऋतुराज कर डाला, हर उदासी को नशीली प्यास कर डाला। छू मेरे सन्यास को ऋतुराज कर डाला, हर उदासी को नशीली प्यास कर डाला। मुझ में जगा उन्माद पर विश्वास कुछ ऐसा, मुझ में जगा उन्माद पर विश्वास कुछ ऐसा, कि तेरा होकर हो गया खुद को अजाना सा, कि तेरा होकर हो गया खुद को अजाना सा। एक पल मुझ में कहीं कुछ बो गया ऐसा।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा से काव्य पाठ। इसी के साथ समन्वित रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का दरभंगा अंक अब समाप्त होते ही। सूत्रधार अमलनाथ ठाकुर और प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के श्रोताओं 10 बजने वाले हैं। हमारा कार्यक्रम थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप।

अंतराल पूरा हो चुका है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसरंग।

बेनी दयाल और अनमोल मलिक की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे चुरा के दिल मेरा। ये सॉन्ग रानी मलिक और समीर अंजान का लिखा गीत था, अनु मलिक का संगीत था। अब आइए सुनते हैं जुबिन नौटियाल की आवाज़ में मनोज मुंतशिर का लिखा गीत, मीत ब्रॉस का संगीत, दिल गलती कर बैठा।

रीमा मेहता और साथियों की आवाज़ों में सुन रहे थे ये गीत। शैलेंद्र का लिखा गीत था और गोफी का संगीत था फिर आओगे। आइए सुनते हैं अमी मिश्रा की आवाज़ में अगला गीत। कुणाल मिश्रा का लिखा है और अमी मिश्रा का संगीत है।

कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी हम सुन रहे थे श्रोताओं हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसरंग। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

कुदरत का कानून फिल्म का गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और सब्बीर कुमार की आवाज़ों में। गीत को लिखा था समीर ने और स्वरबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, कैफी आजमी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, कर्तव्य फिल्म से।

खानदान फिल्म का ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। नक्श लयालपुरी का लिखा ये गीत था, खयाम का संगीत था। अब आइए सुनते हैं अगला गीत खिलौना फिल्म से, लता मंगेशकर की ही आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लिबास फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, गुलजार के बोल और आर डी बर्मन का संगीत। इसी के साथ हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे देते हैं।

कल सुबह 5:53 पर वंदे मातरम से कार्यक्रम का आगाज होगा और सुबह 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से सुनेगा। 6:05 पर आप चलेंगे विविध भारती के स्टूडियो और सुनेंगे वंदनवार चिंतन श्री रामचरित मानस पाठ संगीत सरिता और भूले बिसरे गीत। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। सुबह 8 बजे दिल्ली से समाचार प्रभात का प्रसारण होगा और सुबह 8:15 पर आप सुनिएगा देशभक्ति संगीत। सुबह 8:20 पर हम लेकर आएंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी, जो कि आपके भेजे हुए पत्र हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सुबह 8:45 पर आप सुनिएगा पटना से प्रादेशिक समाचार और सुबह 9:10 पर गीत मालिका कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा। सुबह 9:30 पर हम सुनेंगे विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार। सुबह 10 बजे दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा जो हमारे केंद्र से रिले होगा। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विकास के सोपान, संकलन और स्वर होगा लाल बहादुर दुबे का, प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। सुबह 10:30 पर लोक माधुरी में भोजपुरी एल्बम लोकगीत आप सुनेंगे। सुबह 10:45 पर रसधार कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग लेकर हम हाजिर होंगे। दिन में 11 बजे हम चलेंगे विविध भारती के स्टूडियो और सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम। दिन में 12 बजे दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा। शाम 5:10 पर आप सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन और शाम 5:30 पर हम लेकर आएंगे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। शाम 6 बजे भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे। शाम 6:05 पर पटना से भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण होगा। शाम 6:10 पर आप सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 6:40 पर सांझगीत में भोजपुरी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा। शाम 7:15 पर हम लेकर आएंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:25 पर पटना से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का प्रसारण होगा। शाम 7:50 पर आप सुनिएगा फोन

फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। रात्रि 8 बजे दिल्ली से इस सप्ताह संसद में आप सुनेंगे और रात्रि 8:15 पर हेलो मनपसंद कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाए जाएंगे।

0: रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान और रात्रि 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या का प्रसारण होगा। रात्रि 9:00 लोकधारा में भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे और रात्रि 9:15 पर महफिल में गजलों का आनंद लीजिएगा। रात्रि 9:30 पर विविध भारती से आज के फनकार कार्यक्रम हम सुनेंगे और रात्रि 10:00 हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे रसरंग और रात्रि 10:30 पर आप सुनिएगा चितपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी नगमे और रात्रि 10:55 पर अगले दिन के कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। रात्रि 11:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे। सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हिंदी में समाचार के लिए अब आइए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र
1: के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले

0: जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया। 102 गीगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेइक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme, Samudra Manthan, with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan Scheme, from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment, the presiding officer, Dilip Sekia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home, Nityanand Rai, removed the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus. Foreign Secretary Vikram Misri concluded his two-day official visit to Bhutan today. During his visit, Mr. Misri co-chaired the 5th India-Bhutan Development Cooperation talks for the 13th five-year plan of Bhutan. During the 5th plan talks, both sides reviewed the overall progress and implementation of Government of India's support of 10,000 crore rupees for Bhutan's 13th five-year plan. A Delhi court today sentenced former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others to life imprisonment for the murder of Intelligence Bureau IB officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. Additional Sessions Judge Praveen Singh pronounced the sentence to all 5 accused after hearing arguments on the quantum. In Jammu and Kashmir, one non-local labourer was killed and another injured in a terrorist attack in the Kilam Devsar area of Kulgam district this evening. Speaking to Akashwani News, IGP Kashmir V.K. Birdi said one labourer died